सुप्रभात, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज है मंगलवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। सुबह के प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सस के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी। आज का विषय है सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण। बता रही हैं अनीता तिर्की।
3: सब्जी फसलों में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े का प्रकोप होता है। क्षति के लक्षण के आधार पर कीड़े मकोड़ों को विभिन्न रूप में बांटा जा सकता है, जैसे मिट्टी में रहकर नुकसान करने वाले कीट जैसे कि दीमक, काटकर और कुतरकर खाने वाले कीट जैसे पिल्लू और भृंग, रस चूसने वाले कीड़े मकोड़े जैसे लाही, मधुआ, श्वेत मक्खी और मिलीबग, उसी तरह फलों में छेद कर खाने वाले कीड़े जैसे फल मक्खी, तना और टहनियों में छेद करने वाले कीड़े बेधक कीट और पत्तियों में सुरंग बनाने वाले कीड़े जैसे पर्ण सुरंगक। ये सभी कीट क्षति के लक्षण के आधार पर बांटे गए हैं। और गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं उसमें प्रमुख रूप से गोभी का पतंगा, पर्ण जालक कीट तितली, तंबाकू का पिल्लू, तना बेधक कीट और सेमी लूपर और लाही ये सभी हैं जो कि तंग करते हैं। तो इन कीटों का नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे खर पतवार डंटल को नष्ट कर दे ताकि छिपे हुए कीड़ों का नाश हो जाए और समूह में पाए जाने वाले पिल्लुओं को एकत्रित कर तब नष्ट करें। कीड़ों द्वारा ग्रसित भागों को जमा कर नष्ट कर देना चाहिए और अंतः फसल का प्रयोग करना चाहिए। गोभी जाति के पौधा के साथ टमाटर की फसलों का अंतः फसल माने 1:1 लगाने से गोभी के पतंगा के प्रकोप को कम किया जा सकता है। इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, गोभी रोपने के 30 दिन पहले ही टमाटर की फसलें को बोया जाता है। गोभी का पतंगा, इसके जो कीट हैं वो हरे और फीके गंदले रंग के छोटे छोटे पिल्लू लार्वा फसल की पत्तियों में छेद करके उसके जो हरितमा है क्लोरोफिल उसको बुरी तरह से खा डालते हैं, जिसके कारण उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। इसका नियंत्रण करने के लिए बिचड़ों की रक्षा करने के लिए कार्बोफुरान 5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यवहार करना है और रोपनी के 8 से 10 दिनों के बाद पौधों के चारों ओर कार्बोफुरान 3G इसका 1 ग्राम प्रति पौधा की दर से मिट्टी में मिला दे, उसके बाद हल्की सिंचाई करें। आवश्यकता अनुसार जैविक कीटनाशी जैसे डेल्फिन इसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर या डीपेल 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। यदि दूसरे छिड़काव की आवश्यकता हो तो नीम से निर्मित कीटनाशी जैसे अचूक, निम्बेसिडिन या नीम गोल्ड 2, ये इसकी मात्रा होगी 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। बैगन का शीर्ष और फल छेदक कीट है, ये भी काफ़ी बैगन को क्षति पहुंचाता है। इसके कीट जो हैं नवजात फलों में प्रवेश कर आंतरिक गुदे को खाते हैं और जो ग्रसित फल हैं बाजार में जाते हैं, इसका भाव बहुत कम हो जाता है, किसान भाइयों को काफ़ी घाटा सहना पड़ता है। अतः बैगन का शीर्ष और फल छेदक इसके नियंत्रण के लिए फंदा प्रपंच 30 प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार नीम से निर्मित कीटनाशी जैसे नीम सीड करनाल एक्सट्रैक्ट या अचूक या निमेरिन का छिड़काव आप कर सकते हैं। इसकी मात्रा होगी 2 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए। आवश्यकता अनुसार डेल्फिन दवा का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसकी मात्रा होगी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर या डीपेल 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। कद्दू, करेला, खीरा, नेनुआ इत्यादि को फलमुखी काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं, फलता फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अतः इसके नियंत्रण के लिए 1 लीटर पानी में 10 ग्राम गुड़ या छवा का घोल बनाकर उसमें 2 मिलीलीटर स्पाइनोसेड तरल मिलाकर मशीन के द्वारा छिड़काव करने से लाभ होता है।
0: खेती किसान में अभी आप सुन रहे थे सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में। वाचन स्वर था अनीता तिर्की का। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।

0: हर इंसान को प्रतिबोध देते हुए जाने माने विद्वान खलील जिब्रान लिखते हैं कि मैं भी कहता हूं कि जीवन सचमुच अंधकारमय है। यदि आकांक्षा ना हो सारी आकांक्षाएं अंधी हैं। यदि ज्ञान ना हो सारा ज्ञान व्यर्थ है। यदि कर्म का ज्ञान ना हो। जब आप प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तब स्वयं से बनते हैं, एक दूसरे से बनते हैं और फिर भगवान से बनते हैं। यहाँ प्रेम का अर्थ संकल्प है। प्रेम में ज्ञान में और सौंदर्य में कभी अति नहीं होती। जब ये गुण पूर्ण शुद्ध अर्थ में समझे जाएं, तभी हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। आप तभी अच्छे बन सकते हैं यदि आप में आत्मविश्वास है, दृढ़ निश्चय है, निर्णय क्षमता है, आशावादी दृष्टिकोण है, सकारात्मक सोच और उत्साही मन है। अगर आप दुख में से सुख खोज लेना चाहते हैं तो सचमुच सुख खोज लेंगे। इसके लिए ऐसा सोचते हुए बस आपको संकल्पित होना होगा। जो स्थिति आपके दिमाग की है वही आपकी खोज की है, यानी आप जिस चीज की इच्छा करेंगे वो पा लेंगे। सोचना यह है कि हम गहरे में जमे अपने संस्कारों को कैसे सुधारें, जड़ तक कैसे पहुंचें, बिना जड़ के सिर्फ फूल पत्तों का क्या मूल्य। पतझड़ में फूल पत्ते सभी झड़ जाते हैं मगर वृक्ष कभी इस वियोग पर शोक नहीं करता। उसके पास जड़ की सत्ता सुरक्षित है जिससे वसंत आने पर पुनः वृक्ष फल पत्तों से लहलहा उठता है। अंधेरा तभी तक डरावना है जब तक हाथ दिए की बाती तक ना पहुंचे। अपने आप को अपना भविष्य निर्माता मानिए और फिर कार्य की शुरुआत कर दीजिए। अपने भविष्य की कल्पना कीजिए जहां आपको मनचाही सफलता और जिंदगी हासिल हो। वैसा जीवन जिसकी परीक्षाएं ना ली गई हो जीने योग्य नहीं है। इसलिए जिए, विश्वास करें प्रभु पर और प्रभु की सत्ता पर।
1: ये था आज का चिंतन। संकलन एवं वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आइए अब शामिल होते हैं आराधना में, और आराधना में सबसे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत अनूप जलोटा के स्वर में।

श्रोताओं, जब हम अपने दिन की शुरुआत भजनों या भक्ति गीतों के साथ करते हैं तो इसका हमारे मन और शरीर पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आपके पूरे दिन को ऊर्जावान और शांत बनाता है। भजन सिर्फ हमारे मन को सुकून और शांति नहीं देते, बल्कि इनमें मौजूद जो शब्द और धुनें होती हैं, उनका हम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और धैर्यवान रहने की शक्ति देता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सुबह का समय ईश्वर आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो चलिए हम भी ईश्वर को याद करते हैं और सुनते हैं ये भक्ति रचनाएं।

माता रानी का आशीर्वाद हमें सही समय का इंतजार करने और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने की शक्ति देता है।

नरेंद्र चंचल के स्वर में आप सुन रहे हैं भक्ति रचनाएं आराधना में। श्रोताओं, जब आप सच्चे मन से माता की शरण में जाते हैं तो वे हर विपत्ति से रक्षा कर जीवन को सुख और शांति से भर देती हैं।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही संपन्न होता है आराधना। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।
1: एपिसोड 155 155।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्री राम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं, और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्री राम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं, जो श्री राम के अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति की अभिलाषा हो। जो मन, वचन, कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हो, क्या उसका त्याग किया जा सकता है?

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज शाम तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर में यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली के।

केंद्र से 7:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। भेंटवार्ता का विषय होगा नवजात शिशु की देखभाल। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर नरेश भगत और भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल। 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत में कुछ प्यारे नगमे। 7:45 पर कार्यक्रम होगा खुला आकाश, प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

0: सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 8:30 पर। उरांव लोकगीत आप सुनेंगे लोक रंग के अंतर्गत, कलाकार होंगे हुसे उरांव और साथी 8:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन आप सुनेंगे सुबह 9 बजे। 9:30 पर कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे तोड़ी में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है। गायक कलाकार हैं राणा झा, संगतकार हैं हारमोनियम पर संचाली नाग और तबले पर हैं कौशिक दास। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे क्रीड़ा जगत, संकलन और प्रस्तुति स्वर होगा अमित अखौरी का, कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की। 10:30 पर दैनिक कार्यक्रम जोहार रांची। 11:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीत आपकी पसंद में। दिन में 12 बजे गृह लक्ष्मी के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा पर्यावरण संतुलन हमारी जिम्मेदारी, सूत्रधार होंगी लता रानी और निधि वर्मा, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। बारह बजकर 30 मिनट पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे। दिन में 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:10 पर। अनुरंजनी के अंतर्गत उप शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे 1:20 पर, कलाकार होंगी सिद्धेश्वरी देवी। दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में गजल। दिन में 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार जय भारती, 2:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 3 बजे, रांची मेलोडीज 3:30 पर। शाम 4 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार, 4:02 पर क्रीड़ा जगत। ये थी आज शाम तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र का प्रसारण।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य जकार्तायां इण्डोनेशिया देशस्य प्रधान राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यमुना सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य आह्वानेन तत्र त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासे ह्यः एव जकार्ता नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रागमने तावत् इण्डोनेशिया वायुसेनायाः युद्धक विमानैः प्रधानमन्त्रिणः विमानस्य गगनमार्गे संरक्षणं कृतम्। सहैव विमानपत्तने राष्ट्रपतिना स्वयमुपस्थाय तस्य विशेषं भव्यं च स्वागतं विहितम्। एतादृशम् अभूतपूर्वम् अभिनन्दनम् अवलोक्य प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् इयं वार्ता 18-2000 भारत इण्डोनेशिया व्यापकरणनीतिक सहयोगाय कञ्चन नूतनं वेगं प्रदास्यति।

0: प्रदर्शयिष्यति। जकार्तायां प्रदर्शितानि मनोरंजक सांस्कृतिक प्रदर्शनानि श्लाघयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् एतानि प्रदर्शन शिल्पानि भारत इण्डोनेशिया देशयोः प्राचीन सभ्यतायाः संस्कृतेः आध्यात्मिक सम्बन्धानाञ्च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वय समूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायण कथाधारितं प्रसिद्धं वायांग कुलित छाया खटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिक भक्ति नृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशिया देशे भारतीय राजदूतस्य संदीप चक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिक सम्बन्धान् उच्चतर शिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन सामान्य सचिवस्य चम्पतरायस्य न्यास सदस्यस्य डॉ अनिल मिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राममंदिर दान वंचन प्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परं उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्य सचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथित दान अनियमिततायाः प्रकरणे एफआईआर इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् अष्ट जनाः निगडिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचार मेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेशमन्त्री कतरदेशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचण्ड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड आन्तरिक कर्नाटक मध्यप्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अण्डमान निकोबार द्वीपेषु आन्ध्रप्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असमराज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैण्डे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीन देशों की

0: यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। आज आप नवजात शिशु की देखभाल विषय पर सुनेंगे भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर नरेश भगत और भेंटकर्ता हैं संजीव कुमार लाल।
3: नवजात शिशु की देखभाल शिशु के जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। जीवन का पहला साल बच्चे के विकास के लिए बेहद अहम हो जाता है। इस दौरान माता पिता के मन में कई एक सवाल उठते रहते हैं, जैसे कैसे छोटे बच्चों को गोद में लें, किस प्रकार दूध पिलाएं, कब और कैसे शिशु को नहलाएं, साफ सफाई का कैसे हम ध्यान रखें, और ऐसे अनेक सवाल जो नए माता पिता हैं उनके मन मस्तिष्क में गुजरता रहता है। अनेक छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। हमारा नवजात शिशु स्वस्थ रहे, उसकी किलकारियों से आंगन गूंजता रहे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें। बातचीत करेंगे डॉक्टर नरेश भगत से। डॉक्टर साहब, स्वागत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।

0: बच्चा नवजात शिशु जैसे ही जन्म लेता है तो घर में एक खुशियों का माहौल पैदा हो जाता है, लोग बड़े खुश होते हैं, एक नया सदस्य घर में आता है। तो जो सबसे पहला कार्य होता है नवजात शिशु की, उसकी देख रेख किस प्रकार करें, उसे कैसे कपड़े में लिपटाएं, ठंड से कैसे बचाएं, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए?
1: सबसे पहले माँ का पेट में बच्चा रहता है तो माँ का जो बॉडी टेम्परेचर है तापक्रम 37 डिग्री सेंटीग्रेड में बच्चा रहता है। माँ के पेट से जन्म के बाद बाहर आने पर, जो रियल वर्ल्ड है उस पर आने पर, बच्चे का जो तापक्रम है अचानक कम तापक्रम में आ जाता है। कमरे का जो तापक्रम मुश्किल से होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अच्छा, हो ठंडा का मौसम है और नीचे साइड में रहता है तो टेम्परेचर डिफरेंस के चलते बच्चे में हाइपोथर्मिया हो सकती है, ठंडा बच्चे को लग सकती है। तो इसका ध्यान रखा जाए जन्म के बाद तुरंत, या होम डिलीवरी हो या संस्थानिक डिलीवरी हो, जो अभी संस्थानिक डिलीवरी ज़्यादा हो रहे हैं, तुरंत जन्म के बाद बच्चे को साफ़ सफाई करके पोंछ के तुरंत उसको ड्राई करना है। ड्राई करने पर एक साफ कपड़े में लपेट लेना है। लपेटने के बाद यदि वार्मर की सुविधा उपलब्ध हो तो वार्मर में रखी जाए। अगर बच्चा स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, तो बच्चे के जो परिजन है उसको हैंडओवर करने के बाद बता देना है, बच्चे को साफ कपड़े में लपेटना है और बाहर से साल लपेट के अपने बदन से सटा के रखना है ताकि अपना गर्मी बच्चा को मिले। बच्चा का शरीर छोटा होता है, गर्मी कम बनता है। कुछ बच्चे वजन के से कम होते हैं, बच्चे का वजन जन्म के समय 2.5 kg से 4.25 kg होना चाहिए। अगर 2.5 kg से कम का बच्चा है, खासकर 2 kg से कम का बच्चा है, तो जैसे मैंने बताया कि बच्चा का शरीर छोटा होता है, गर्मी कम बनता है, तो हाइपोथर्मिया होने का ज़्यादा चांस रहता है, चूँकि मेटाबॉलिज्म कम होगी और उसका हीट प्रोडक्शन कम होगा। खासकर 1500 ग्राम से कम कई बच्चे को इनक्यूबेटर में रखने का जरूरत पड़ता है। तो उस हालात में गांव घर में गर्म रखने का उपाय और नहीं हो तो एक विधि है, हम लोग कहते हैं कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर KMC। गाँव घर में जहाँ बच्चे का वजन कम है और प्रीमैच्योर बच्चा जन्म लिया है तो उसको कैसे गर्म रखें, उसकी एक विधि है KMC, जिसकी जिसमें मदर को हम लोग बताते हैं, या हमारी जो हमारी परिचारिकाएँ हैं बतलाती हैं कि बच्चे को सामने के छाती में बच्चे को रखना है, अपना ब्लाउज बटन खोल के बच्चे से ढक देना है, साथ में साल से लपेट के रखना है। ये काम माताएं लेट के भी कर सकती हैं और सोने समय भी कर सकती हैं। बच्चे की माँ अगर एडमिट है और पानी चल रहा है, IV सलाइन चल रहा है, उसमें भी छाती में रख के चलाया जा सकता है। अगर सो रही है माँ तो बीच में 2 तकिया या 3 तकिया दे के भी एक पोजिशन गेन करके KMC कंगारू मदर किया जा सकता है। कंगारू मदर का हम लोग 2 कंपोनेंट बोलते हैं, एक हो गया स्किन टू स्किन कंटैक्ट होना चाहिए, माँ का स्किन का कंटैक्ट होना चाहिए बच्चे से, और बच्चा जब छाती पर रहेगा तो दूध पिएगा। अगर माँ का ज़्यादा तबीयत ख़राब है या तो किसी कारणवश KMC माँ नहीं दे सकती है, कंगारू मदर नहीं केयर नहीं प्रोवाइड कर सकती है, तो घर का कोई परिजन या उसका बच्चे का पिता भी ये KMC के द्वारा बच्चे को गर्मी प्रदान कर सकता है, जिससे बच्चे का हाइपोथर्मिया होगा उसके चलते और आगे का जो खतरनाक सीक्वेंस है उससे बचाया जा सकता है और बच्चे का लाइफ का हम लोग सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाते हैं और बढ़ सकता है।
0: जी, तो ये तो हो गए जब बच्चा तुरंत जन्म है तो उसकी देख रेख हम कैसे करें, उसको गर्माहट किस प्रकार हम दें। डॉक्टर साहब, बहुत सारे भ्रांतियाँ भी होती हैं कि शुरू का स्तनपान उससे नहीं कराया जाए, और दूसरी बात कि बच्चे को मालिश लोग करना शुरू कर देते हैं, तो इन सब बातों का किस प्रकार ख्याल रखें?
1: ऐसे भी भ्रांतियाँ हैं कि शुरू का दूध नहीं पिलाया जाए, लेकिन शुरू का दूध पहले सप्ताह का जो दूध होता है गाढ़ा पीला होता है और रिच इन प्रोटीन होता है, इसलिए फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग उस दूध को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, बच्चे को पिलाना चाहिए। हम लोग फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी करते हैं, जो गाढ़ा विटामिन में विटामिन ए से भी रिच रहता है, विटामिन ए एंटी इन्फेक्टिव विटामिन है, इन्फेक्शन में रोकने में मदद करता है। तो प्रचार प्रसार के माध्यम से जो स्वास्थ्य सेवा जो केयर गिवर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन लोगों के माध्यम से जो कॉन्टैक्ट में आती है माताओं को बताने की ज़रूरत है कि जो पहला दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद दूध है, उसको डिस्कार्ड ना किया जाए, उसको अवॉइड ना किया जाए, उसको पिलाया जाए, उससे बच्चे को फ़ायदा ही फ़ायदा है और बीमारी से लड़ने की क्षमता उस बढ़ाता है।
0: जो शिशु है, जो नवजात शिशु है, उसको कब कब मालिश किया जाए?
1: जो नवजात शिशु हैं, बच्चे लोग का चमड़ा बहुत नाजुक होता है
0: जी,
1: तो हम लोग का प्रयास रहता है कि लोग कम से कम हैंडल करें। अगर जो भी बच्चा को अगर गोद लेगा या छुएगा वो पहले हाथ से साबुन से हाथ धो लेगा, उसके बाद ताकि इन्फेक्शन से बचाया जाए। जहाँ तक मालिश की बात है, मालिश किया जा सकता है, लेकिन सूटेबल तेल से, कोई भी तेल बच्चे के चमड़े से रिएक्ट कर सकता है जिससे लाल दाने चकते आ सकते हैं, तो जो तेल सूट करता है उसी को लगाना चाहिए। जनरली हम लोग नारियल का तेल और जैतून का तेल, ओलिव तेल रिकमेंड करते हैं। मालिश बच्चे को डेली किया जा सकता है।

0: जी
1: और बच्चे के फायदे के लिए है और उससे बच्चे का ग्रोथ होता है।
0: जी जब बच्चा स्तनपान करता है तो कभी कभी वो उल्टी भी कर देता है, तो जो माताएं हैं वो घबरा जाती हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए?
1: कुछ बच्चे जो हैं दूध पीने के बाद अक्सर शुरू शुरू सप्ताह में, जन्म के शुरू शुरू सप्ताह में उल्टी कर देते हैं, ये हम लोग बोलते हैं नियोनाटल वोमिटिंग बोलते हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है। होता क्या है इसमें कि कुछ बच्चा अगर बहुत ज़्यादा भूखा रहता है, दूध जल्दी जल्दी लेना चाहता है, तो दूध जल्दी तेज़ी से खींचता है, तो दूध खींचा कुछ कुछ हवा भी चला जाता है पेट में, तो दूध हवा का लेयर बन जाता है। नीचे जो हवा रहता है वो ऊपर आना चाहता है, तो ऊपर वाला दूध को ठेलते हुए बाहर निकलता है, तो ऊपर वाला दूध बाहर आ गया, जिसके चलते उल्टी हो जाती है। इसको हम लोग इस तरह से दूर करते हैं कि दूध पिलाने के बाद बोलते हैं, माता को एडवाइस करते हैं कि आप दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे में ले लें, उसके बाद पीठ थपथपाएं। ये गैस निकालने की विधि है। पेट में जो हवा चला गया दूध पीने के दौरान उसको निकालने की, या बच्चे को थोड़ा देरी आप खड़ा रखें उसके बाद गोद लें, या 2-4 सेकेंड उसको पेट के बड़े पलटा दें, फिर तुरंत सीधा कर देना होगा, नहीं तो फिर पेट दब के ही उल्टी हो सकता है। जन्म के समय कुछ एक दो उल्टी पहला दूसरा दिन हो सकता है, वो फिजियोलॉजिकल है और उसमें कोई विशेष की बात नहीं है। अगर ज़्यादा उल्टी होता है तो चिकित्सागण उसमें ये नॉर्मल सलाइन से पेट को साफ कर देते हैं, तो ठीक हो जाता है।
0: कहते हैं कि जब बच्चा रोता है तो माता उसको सीने से लगाकर स्तनपान कराती है, इसके बावजूद भी बच्चा रोता रहता है, शायद अनबोलता है, उसे और भी कुछ तकलीफ होती है, ऐसे समय में माताएं किन किन बातों का ख्याल रखें?
1: सबसे पहले बच्चा रो रहा होता है तो बच्चे की माताओं को हम लोग बताते हैं या जानना चाहिए, बच्चा रो रहा है तो सबसे पहले हमें कारण मानना है। पहला कारण हो सकता है बच्चा भूखा होगा
0: जी।
1: बच्चा तो बोलेगा नहीं, जब कुछ भी बताना होगा तो रो के ही बोलेगा, तो बच्चा भूखा होगा तो बस रोएगा। पिला के देखना है, दूध पिला के देखना है, अगर भूखा होगा तो दूध पीने के बाद चुप हो जाएगा। अगर चुप नहीं होता है तो पेशाब पैखाना चेक कर लेना है। कुछ बच्चे लोग एलर्जिक होते हैं, पेशाब पैखाना होने के बाद चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो अगर ये भी ठीक है तो बच्चे का कपड़ा चेक करें, अगर कोई छोटा कांटा हो या गड़ने वाला रहता है, गड़ता रहता है तो बच्चा उससे भी तकलीफ में रहता है, तो रोता रहता है, तो कपड़ा चेंज कर दें। इसके बाद भी अगर दूध पिलाने के बाद भी चुप नहीं हुआ बच्चा, वो सब चेक कर लिए, सब ठीक है, कपड़ा भी चेंज कर दें, उसमें भी रो रहा है बच्चा, तो किसी चिकित्सक से सलाह लें। हो सकता है पेट में दर्द हो या अन्य कहीं जगह बच्चे को दर्द हो, कान में दर्द हो, तो चिकित्सक से सलाह लेनी होगी।
0: ठंड के समय में काफ़ी तत्परता दिखाने की आवश्यकता होती है नवजात शिशु पर, उसे ठंड से बचाया जाए, सही से कपड़े से उसको ढक के रखा जाए। ठंड के समय में, जाड़े के समय में किस प्रकार माताएं अपने छोटे जो शिशु है उसकी देखभाल करें, क्योंकि यदि बच्चे को ठंड लग जाता है तो बच्चे की जान भी चली जा सकती है।
1: जन्म से 4 सप्ताह के बच्चे को हम लोग नियोनाटी बोलते हैं। विशेष ध्यान इसी उम्र में देने की ज़रूरत है। टोपी जो आता है, कैप आता है, कैप पहना के रखना है। पैरों में सॉक्स होने चाहिए, जो मोजे पहना कर रखे, हाथ में भी ग्लव्स पहना कर रखे। जैसे मैंने बताया कि ठंड से बचाने के लिए वो गेम्स ही बताए कम वजन वाले बच्चे में, तो बड़ा बच्चा को भी जो 2.5 kg के ऊपर के बच्चे हैं उसको भी साफ कपड़ा में लपेट के, बाहर से गर्म कपड़ा साल भर लपेट के बदन से सटा के रखना है, जिससे गर्मी उसको मिलता रहे और ठंड से बचे। कोल्ड वेदर में टेम्परेचर बहुत नीचे रहता है, जिसका असर तुरंत बच्चे पर पड़ सकता है, तो यथासंभव बच्चे को धूप निकल आए तब बाहर निकालें, घर से कम निकालें, और धूप हो तभी निकालें, और शाम में जल्दी घर के अंदर करें। एक ठंड के बचाव का एक उपाय, एक कारगर उपाय ये भी है
0: जी। तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई कि नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें, और यदि नवजात शिशु हंसता रहेगा तो आपका भी मन प्रफुल्लित होगा, उसे सही देखरेख की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बोलता नहीं है, वो जब भी रोएगा तब आप परेशान हो जाएंगे, उसकी देखरेख करेंगे और वो सही रहेगा तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। तो नवजात शिशु की देखभाल सही से किस प्रकार करें, इस विषय पर आज हमने बात किया डॉक्टर नरेश भगत से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे नवजात शिशु की देखभाल विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर नरेश भगत और भेंटकर्ता थे संजीव कुमार लाल। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण। श्रोताओं, संगीत की तरह जीवन में भी सुर और लय का संतुलन जरूरी है। जब विचार मधुर हों तो

सुबह सुरीली का ये पहला गीत अभी आप सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म से। सुधीर फड़के का संगीत था और बोल थे पंडित नरेंद्र शर्मा के। आइए अब सुनते हैं खुशबू फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का सुबह सुरीली में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लम्हे फिल्म से। शिवहरी की का संगीत है, आनंद बख्शी की है शब्द रचना।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे लम्हे फिल्मी। आइए अब सुनते हैं गुलजार का लिखा ये गीत। संगीत है खयाम का, आशा भोसले की आवाज है। फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई।

अभिलाषा फिल्म का ये गीत है। आर डी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, आवाज है लता मंगेशकर की।

और आइए अब सुनते हैं मेरी भाभी फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है और तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

और इस मीठे से गीत के साथ ही संपन्न होता है सुबह सुरीली कार्यक्रम से। दीजिए मीनाक्षी को विदा, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश। वार्ता का विषय है झारखंड के पुस्तकालय एवं संग्रहालय, दशा और दिशा। वार्ताकार हैं श्री अमरनाथ झा, प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
1: झारखंड में पुस्तकालय एवं संग्रहालय, दशा और दिशा। जब हम पुस्तकालय और संग्रहालय की बात करेंगे तो सर्वप्रथम हमें अतीत में जाना होगा। भारतीय प्रालयों का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना सिंधु घाटी सभ्यता। सर जॉन मार्शल, एस पिगॉट, एम व्हीलर, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मिस्र वासियों से पहले भारतीय चित्रकला और लिखने की कला से परिचित हो चुके थे। अतः शिक्षा प्राप्ति के क्रम में मनुष्य ने जब लिखना सीखा होगा तो उसी समय पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस हुई होगी। ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल क्षेत्र मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा आदि क्षेत्रों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, जो एक ओर हमारे अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की गाथा कह रहे थे, वहीं दूसरी ओर संग्रहालय के पृष्ठभूमि की रचना भी कर रहे थे। इस प्रकार की आवश्यकता के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, अभिलिखित सामग्रियों का संरक्षण, और दूसरा, भावी पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता निश्चित करना। अभिलिखित एवं संग्रहित सामग्रियों का समुचित संरक्षण चूंकि निजी घरों में संभव नहीं था, इसलिए एक सामाजिक केंद्र की तलाश की जाने लगी।

जहां ऐसी सामग्रियों का संरक्षण हो सके जिससे समाज के सभी वर्ग अपनी सांस्कृतिक धरोहर से अवगत हो सकें एवं जहां विभिन्न वर्ग जाति और सभ्यता के लोग अध्ययन कर सकें एक दूसरे से मुक्त भाव से मिल सकें तथा जहां विचारों का आदान प्रदान निर्बाध गति से हो सके। इसी भावना के अनुरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बिहार में जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा संस्कृति के प्रसार के लिए 5 राजकीय पुस्तकालयों की स्थापना रांची, चाईबासा, दुमका, धनबाद और पूर्णिया में की गई। झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने पर 4 राजकीय पुस्तकालय रांची, चाईबासा, दुमका और धनबाद प्रदेश में अवस्थित है, जो स्टेट लाइब्रेरी के नाम से प्रचलित है। झारखंड के ये चारों पुस्तकालय पूर्णतः सरकारी पुस्तकालय हैं और इसके कर्मचारी सरकारी सेवक, जिन्हें निदेशक माध्यमिक शिक्षा मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार से आवंटन प्राप्त होता है। संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी पुस्तकालय के सचिव की हैसियत से नियंत्रित पदाधिकारी होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों के कई रूप हैं, राष्ट्रीय, राज्य केंद्रीय, जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं ग्रामीण। प्रत्येक देश का एक राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है जो देश में प्रकाशित पुस्तकों का संग्रहालय होता है तथा जिसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लाभार्थ पुस्तकों को सुरक्षित रखना है। भारत में नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना 1903 में लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसकी स्थापना कोलकाता के पब्लिक लाइब्रेरी और भारत सरकार के इंपीरियल लाइब्रेरी को मिलाकर कर दी गई थी। 1903 से 1948 तक यह लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से प्रसिद्ध था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में एक अधिनियम द्वारा इसका नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया। उसी प्रकार बौद्धिक संपन्नता के प्रतीक के रूप में सरकार द्वारा प्रदेश में राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। झारखंड सरकार मानव संसाधन विकास विभाग ने जून 2010 में राजधानी स्थित राज्य पुस्तकालय रांची को राज्य केंद्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया है। इसके अतिरिक्त 14 अन्य पुस्तकालय हैं जो अराजकीय वर्गीकृत पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें गैर योजना मद में प्रतिवर्ष अनुदान मिलता है, जिनमें एक प्रमंडलीय पुस्तकालय हजारीबाग में है। जिला पुस्तकालयों की संख्या 5 है, जो गुमला, लोहरदगा, डाल्टेनगंज, गिरिडीह और गोड्डा में स्थित है एवं 8 अनुमंडलीय पुस्तकालय गढ़वा, लातेहार, पाकुड़, सिमडेगा, चतरा, साहेबगंज, सरायकेला और खूंटी में है। ज्ञातव्य है कि ये सभी जिले हैं, पर अनुमंडलीय पुस्तकालयों की घोषणा अभी तक जिला पुस्तकालय के रूप में नहीं की गई है। अगर झारखंड में इन पुस्तकालयों की दशा और दिशा पर चर्चा की जाए तो पाते हैं कि स्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। झारखंड के अधिकतर पुस्तकालयों में पुस्तकालय कर्मियों का अभाव है। पुस्तकों एवं पाठकों के बढ़ते दबाव को झेलने में पुस्तकालय कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पुस्तकों के कैटलॉग का पुराना ढर्रा ही चल रहा है, जबकि पुस्तकों का कंप्यूटराइजेशन आज के युग की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार को धन उपलब्ध कराने की के साथ ही उसके सही उपयोग के लिए पुस्तकालयों की प्रबंधन व्यवस्था में भी सुधार लानी होगी। सूचना तकनीक के युग में पुस्तकालयों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने एवं संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए उचित मात्रा में योग्य प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता है। अविभाजित बिहार में 60 के दशक में पुस्तकालय के विकास एवं राज्य में पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए पुस्तकालय अधीक्षक के पद का सृजन हुआ। पुस्तकालयों के विकास में उसकी एक विशेष भूमिका थी।

0: एक ओर जहां वह राज्य के पुस्तकालयों पर नियंत्रण रखता था, वहीं दूसरी ओर उसके विकास की रूपरेखा से सरकार को अवगत भी कराता था। पर झारखंड में अब तक पुस्तकालय अधीक्षक के पद का सृजन नहीं हुआ है। भारत में 1948 में मद्रास ने सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया। अभी तक भारत के 14 राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बन गया है, परंतु हिंदी भाषी क्षेत्र इसमें काफ़ी पीछे है। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का हिंदी साहित्य में भले ही योगदान रहा हो, पर इन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम नहीं बना है। पुस्तकालय अधिनियम लागू कर ही पुस्तकालय सेवा में एक रूपता प्रदान की जा सकती है। अधिनियम बनाए जाने से जहां वर्गीकृत और ग्रामीण पुस्तकालयों को लाभ होगा, वहीं कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों का भी निर्धारण होगा। पूरे झारखंड में अभी एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां पुस्तकालय और सूचना विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय की शिक्षा दी जाती हो। सूचना तकनीक के इस दौर में पुस्तकालयों को कंप्यूटरीकृत करना समय की मांग है और इसके लिए जरूरी है कि सरकार पुस्तकालयों में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय की स्थापना करे। झारखंड में होटवार रांची में संग्रहालय है जो स्टेट म्यूजियम के रूप में प्रचलित है। इसके अतिरिक्त दुमका में भी संग्रहालय अवस्थित है। झारखंड के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति, उत्खनन में प्राप्त विभिन्न पुरातात्विक अवशेष के अमूल्य धरोहर को संजो कर रखने में इन संग्रहालयों की एक विशेष भूमिका है, परंतु अभी भी इस दिशा में अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। अविभाजित बिहार में पुस्तकालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय के विकास के लिए पृथक निदेशालय था, पर झारखंड में अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। भावी पीढ़ी के लिए जनजातीय संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व को अक्षुण्ण रखने में इन संग्रहालयों की एक विशेष भूमिका हो सकती है और इस दिशा में सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। लोकतंत्र में पुस्तकालय और संग्रहालय के महत्व और साक्षर शिक्षित जनों की भूमिका सर्वविदित है। जिन लोकतांत्रिक देशों में साक्षरता कम है, वहाँ लोकतांत्रिक चेतना भी समय समय पर बाधित होती रहती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा जहाँ एक ओर अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कराती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी लाती है। अतः ज्ञान के इस युग में पुस्तकालय और संग्रहालय का महत्व सर्वविदित है।
1: अभी आप खुला आकाश के अंतर्गत सुन रहे थे झारखंड के पुस्तकालय एवं संग्रहालय दशा और दिशा विषय पर। वार्ताकार थे श्री अमरनाथ झा, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

श्रोताओं आपको कार्यक्रमों के बारे में बताते चले, सुबह 8 बजे यानी अभी से कुछ देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 8:30 पर, 8:45 पर आप सुनेंगे लोक रंग के अंतर्गत उरांव लोकगीत, कलाकार होंगे हुसे उरांव और साथी, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन आप सुनेंगे सुबह 9 बजे, 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे तोड़ी में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है।

और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। गायक कलाकार राणा झा हैं। हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं संचाली नाग और तबले पर कौशिक दास। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे क्रीड़ा जगत, 10:30 पर जोहार रांची, 11:30 पर फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। दिन में 12 बजे गृहलक्ष्मी के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा पर्यावरण संतुलन हमारी जिम्मेदारी, एक भेंटवार्ता है बढ़ता प्रदूषण विषय पर, जानकारी होगी घर में कैसे करें ऊर्जा की बचत। सूत्रधार लता रानी और निधि वर्मा हैं और प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

12:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से, प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:10 पर। अनुरंजनी के अंतर्गत उप शास्त्रीय संगीत होगा 1:20 पर, कलाकार होंगी सिद्धेश्वरी देवी। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के अंतर्गत चंद गजलें।

दिन में 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती 2:30 पर, 2:55 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 3 बजे, और दिन में 3:30 पर रांची मेलोडीज़।

अब से थोड़ी देर में यानी 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्र से।

0: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की

0: वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: प्राइम मिनिस्टर्स विजिट विल रीइंफोर्स दैट ट्रेंड।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन,

0: माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
0: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम सीएससी की सेवाएं दे रहे हैं।

0: आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6 स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम

0: विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad. Warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during

0: T20 International. Earlier, host England defeated India by 4 wickets in the second T20 International on Saturday in Manchester. Opting to bat, India scored 190 for 7 in the stipulated 20 overs. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Pramod. Temple graft to sin. Trust chair Rai and Mishra exit is the lead in the Times of India, while the Hindustan Times headlines, Ram Temple Trust sets big overhaul in motion. The Statesman headlines, PM Modi in Indonesia to strengthen linkage with Indo-Pacific partners. His visit to Indonesia as part of his three-nation tour is widely covered on the front pages of all newspapers, with pictures of the Indonesian president specially receiving the Indian PM as a special gesture. The story of the National Investigating Agency charge-sheeting LET chief Hafiz Saeed is widely covered on the front pages of all newspapers. The Pioneer headlines, NIA charges Hafiz Saeed for Pahalgam terror attack. The torrential rains in Maharashtra have been covered with pictures of the landslide blocking the Pune-Mumbai missing link, even as the Times of India headlines Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in the Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it. While the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Sarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 40-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने एससी एसटी सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की 1.5 लाख रुपए। पारिवारिक आय सीमा अब हुई 8 लाख। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धनबाद में जनसभा को किया संबोधित, कहा झारखंड में भाजपा की होगी अगली सरकार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र से की 9 घंटे पूछताछ, आज रामेश्वर उरांव को केंद्रीय जांच एजेंसी ने किया तलब। ओडिशा में आज आयोजित होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, झारखंड के डीजीपी और वरिष्ठ नेता अंतर्राज्यीय सुरक्षा पर करेंगे मंथन। और राज्य में लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी है। पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा भी बढ़ाकर 8 लाख रुपए की गई है। पात्र उम्मीदवार इस योजना के लिए 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धनबाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि भारी बारिश के बावजूद सभा में उमड़ी भीड़ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि झारखंड में अगली सरकार भाजपा की बनने जा रही है।
3: जो माहौल दर्शा रहा है, ये हाल की भूमि जहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में आकर इस उर्वरक का रखाना को स्थापित किया था, वो यही दर्शाता है कि हमारा पंडाल छोटा पड़ गया। बारिश इतनी थी, मैं खुद कॉन्फ्यूजन में था कि आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन इतनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आना पहुंचना ये दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
2: शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त

0: मंत्री रामेश्वर उरांव के पुत्र रोहित उरांव से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने उनसे शराब कारोबार में भूमिका और कारोबारियों से संबंधों पर सवाल किए। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को आज पूछताछ के लिए तलब किया गया है। गैंगस्टर प्रिंस खान से धमकी मिलने के बाद निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार से मुलाकात की। विधायक को अब 4 सशस्त्र सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। चटर्जी ने अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की। उन्होंने बोकारो में सांसद ढुलू महतो के बयानों को अमर्यादित भी बताया।
1: देखिए, नेटवर्क जब तक नहीं टूटेगा तब तक सिर्फ सुरक्षा गार्डों को बढ़ा देना ही सुरक्षित नहीं हो जाता। तो ऐसे तमाम क्रिमिनल्स, इनको एक भय पुलिस का होना चाहिए। तो इनकी नेटवर्क टूटनी चाहिए, जो इनको संरक्षण दे रहा है उन पर ग्रिप होना चाहिए, तभी जाके हम समझते हैं जो ऐसे लोग जो है क्राइम से पास आएंगे।
0: रांची में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने एसआईआर को लेकर मतदाता गणना प्रपत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को 29 जुलाई तक घर घर जाकर शत प्रतिशत काम पूरा करने का निर्देश दिया। लापरवाही बरतने पर सिल्ली विधानसभा के 2 बीएलओ पर्यवेक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार ने झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकार के नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य के पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह को रेरा का नया अध्यक्ष और नलीन कुमार को सदस्य मनोनीत किया गया है। उड़ीसा में आज आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में झारखंड के डीजीपी और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में अंतर्राज्यीय सुरक्षा, सीमा विवाद और उग्रवाद नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक में पूर्वी राज्यों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला की ऐतिहासिक रथ यात्रा के संरक्षण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्थायी रथ आसन भवन के निर्माण की घोषणा की है। कल रथ निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए उन्होंने इसे सांस्कृतिक धरोहर बताया। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में तेज हवा और वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी में सर्वाधिक 79.8 मिलीमीटर और रांची में 37 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि कई अन्य जिलों में भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, खुले स्थानों पर नहीं जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: रांची में लगातार हो रही बारिश से रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिससे लोग परेशान हैं। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सरकार पर शहर की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
3: रांची की जो हालत है, एक बारिश में पूरा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। जब रोशनी खलखो जी दिल्ली जाकर वार्ता की तो उन्हें ये जानकारी प्राप्त हुई कि राज्य सरकार से नगर विकास विभाग से जो योजना बना के 2500 करोड़

0: करोड़ का मांगा गया था, 600 करोड़ का ही योजना भेजा गया।
1: इस पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम एक स्वतंत्र इकाई है जिस पर भाजपा का ही कब्जा है।
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का यही फितरत कि जब वो अपनी जिम्मेवारी से, अपनी जवाबदेही से भागेंगे तो उसका ठिकरा विपक्ष के सरकार के ऊपर, और यही परिस्थितियां रांची में भी है, झारखंड में। नगर निगम को किसी भी प्रकार का फंड का किल्लत नहीं, लेकिन चूंकि अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी से भागना है तो आप कार्य योजना बना करके दो।
1: रांची में अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का रोमांच जारी है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से आए लगभग 438 नन्हे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में इस स्तर की शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में बड़ा कदम है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बदलाव की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, चढ़ावा चोरी मामले में चंपत व मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण अंतरिम महासचिव। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीएम हेमंत सोरेन ने की पर्यटन खेलकूद युवा कार्य विभाग की समीक्षा, खिलाड़ियों का डाटाबेस बनाकर दी जाएगी सहायता। प्रभात खबर के शब्द हैं, रांची के एक ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाने की तैयारी में था, मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने प्रिंस खान के गुर्गे को पैर में मारी गोली। दैनिक जागरण लिखता है, नवजात की मौत के बाद रिम्स की तीसरी मंजिल से कूदी मां। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्य सरकार ने एससी एसटी सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर की 1.5 लाख रुपए, पारिवारिक आय सीमा अब हुई 8 लाख। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने धनबाद में जनसभा को किया संबोधित, कहा झारखंड में भाजपा की होगी अगली सरकार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र से की 9 घंटे पूछताछ, आज रामेश्वर उरांव को केंद्रीय जांच एजेंसी ने किया तलब। ओडिशा में आज आयोजित होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, झारखंड के डीजीपी और वरिष्ठ नेता अंतर्राज्यीय सुरक्षा पर करेंगे मंथन। और राज्य में लगातार वर्षा से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात की जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाश। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं।

लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आइए अब सुनते हैं लोक रंग के अंतर्गत लोकगीत। आज आप सुनेंगे उरांव भाषा में। कलाकार हैं हुसे उरांव और साथी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का रस रंजन कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी और कार्यक्रम का पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं जोधा अकबर फिल्म से। एआर रहमान का संगीत है, जावेद अख्तर के बोल, आवाजें सोनू निगम और मधुश्री की।

मिशन कश्मीर अगला गाना इस फिल्म से है। संगीत शंकर एहसान लॉय का है, बोल हैं समीर के, आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का रस रंजन में। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म से। अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर, शंकर महादेवन और शान की आवाजें हैं। AR रहमान का संगीत है और शब्द रचना है जावेद अख्तर की।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश, जो है परदेस फिल्म से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, नदीम श्रवण का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे तोड़ी में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। गायक कलाकार हैं राणा झा। संगतकार हैं हारमोनियम पर संचाली नाग और तबले पर कौशिक दास।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तोड़ी में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। गायक कलाकार थे राणा झा, संगतकार थे हारमोनियम पर संचाली नाग और तबले पर कौशिक दास। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 टीमों के बारे में, इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच हाल ही में संपन्न T20 श्रृंखला और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 विषयों पर। संकलन और प्रस्तुति स्वर विश्वजीत पात्रा का है और कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत पात्र और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष खेल कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपका स्वागत। आज के अंक में खेल जगत की कई बड़ी और चर्चित खबरें लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों की और जानेंगे किन टीमों ने क्वार्टर फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। इसके बाद नजर डालेंगे भारत और आयरलैंड के बीच हाल ही में संपन्न T20 श्रृंखला पर। फिर चर्चा होगी ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। साथ ही बात करेंगे सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक की, जिन्होंने अपने शानदार खेल और अद्भुत उपलब्धियों से विश्व टेनिस में अमित पहचान बनाई है। और अंत में खेल खबरों में रुख करेंगे झारखंड की राजधानी रांची का, जहां प्रतिष्ठित डूरंड कप के रोमांचक मुकाबलों की मेजबानी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। फीफा विश्व कप 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का उत्सव है। इस बार का विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े दिग्गजों के साथ साथ छोटी और उभरती हुई टीमों ने भी ऐसा प्रदर्शन किया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। विश्व कप के शुरुआती मुकाबलों से लेकर नॉकआउट चरण तक हर दिन नए रोमांच, नए रिकॉर्ड और नए नायकों की कहानियां सामने आती रही है, जहां एक और अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, स्पेन और इंग्लैंड जैसी पारंपरिक शक्तियां अपनी दावेदारी मजबूत करती नजर आई, वहीं दूसरी ओर कुछ अपेक्षाकृत छोटी टीमों ने भी अपने जुझारूपन और साहस से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस विश्व कप की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि अब फुटबॉल का स्तर केवल कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित नहीं रह गया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई टीमों ने दिखा दिया कि मेहनत, रणनीति और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी टीम किसी भी बड़ी शक्ति को चुनौती दे सकती है। फीफा विश्व कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक चरण यानी राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर चुका है। ग्रुप चरण और शुरुआती नॉकआउट मुकाबलों के बाद अब केवल वही टीमें बची हैं जिन्होंने दबाव, चुनौती और कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित किया। राउंड

16 में पहुंचने वाली टीमों में दुनिया की पारंपरिक फुटबॉल शक्तियों के साथ साथ कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। सबसे पहले बात अर्जेंटीना की। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने अपने अनुभव और आक्रामक खेल के दम पर एक बार फिर खिताब की दावेदारी मजबूत की है। टीम के खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण मौकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब उनकी नजर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने पर है। फ्रांस की टीम भी शानदार लय में दिखाई दे रही है। तेज गति, बेहतरीन आक्रमण और मजबूत मिडफील्ड के साथ फ्रांस ने अपने विरोधियों पर लगातार दबाव बनाया है। किलियन एम्बापे जैसे खिलाड़ी टीम के लिए सबसे बड़े हथियार साबित हो रहे हैं। ब्राजील की टीम हमेशा की तरह आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तकनीकी कौशल, रचनात्मक फुटबॉल और आक्रमण सोच के साथ ब्राजील हर मुकाबले में खिताब के प्रमुख दावेदारों में नजर आ रहा है। स्पेन और पुर्तगाल जैसी यूरोपीय टीम भी शानदार फुटबॉल खेल रही है। स्पेन का पासिंग गेम और पुर्तगाल की आक्रमण रणनीति उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों को लेकर फुटबॉल जगत में खास उत्साह है। इंग्लैंड की टीम भी इस बार संतुलित और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रही है। युवा खिलाड़ियों और अनुभवी सितारों का मिश्रण उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। पैराग्वे ने भी अपने प्रदर्शन से सब कुछ चौंका दिया। कई विशेषज्ञों ने जिस टीम को ज्यादा महत्व नहीं दिया था वही टीम राउंड ऑफ 16 तक पहुंच चुकी है। नॉर्वे ने अपने तेज और आक्रमण फुटबॉल से फुटबॉल प्रेमियों का दिल जीता है। युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और टीम की सामूहिक ऊर्जा उन्हें खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, कोलंबिया, बेल्जियम, मिस्र और इजिप्ट जैसी टीम भी राउंड ऑफ 16 में पहुंचकर यह साबित कर चुकी है कि विश्व फुटबॉल का स्तर पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धा हो चुका है। इस चरण का हर मुकाबला करो या मरो की स्थिति लेकर आता है। यहां एक छोटी सी गलती पूरे विश्व कप अभियान को समाप्त कर सकती है, जबकि एक शानदार प्रदर्शन किसी टीम को इतिहास के पन्नों में अमर बना सकता है। यही वजह है कि राउंड ऑफ 16 को विश्व कप का सबसे रोमांचक चरण माना जाता है। अब हर पास, हर टैकल, हर बचाव और हर गोल करोड़ों प्रशंसकों की धड़कनों से जुड़ा हुआ है। आने वाले मुकाबलों में दुनिया की निगाहें अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड और स्पेन जैसे दिग्गज टीमों पर तो रहेगी ही, लेकिन फुटबॉल प्रेमी यह भी देखना चाहेंगे कि क्या उभरती हुई टीमें अपने सपनों की उड़ान को आगे बढ़ा पाती हैं या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि फीफा विश्व कप 2026 का ये नॉकआउट चरण फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार अध्यायों में से एक बनने जा रहा है। फीफा विश्व कप 2026 की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि इस बार केवल दिग्गज टीमों ने ही नहीं बल्कि अपेक्षाकृत छोटी आबादी और सीमित संसाधनों वाली देशों ने भी पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जिन टीमों को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था वही टीमें बड़े बड़े फुटबॉल देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी। सबसे पहले बात मोरक्को की। अफ्रीकी फुटबॉल की इस ताकतवर टीम ने अनुशासित खेल, मजबूत रक्षापंती और शानदार काउंटर अटैक के दम पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 32 में उन्होंने नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीम को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर और फिर राउंड ऑफ 16 में कनाडा को 3-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। यह साबित करता है कि मोरक्को अब किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने की क्षमता रखता है। इसके बाद बात केप वर्दे की। करीब 5 लाख की आबादी वाले इस छोटे से द्वीपीय देश ने अपने पहले ही विश्व कप में इतिहास रच दिया। ग्रुप चरण में उसने स्पेन और उरुग्वे जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और नॉकआउट तक पहुंच गया। राउंड ऑफ 32 में उसने अर्जेंटीना जैसे विश्व चैंपियन टीम को अतिरिक्त समय तक कड़ी टक्कर दी और 3-2 से बेहद करीबी मुकाबले में हार कर भी पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। पैराग्वे ने इस विश्व कप का सबसे बड़ा उलटफेर किया। 4 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर उसने पूरे फुटबॉल जगत को चौंका दिया। भले ही राउंड ऑफ 16 में फ्रांस के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने जुझारू प्रदर्शन से यह संदेश दे दिया है कि अब फुटबॉल में कोई भी मुकाबला एक तरफा नहीं माना जा सकता।
नॉर्वे ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया। आइवरी कोस्टा जैसी मजबूत टीम को हराकर नॉर्वे ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। तेज गति, आक्रमण फुटबॉल और युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास ने इस टीम

को विश्व कप की सबसे रोमांचक टीमों में शामिल कर दिया। इन टीमों ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक फुटबॉल में केवल इतिहास, रैंकिंग या स्टार खिलाड़ी ही जीत की गारंटी नहीं होते। सही रणनीति, अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास पर कोई भी टीम दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ताकतों को चुनौती दे सकती है। यही कारण है कि फीफा विश्व कप 2026 को छोटे देशों के बड़े सपनों और शानदार प्रदर्शन के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। अब बात उन खिलाड़ियों की जिनके प्रदर्शन ने इस विश्व कप को और भी यादगार बना दिया है। सबसे पहले बात अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की। 39 वर्ष की उम्र में भी मेसी जिस तरह मैदान पर खेल रहे हैं उसे देखकर दुनिया एक बार फिर उनकी प्रतिभा को सलाम कर रही है। अनुभव, सटीक पास, बेहतरीन विजन और गोल करने की अद्भुत क्षमता के दम पर मेसी लगातार अर्जेंटीना के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी का जादू बरकरार है। मेसी ने अब तक 7 गोल किए हैं। अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक 3 गोल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 गोल और राउंड ऑफ 32 में कैपे वर्डे के खिलाफ उन्होंने गोल दागकर अपनी टीम को मुश्किल मुकाबले से बाहर निकाला और ये साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी बड़े मंच पर ही अपनी असली पहचान बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रांस के सुपरस्टार केलियन एम्पापे भी शानदार लय में हैं। अपनी रफ्तार, तकनीक और बेहतरीन फिनिशिंग के दम पर एम्बापे लगातार विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। फ्रांस के कप्तान एम्बापे इस विश्व कप में अब तक 7 गोल कर चुके हैं और मेसी के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। एम्बापे ने नाइजीरिया, कोस्टारिका और स्वीडन के खिलाफ 2-2 गोल और राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे के खिलाफ निर्णायक पेनाल्टी गोल दागकर अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। और अब बात इस विश्व कप के सबसे बड़े अपसेट की। फीफा विश्व कप 2026 में यदि अब तक के सबसे बड़े उलटफेर की बात की जाए तो वो है 4 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी का टूर्नामेंट से बाहर हो जाना। जिस टीम को खिताब के प्रमुख दावेदारों में गिना जा रहा था वही टीम राउंड ऑफ 32 में पैराग्वे के हाथों पेनाल्टी शूटआउट में हार कर विश्व कप से बाहर हो गई। जर्मनी ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी। ग्रुप चरण के पहले मैच में उसने कुरासाओ को 7-1 से हराकर अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। आइवरी कोस्ट के खिलाफ टीम अपेक्षित स्तर का खेल नहीं दिखा सकी और फिर इक्वाडोर से हार ने उनकी कमजोरियों को उजागर कर दिया। हालांकि जर्मनी ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहा लेकिन उसकी लय टूट चुकी थी। राउंड ऑफ 32 में जर्मनी का सामना पैराग्वे से हुआ। कागजों पर जर्मनी मजबूत था लेकिन मैदान पे पैराग्वे ने अनुशासित डिफेंस, शानदार रणनीति और जबरदस्त जुझारूपन का प्रदर्शन किया। निर्धारित समय और अतिरिक्त समय के बाद मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। इसके बाद फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ जहां पैराग्वे ने 4-3 से जीत दर्ज कर विश्व फुटबॉल को चौंका दिया। हार के बाद जर्मनी के कप्तान जोशुआ किमिख ने भी स्वीकारा कि टीम पूरे टूर्नामेंट में अपने स्तर का प्रदर्शन नहीं कर सकी और इस प्रदर्शन के आधार पर उनका बाहर होना निराशाजनक जरूर है लेकिन हैरान करने वाला नहीं। ये लगातार 3रा विश्व कप है जिसमें जर्मनी अपेक्षा से बहुत पहले बाहर हो गया। 2018 और 2022 में ग्रुप चरण से बाहर होने के बाद इस बार 48 टीमों की प्रतियोगिता में भी वो पहले नॉकआउट मुकाबले से आगे नहीं बढ़ सका। इससे साफ है कि जर्मनी फुटबॉल को अब केवल खिलाड़ियों में नहीं बल्कि रणनीति, मानसिक मजबूती और टीम निर्णय में भी बड़े बदलाव की जरूरत है। अब बात करते हैं उस T20 सीरीज की जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। विश्व चैंपियन भारत को आयरलैंड ने लगातार 2 मुकाबलों में हराकर ना सिर्फ सीरीज अपने नाम की बल्कि यह भी साबित कर दिया कि आधुनिक क्रिकेट में कोई भी टीम छोटी नहीं होती। जिस भारतीय टीम ने हाल ही के वर्षों में विश्व क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाया वही टीम आयरलैंड के खिलाफ संघर्ष करती नजर आई। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरी टीम इंडिया से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन मैदान पर कहानी कुछ और ही लिखी गई। आइए शुरुआत करते हैं पहले T20 मुकाबलों से। पहले मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। आयरलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाया। निर्धारित 20 ओवर्स में आयरलैंड ने 9 विकेट गंवाकर 182 रन बनाए। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण पारियां खेली और अंतिम ओवर्स में
तेज रन बटोरकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 183 रनों के लक्ष्य का

ईशा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। शुरुआती विकेट जल्द गिरने से दबाव बढ़ता गया। मध्यक्रम भी बड़ी साझेदारी बनाने में असफल रहा। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पूरी भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। इस प्रकार आयरलैंड ने मुकाबला 34 रनों से जीत लिया। मैच के हीरो रहे आयरलैंड के गेंदबाज, जिन्होंने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अब बात करते हैं दूसरे और निर्णायक T20 मुकाबले की। पहला मैच जीतकर आयरलैंड आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दूसरी ओर भारतीय टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरी थी। आयरलैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने पहले मुकाबले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और विपक्षी टीम को बड़े स्कोर तक पहुँचने से रोक दिया। 155 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के लिए मुश्किल नहीं माना जा रहा था, लेकिन आयरलैंड के गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत तो संभल कर की, लेकिन बीच के ओवर्स में रन गति धीमी पड़ गई। मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंचा। भारत को जीत के लिए कुछ ही रनों की जरूरत थी, लेकिन दबाव के क्षण में बल्लेबाज चूक गए। भारतीय टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी और आयरलैंड ने मुकाबला मात्र 1 रन से जीत लिया। दूसरे मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने जय मुंद्रा, जिन्होंने दबाव की परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीरीज में आयरलैंड के खिलाड़ियों ने सामूहिक प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में आयरलैंड भारत से बेहतर नजर आया। यही कारण रहा कि आयरलैंड ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। अब सवाल उठता है कि आखिर विश्व चैंपियन भारत को हार का सामना क्यों करना पड़ा। सबसे पहला कारण था बल्लेबाजी की अस्थिरता। भारतीय बल्लेबाजी बड़ी साझेदारियां बनाने में असफल रहे। शीर्ष क्रम से लेकर मध्य क्रम तक कोई भी बल्लेबाज लगातार जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। दूसरा कारण था दबाव की स्थिति में गलत निर्णय। दोनों मैचों में ऐसे मौके आए जब भारत मैच पर पकड़ बना सकता था, लेकिन खिलाड़ियों ने जल्दबाजी में विकेट गंवा दिए। तीसरा कारण था डेथ ओवर्स में प्रदर्शन। पहले मैच में भारतीय गेंदबाज अंतिम ओवर्स में रन रोकने में विफल रहे, वहीं दूसरे मैच में बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करते समय आखिरी ओवर्स संयम नहीं दिखा सके। अब बात कप्तानी की। श्रेयस अय्यर के लिए यह सीरीज एक बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने कई अच्छे निर्णय लिए, लेकिन मैदान पर उन निर्णयों को खिलाड़ी परिणाम में नहीं बदल सके। कप्तानी में आक्रामकता और रणनीति दोनों दिखाई दी, लेकिन टीम का निष्पादन कमजोर रहा। श्रेयस अय्यर को इस सीरीज से काफी सीख मिलेगी, खास करके दबाव वाले क्षण में गेंदबाजों के उपयोग और बल्लेबाजी क्रम के प्रबंधन को लेकर। सूर्य कुमार की अनुपस्थिति में भारतीय टीम को महसूस हुई। सूर्य कुमार केवल बल्लेबाजी नहीं बल्कि मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी हैं। मध्य क्रम में उनकी कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कठिन परिस्थितियों में तेजी से रन बनाने और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता टीम को नहीं मिल सकी। दूसरी ओर आयरलैंड ने यह साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सफलता केवल एक बड़े नाम से नहीं बल्कि बेहतरीन योजना, अनुशासन और टीम वर्क से मिलती है। इस सीरीज ने भारतीय टीम प्रबंधन को यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगामी बड़े टूर्नामेंट से पहले बल्लेबाजी, संयोजन, फिनिशिंग क्षमता और डेथ बॉलिंग पर विशेष काम करने की आवश्यकता होगी। अगर इस सीरीज का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष देखें तो आयरलैंड क्रिकेट का उभरता हुआ आत्मविश्वास है। पिछले कुछ वर्षों में आयरलैंड ने लगातार अपनी क्षमता दिखाई है और भारत जैसी मजबूत टीम को 2-0 से हराकर क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जिस दिन आप विपक्षी टीम को हल्के में लेते हैं, उस दिन परिणाम आपके खिलाफ जा सकता है। आयरलैंड ने जज्बा दिखाया, अनुशासन दिखाया और मौके का पूरा फायदा उठाया। वहीं भारत अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सका। विश्व चैंपियन होने का तमगा सम्मान दिला सकता है, लेकिन मैदान पर जीत हमेशा वर्तमान प्रदर्शन से तय होती है और इस सीरीज में आयरलैंड का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा।
महिला टी20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत एक बार फिर कायम हो गई। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। कप्तान नेट साइवर व्रट ने नाबाद 58

वेत मुनी को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 और 2026 में महिला T20 विश्व कप जीतकर अपने रिकॉर्ड को और मजबूत कर दिया। यह खिताब सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि महिला T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को निरंतर श्रेष्ठता, अनुशासन और टीम वर्क का प्रमाण है। भारत का प्रदर्शन इस विश्व कप में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। टीम के पास अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का अच्छा संतुलन था, लेकिन निर्णायक मौकों पर निरंतरता की कमी साफ दिखाई दी। भारत लीग चरण में ही बाहर हो गया और सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका। आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 रन बनाने के बावजूद भारतीय गेंदबाज उस स्कोर का बचाव नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का सफल पीछा कर भारत की विश्व कप का यात्रा समाप्त कर दी। भारतीय टीम इस विश्व कप में खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम ने कुछ मुकाबलों में शानदार क्रिकेट खेला, लेकिन बड़े मैचों में वही पुरानी कमजोरी फिर सामने आई, दबाव में निरंतर प्रदर्शन की कमी। बल्लेबाजी में स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत से बड़ी पारियों की उम्मीदें थी। गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआती ओवर्स में भारत ने अनेक मैचों में अच्छी शुरुआत की, लेकिन डेथ ओवर्स में रन रोकने में सफलता नहीं मिली। कैच छोड़ना और दबाव की क्षण में गलत गेंदबाजी योजनाएं भी टीम पर भारी पड़ी। भारत की सबसे बड़ी समस्या रही निरंतरता। कमजोर टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन हुआ, लेकिन जब मुकाबला विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया से हुआ, तब भारत अपने सर्वश्रेष्ठ खेल को दोहरा नहीं पाया। यही कारण रहा कि टीम लीग चरण से आगे नहीं बढ़ सकी। टूर्नामेंट के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी स्वीकारा कि टीम को अपनी रणनीति और प्रदर्शन पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि इस विश्व कप में भारतीय टीम के लिए कुछ सकारात्मक संकेत भी था। युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से भविष्य की उम्मीदें जगाई। यदि बल्लेबाजी में निरंतरता, डेथ बॉलिंग और फील्डिंग में सुधार किया जाए तो यही टीम आने वाले ICC टूर्नामेंट खिताब जीतने की प्रबल दावेदार बन सकती है। अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस की दुनिया में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। सर्बिया के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के पुरुष एकल मुकाबलों में अपनी 106वीं जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही उन्होंने स्विट्जरलैंड के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर के 105 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए विंबलडन में सबसे अधिक पुरुष एकल मैच जीतने वाले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल कर लिया है। विंबलडन 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 से हराकर न केवल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई बल्कि अपनी करियर का यह स्वर्णिम कीर्तिमान भी स्थापित किया। 7 बार के विंबलडन चैंपियन जोकोविच ने दबाव के क्षण में अपने अनुभव और जुझारूपन का शानदार प्रदर्शन किया। 39 वर्ष की उम्र में भी जोकोविच का फिटनेस स्तर, मानसिक दृढ़ता और जीत की भूख दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। उनके नाम पहले ही रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब दर्ज है और अब विंबलडन में सबसे पुरुष एकल जीत का नया रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है। खेल खबरों में अब बात झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची अब भारतीय फुटबॉल के इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। पहली बार एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की मेजबानी रांची का बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम करेगा। यह केवल एक खेल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि झारखंड के खेल इतिहास के लिए गर्व और सम्मान का अवसर है। डूरंड कप का 135वां संस्करण 25 जुलाई से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। इस बार टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा लेगी और मुकाबले देश के 5 शहरों में खेले जाएंगे। इनमें पहली बार रांची को भी मेजबान शहर बनाया गया है। यह निर्णय झारखंड में फुटबॉल के बढ़ते प्रभाव और यहां उपलब्ध विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का प्रमाण है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में लीग चरण के मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक खेले जाएंगे। इसके साथ ही एक क्वार्टर फाइनल मुकाबले की भी मेजबानी यही स्टेडियम करेगा। लगभग 40,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
के फुटबॉल मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है। रांची में खेले जाने वाले ग्रुप सी के मुकाबलों में जमशेदपुर एफसी, श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली और

इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम आमने सामने होगी। जमशेदपुर एफसी अपना पहला मुकाबला 26 जुलाई को डिफेंडर्स एफसी के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 4 अगस्त को स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली और 13 अगस्त को इंडियन एयरफोर्स के विरुद्ध मैदान में उतरेगी। डूरेंट कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि भारतीय फुटबॉल की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। वर्ष 1888 में शुरू हुई इस प्रतियोगिता ने भारतीय फुटबॉल को अनेक महान खिलाड़ी और यादगार मुकाबले दिए हैं। आज भी देश के शीर्ष क्लब एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी को जीतने का सपना देखते हैं। रांची को मेजबानी मिलने से स्थानीय खिलाड़ियों को देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को का खेल देखने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। इससे झारखंड में फुटबॉल संस्कृति को नई गति मिलेगी और युवा खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही पर्यटन, स्थानीय व्यापार और खेल अवसंरचनाएं को भी इसका लाभ मिलेगा। दरअसल झारखंड में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि जन भावनाओं से जुड़ा जुनून है। सिमडेगा, खूंटी, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जैसे जिलों में फुटबॉल की गहरी जड़ें हैं। गांव में आयोजित होने वाले स्थानीय टूर्नामेंट्स में हजारों दर्शक जुटते हैं और बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी इस खेल को करियर के रूप में अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डूरेंट कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी से झारखंड के खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिलेगी। स्थानीय प्रतिभाओं को देश के शीर्ष क्लबों और खिलाड़ियों को करीब से देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही राज्य में फुटबॉल के विकास को भी नई गति मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ क्रीड़ा जगत में आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रभु शरण। अब मुझे यानी विश्वजीत पात्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी क्रीड़ा जगत में आप सुन रहे थे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 टीमों के बारे में। इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच हाल ही में संपन्न T20 श्रृंखला और ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 विषयों पर संकलन और प्रस्तुति स्वर विश्वजीत पात्रा का था और कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार रांची।

0: श्रोताओं नमस्कार, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, 10:30 कार्यक्रम जोहार रांची में हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं हूं रितेश और मेरे साथ है
1: मीनाक्षी।
0: हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार,
1: नमस्कार और जोहार।
0: जोहार जोहार, कैसे हैं मीनाक्षी आप?
1: हाँ, बहुत बढ़िया।
0: और बाहर तो मौसम ने बहुत ही अच्छी करवट ली है,
1: बहुत अच्छी करवट ली। दो दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है वो रुकने का नाम नहीं।
0: अभी पता है मैं बुरी तरह ट्रैफिक में फंसा हुआ था।
1: हाँ, अभी शहर में यही हालात बने हुए हैं।
0: हाँ, क्यों है पता है? क्योंकि शहर के क्या बताऊं, बारिश है और जितनी जल ऊपर से भगवान जी दे रहे हैं उतना निकासी के लिए शायद प्रबंधन उतनी अच्छी नहीं है। तो जहाँ पर डाउन एरिया है वहाँ पर थोड़ा वाटर लॉगिंग हो गया है और रेड सिग्नल भी नहीं काम कर रहा है। तो लाजिब सी बात है कि अभी ऑफिस जाने वाले लोगों की भीड़ है तो ट्रैफिक पर थोड़ा सा लोड है इसलिए। लेकिन शुक्र करो कि मैं टाइम से स्टूडियो घुस गया है ना।
1: चलो
0: और कुछ बताओ, सुविचार से शुरुआत करते हैं
1: कार्यक्रम की। शुरुआत हमेशा अच्छे से विचार के साथ करते हैं। तो जीवन में प्राप्त की गई शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई चाहे किसी भी रूप में हो वो इंसान के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होती है। कोई भी ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता और व्यक्ति के भीतर विचारशीलता, समझदारी और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पैदा करता है। पढ़ाई का असर सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक पाने तक सीमित नहीं होता बल्कि यह जीवन को सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है।
0: क्या विचार, बहुत ही सही।
1: यानी हम कह सकते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं, हर सीखा हुआ पाठ एक दिन काम आ ही जाता है।
0: अरे क्या बात, शिक्षा वो संपत्ति है कहते हैं ना जिसे कोई चुरा नहीं सकता।
1: बिल्कुल
0: है ना। और जितनी भी चीजें इस धरा पर उपलब्ध है तुम्हारे पास, वो भौतिक हो चाहे कुछ भी हो, वो शायद एक दिन समाप्त हो जाएगा। पर तुम्हारे अंदर जो शिक्षा है, संस्कार
1: है, वो कभी
0: कोई तुमसे छीन भी नहीं सकता
1: नहीं।
0: है। और कहते हैं जितना तुम बांटते हो इस शिक्षा रूपी शास्त्र को उतना ही वो बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: क्या बात।
1: तो अब श्रोताओं के लिए एक हम गीत भी सुनवा दें।
0: एकदम।

0: बहुत ही मधुर नगमे, और ऐसे नगमे हमें कहीं ले जाते हैं, और मुझे लगता है कि इस नगमे से कुछ याद आ रहा है। ये बाहर जो भीनी भीनी फुहार और ये बारिश हो रही है, तो
1: यानी आपका इशारा है मौसम की तरफ कि मौसम ने तो करवट बदला ही है, और ऐसा करवट बदला है कि सब हाल है बेहाल है सबका।
0: बेहाल चलो अच्छा है, हाले बेहाल से दिल का हाल जाना जा सकता है, पर हम ये कहते हैं कि मौसम भी बहुत ज़रूरी, हर मौसम का अपना मिजाज होता है, और बरसात भी बहुत ज़रूरी है। चूंकि हम जो हमारा भारतवर्ष, हमारा राष्ट्र है, ग्रामीण परिवेश का राष्ट्र है, और हम कृषि पर अभी भी बहुत निर्भर करते हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मौसम ने उनका साथ दिया है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों से अपील है, वो अपना खेत अविलंब तुरंत शुरू करें जोतना और बिचड़े प्रबंधन की तैयारी करें, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि बारिश अच्छी होगी,
1: तो फिर आपका फसल भी गया
0: होगा। हाँ, बहुत जगह तो मैं जाते रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह पर लोग बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, जो अगाध खेती करते हैं वो बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, और उनके खेतों में पानी भी वो जमा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और जो जलाशय की स्थिति थोड़ी बहुत सुनने में आ रहा था ना कि हटिया डैम या कांके डैम में थोड़ा जलस्तर में गिरावट आई थी, वो चलो अब पूर्ण हो गए, सुधार हो ही नहीं गया, ये जलस्तर में पूर्ण था, अभी तीन दिनों की बारिश में बहुत ही अच्छी मात्रा में जल आ गया है, है ना,
1: जरूरी था ये, बिल्कुल जरूरी।
0: लेकिन थोड़ी बहुत पता, एक वो भी न्यूज सब हम देखते हैं और आसपास ये भी देखते हैं, कहीं कहीं वाटर लॉगिंग होता है, तो फिर आम जनजीवन को थोड़ा बहुत तो परेशान।

0: परेशानी होती,
1: होती है ना,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जैसे हमारे रांची में बहुत सारा जो लोअर एरिया है, करमटोली का नीचे एरिया, हिंदपीढ़ी का नीचे एरिया, पत्थल कोतवा लोअर कंपाउंड, जहाँ पर ड्रेनेज की सुविधा नहीं है। और पता ही, मैं तो कहूंगा ये आम जनमानस के कारण, हम कहते हैं ना, हम सब कुछ सरकार के ऊपर थोप देते हैं कि सरकार के कारण ऐसा हो रहा है, पर कभी हम अपने आप में सोचते हैं कि क्या हम कर रहे हैं? हम ये जो कंक्रीट जंगल बना देते हैं, क्या हमने सोचा कि अपने ही घर में अपना हम जल प्रबंधन करें? है ना, सरकार कहती है कि अपना वेस्ट वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट करें। क्यों कहती है? कि अपने घर का जो जल है वो अपने घर के बाहर ना बहाएं, ना बहाए, अपने घर में वाटर रिजर्वायर बनाकर उसको जल संचयन करें। तो इससे क्या होगा कि आपके क्षेत्र के आसपास भी जल स्तर जो है वो पर्याप्त आपको मिलेगा सालों भर। तो इसमें हम सरकार को दोष क्यों देंगे? हम अपने घर को पूरे पत्थर कंक्रीट से पूरा भर देते हैं और अपने घर का जो पानी है वो सड़क पर बहाते हैं, फिर दोस्त
0: खुद परेशान,
1: फिर खुद परेशान होते हैं। तो ऐसे में हम आम जनता से कहना चाहेंगे कि हमारा जो अपना कर्तव्य है, इस कर्तव्य का जरूर निर्वहन करें और एक हम जिम्मेदार और एक सफल नागरिक बने।
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: सिर्फ प्रबंधन को ही दोष देना सही नहीं है,
1: बिल्कुल नहीं दोष देना।
0: हर एक इंसान को इसके लिए पहल करने की जरूरत है। जब तक हम इसकी शुरुआत नहीं करेंगे तो हम इन्हीं परेशानियों से जूझते रहेंगे।
1: कहते हैं ना, बी केयरफुल एंड बी अवेयर, है ना, बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि स्वयं से अगर हम जागरूक रहेंगे तो फिर औरों को भी हम जागरूक कर सकते हैं,
0: बिल्कुल।
1: और ये आज के जमाने में ये बहुत बड़ी चीज है, इस पर हमें काम करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आने वाले समय में जो जल की स्थिति होने वाली है मीनाक्षी, वो तुमसे हमसे छिपी नहीं है। हमारे रांची जो कहते हैं ना, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ये हमारा स्वर्ग हुआ करता था, है ना। आज गर्मी के दिनों में मीनाक्षी क्या स्थिति रहती है, और हमारे पता है मीनाक्षी कहाँ के रोड, जैसे ये पॉश एरिया में, जहां पर हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जल, गर्मी के दिनों में जल का ये हाल रहेगा। बड़े बड़े जो फ्लैट्स में मीनाक्षी, मैं, मेरे कई फ्रेंड्स के फ्लैट वहां पर हैं, वो कहते हैं कि रितेश भाई गर्मी के दिनों मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। क्यों? तो उनका हजार हजार फीट बोरिंग किया हुआ वो फेल हो जाता है। क्यों होता है? वाटर प्रबंधन हम नहीं करते हैं, जल का दोहन शोषण हम करते हैं, भुगतेंगे कौन? हम भुगतेंगे, हम भुगतते हैं, करने वाले हम ही, तो भुगतने वाले भी हमें। तो इस पर हमें बिल्कुल गौर करना चाहिए। और हम अपने युवा पीढ़ी से अपील करते हैं कि आओ हम सब संकल्प लें कि हम अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को हरा भरा, जल से परिपूर्ण, बिल्कुल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर एक सफल सुसंस्कृत नागरिक होने का प्रमाण दें, है ना,
0: तभी हमारा भविष्य सुधरेगा,
1: बिल्कुल सुधरेगा।
0: तो अब थोड़ा अपने श्रोताओं को हम मौसम का हाल भी बता दें।
1: अरे बता दो
0: क्या है कि जैसे मॉनसून के पूरे राज्य में फैलने और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र में झारखंड के सभी जिलों में बारिश शुरू हो गई है, और सोमवार को यानी कि कल सबसे अधिक लातेहार में 35 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि रांची में 15 मिलीमीटर, मेदिनीनगर में 13 मिलीमीटर, बोकारो में 15 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 2 मिलीमीटर, हजारीबाग में 3 मिलीमीटर, गुमला में 3 मिलीमीटर और कोडरमा में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची सहित राज्य के लगभग सभी जिलों में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई गई।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा मौसम का, मौसम हमारे अनुकूल हो रहा है समस्त राज्य में, तो ये हम सबों के लिए और हमारे किसान भाइयों कृषकों के लिए बहुत ही अच्छी बात है।
0: और एक और अच्छी बात है कि लगातार बारिश से कई जिलों में तापमान में भी गिरावट आई है, जो गर्मी और उमस से लोग परेशान थे उससे थोड़ी राहत मिली।
1: अरे कल पता, कल मैं चादर ओढ़कर सोया था मीनाक्षी, है ना।
0: तो अब जब जैसा मौसम है तो हम मौसम के अनुसार ही अपने आप को ढाल लेते हैं,
1: बिल्कुल। और कृषक भाई, अब आप तैयार हो जाइए, मौसम आपका साथ दे रहा है, तो अपने अनुरूप अपनी तैयारी करें और खुशहाल राज्य राष्ट्र की परिकल्पना में अपने आप को आगे बढ़ाए।
2: 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के

0: चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम जोहार रांची में, है ना मीनाक्षी। एक बात तुम्हें मैं बताता हूँ, महात्मा गांधी जी उन्होंने उनका एक टैलिस्मान यानी उन्होंने एक ताबीज दिया था। कहते हैं उन्होंने वो लिखते हैं, जब भी तुम्हें कोई संदेह हो या तुम्हारा अहंकार तुम पर हावी होने लगे, स्वयं पर यह परीक्षण करो। उस समय सबसे गरीब और कमजोर आदमी का चेहरा याद करो जिसे कभी तुमने देखा हो, है ना, और अपने आप से पूछो कि जो कदम तुम उठाने की सोच रहे हो क्या वह उस व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा, क्या उससे उसे कुछ फायदा मिलेगा, क्या उसे अपने जीवन पर या फिर उसके भाग्य में कोई इससे परिवर्तन होगा, क्या इससे उन लाखों भूखों और आध्यात्मिक रूप से वंचित लोगों को स्वराज मिलेगा। तब तुम यह पाओगे कि तुम्हारा संदेह और अहंकार तुम्हारा पिघल रहा है। कितनी बड़ी बात महात्मा जी ने कहा, पता इससे क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है, क्या कहते हैं, स्वयं से देखो। नहीं कहते हैं कि जब अपना अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल, देखा दिल जब अपना तब फिर जाना दूसरे
2: का हाल,
1: है ना। हम कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, लेकिन जब
2: दूसरों के दुख को देखते हैं तो फिर हाँ,
1: उस पे बहुत सारे गाने भी बने हैं ना।
2: हाँ बिल्कुल, तो गाने तो बने हैं, लेकिन ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने जो गांधी जी के द्वारा कही गई है, जो हम सभी को एक सीख देकर जाती है।
1: मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो फिर मैं अपना गम भूल गया, है ना। तो ऐसी बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आज के बदलते परिदृश्य में जब हम स्वयं पर केंद्रित हो रहे हैं, हम बिल्कुल स्वार्थवश जीवन, चाहे वो हमारे, मैं अपने आज के युवा को भी देख रहा हूँ कि बिल्कुल अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं, या तो फिर मोबाइल, या तो फिर लैपटॉप, या तो फिर कंप्यूटर, या फिर इंटरनेट, एक कमरे में बंद होकर उनकी अपनी दुनिया है। ऐसे में वो थोड़ा बहुत भूल जाते हैं कि हमारे साथ हमारे माँ बाप भी रहते हैं, हमारे भाई बहन भी हैं, हमारे आस पड़ोस में बहुत लोग रहते हैं जिनसे हमें मिलना चाहिए, उनके बारे में, उनके सुख दुख के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ये थोड़ा सा गंभीर बात मीनाक्षी मैं तुमसे कह रहा हूँ, और शायद तुमको लगता भी होगा कि क्या ऐसा हो रहा है, है ना। तो शायद इस पर मुझे लगता है कि हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि हमेशा अपने आप में केंद्रित होकर ना रहें,
2: दूसरों के दुख
1: के बारे में सोचें। अपने घर परिवार से इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं कभी, मैं तो ये देखता हूँ।
2: दुख बांटना ही इंसानियत है, बिल्कुल।
1: हाँ हाँ, मीनाक्षी कभी तुमने देखा, अगर तुम अगर संयुक्त परिवार किस लिए होते थे, इसलिए होते थे कि सबकी जिम्मेदारियां बटी हुई होती थी। आज भी हम यदा कदा अगर हम कभी देखते हैं कि अगर आज तो सब फ्लैट कल्चर आ गया है, माँ पिता कभी गाँव में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, ऐसे में मैं एक कहता हूँ कि कभी तुम अगर अपने ऑफिस से लौटते हो तो अपने वृद्ध माँ बाप के पास जरूर जाकर 10 मिनट के लिए बैठो, उनके पास बैठकर जरूर चाय पियो और उनसे थोड़ा शेयर करो कि पिताजी आज आपने दिन में क्या किया, कैसा रहा आपका दिन। अपनी माता जी से पूछो कि माता जी आपने कुछ किया, आपने एक्सरसाइज किया, कुछ किया।
2: ये तो, बात बहुत तो देखना मीनाक्षी, क्योंकि उनका जो अनुभव है ना वो हमारे लिए अनमोल है।
1: तो ये जो हार्मोनल फीलिंग्स होती है ना, मैं तो मीनाक्षी मैं तो बहुत क्या बताऊं, मैं ये सब एक्सपेरिमेंट में करते रहता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा ये सौभाग्य प्राप्त है
2: अलग अलग लोगों से
1: अलग अलग प्रांतों में जाकर, बहुत दूर दराज भारत के हर प्रांत में मैं जाता हूं और महीने में 10-15 दिन में जाता ही जाता हूं। तो मुझे ऐसे युवा पीढ़ी, अधेड़ वयस्क, वृद्ध, हर लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो मैं जब भी किसी के घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं उसके माँ पिता के पास जाकर बैठता हूँ, और जब मैं उनसे दो शब्द दो बातें करता हूँ वो बिल्कुल मुझे मेरा नंबर लेकर मुझे वो जरूर फोन करते हैं। तो ये कहने का सारी

0: ये है मीनाक्षी कि आप जो अपने घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके अभिभावक हैं, उनके पास जरूर 10 मिनट ही जरूर निकालें, तो देखिएगा उनका उत्साह और उनकी उनका जो हार्मोनल फीलिंग होगा ना, उनमें कितनी चमक आए कि मेरा पुत्र आता है, मेरी पुत्री आती है और बैठकर आज सारा दिन में क्या किया, कैसे क्या खाया, क्या पिया, क्या चाय पिया, कैसे आगे देश दुनिया में क्या हो रहा, 10 मिनट ही आप बैठ लोगे ना तो देखना उनके चेहरे की चमक एक अलग,
1: बिल्कुल उन्हें एक अलग खुशी मिलती है। और ये मैं जैसे देखा जा रहा है आजकल के जमाने में थोड़ा ये कल्चर थोड़ा अभी विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन इसे हमें बचा कर रखना है और अपने अभिभावकों का, अपने माता पिता का हमेशा आदर करते रहना है।
0: अरे
1: और
0: उनका उनका आशीर्वाद हमारे लिए पता है भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। और हम अपने युवा बच्चों से, युवा पीढ़ी से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सबसे आप संपर्क रखो, सबसे बात करो, सप्ताह में 2 ही दिन समय निकालो बट फोन से आप बात करो, वीडियो कॉलिंग करो,
1: अपने परिवार से जुड़े रहना,
0: जुड़े रहो। और पता है मीनाक्षी, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं तो ये देखता हूँ कि शायद हमारे बच्चों को हमारे जो डिस्टेंट रिलेटिव है उनके बारे में पता ही नहीं है कि हमारे ताऊ ताई फूफा फाफी के जो बच्चे थे वो शायद उनके कजन्स ब्रदर कैसे हैं, है ना।
1: बिल्कुल नहीं, मतलब
0: क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ?
1: बिल्कुल सही बात है, ये आजकल के बच्चों को तो ये पता भी नहीं होता है कि हाँ हमारे रिलेटिव्स कहाँ कहाँ तक, कितने दूर तक हैं और उनका क्या है रहना, उनका कल्चर क्या है, या फिर हमारे पुराने ज़माने में जो हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनका हम भी, उनको भी हम नहीं समझ पा रहे हैं।
0: हाँ, तो समझने पाने के लिए क्या होगा, आपको अपना थोड़ा सा समय निकालना होगा अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने साथ में, अपने दोस्तों साथ में, आपके हितैषी के लिए एक बार करके देखिए ना, इतना सुकून, इतना मजा आता है ना, वो फीलिंग्स जब आपको वो वाइब्रेशन मिलेगी ना, पता है मीनाक्षी, मैं अभी ट्रेन में सफर कर रहा था और पता नहीं कैसा संयोग हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति बैठे हुए थे और बातों बातों में वो मुझसे पूछे तुम्हारा नाम क्या, मैंने अपना नाम बताया, उसके बाद फिर पूछे नाम जब जाने तो बड़ा उत्सुकता हुई, अरे नाम तो तुम्हारा ये है, तुम किस जगह से हो, फिर मैंने अपना वो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, तो बोले नहीं नहीं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं, अब बताओ कि तुम किस जिले में, कहां तुम्हारा गांव है, तो मैं जब अपने गांव का नाम बताया वो मेरे मेरे दादाजी का नाम लेकर पूछे तुम उन्हें जानते हो, मतलब अब मैं क्या बताऊं कि वो क्या मेरी अनुभूति थी। और वो पूरा जब वो चर्चा चली तो वो मेरे एक नजदीक के, मतलब मेरे नजदीक के नहीं बट वो मेरे एक रिश्तेदार निकल गए और वो अपने किसी बच्चे से मिलकर विदेश से वापस आ रहे थे।
1: तो ये बातचीत के दौरान ही पता चली, जब तक हम किसी से एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे तो हमें इसीलिए जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए कहा जाता है कि एक दूसरे से हमेशा जुड़ कर रहें।
0: अब तो आपके पास ऐसे गैजेट्स आ गए मीनाक्षी, अपने ग्रुप फॉर्म करके, आप अब एक परिवार का ग्रुप फॉर्म करके जो भी जहां पे उसका नंबर संकलन करो और सप्ताह में एक दिन आपस में मिलो,
1: बिल्कुल हाँ।
0: इससे क्या होगी, आपकी दुनिया बड़ी खुशहाल होगी और आपकी दुनिया सिमटेगी भी, जो आज दूर दूर हम सब होते जा रहे हैं, सिर्फ हमें अपने आप से मतलब है। तो फिर चलो एक बढ़िया सा एक गाना सुना दो,
1: बिल्कुल जो परिवार से जुड़ा हुआ है ये गीत।
0: हाँ जी, चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का।
1: आज पता है तारीख क्या है मीनाक्षी? आषाढ़ 16 शक संबत 1948
0: यानी 7 जुलाई।
1: 7 जुलाई है ना। और ये पता है ये सप्ताह ये क्या चल रहा था?
0: अभी तो वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है, यानी कि वृक्षों का त्योहार।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: और भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये मनाया जाता है ये सप्ताह, और आज है 7 जुलाई। यानी आज तक ये मतलब यह कहने का मतलब है
1: क्या कि ये तो फिर देता है ये वन महोत्सव,
0: ये बिल्कुल कि हमें
1: और मनाने का ये उत्सव मनाने का क्या है, इसकी क्या सोचते हो तुम, क्यों ये उत्सव मनाया?
0: बिल्कुल, ये देश में वनों को घटते क्षेत्र को बढ़ाना है, बिल्कुल, यानी कि हमें पर्यावरण के प्रति सजग होना है।
1: यानी मिलाजुलो के बात आ जाती है हमारे अपने पर्यावरण की, हमारे अपने भविष्य की, हमारे अपने धरती के जीवन की, धरती पर जीवन की। यानी वृक्ष लगाओ और धरती को बचाओ, एक वृक्ष सत पुत्र के समान।
0: बिल्कुल,
1: कितनी सारी बातें हमारे शास्त्र से लेकर हमारे मनुष्यों द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा कही गई, इन सबों का वैज्ञानिक हमारा तर्क है, है ना, तर्क के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है।
0: तो वन महोत्सव जो है ये तो फिर सिर्फ जागरूक करने के लिए लोगों को मनाया जाता है, लेकिन इसके लिए हमेशा हमें सजग रहना है कि हम अपने वनों को बचाएं, अपनी हरियाली बचाएं और अपनी धरती को बचाएं, हम जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस पे हमारा जीवन है और जीव जंतुओं का भी जीवन है, सिर्फ हमारा ही नहीं।
1: वन महोत्सव सिर्फ हम कमरे में बैठकर एक बोलकर गोष्ठी कर वन महोत्सव बनाने से हमें अपने उद्देश्य की
0: पूर्ति
1: फलाफल नहीं होगा। ऐसे में हमें आगे आकर अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी निभाकर कम से कम एक पौधा तो हम जरूर

0: लगाए।
1: और पता है ये वन महोत्सव है जो जुलाई में ही क्यों मनाया जाता है?
0: ये देखो आषाढ़ का महीना है ना,
1: क्योंकि जुलाई का जो समय होता है मॉनसून के आगमन का होता है, जो नए पौधों के रोपने और पनपने के लिए सबसे अनुकूल मौसम माना जाता है।
0: हाँ, इसमें अगर हम वृक्षारोपण पौधारोपण करते हैं तो उसके बचने की संभावना बहुत अच्छी रहती है।
1: हाँ,
0: क्योंकि उसे प्रकृति अपने आप सींच देती है ना। और अगर ये 3-4 महीने अगर ये पौधे रह गए तब तो फिर उसे आगे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसे मवेशी से बचाना है। वो 1 साल बचा दीजिए, फिर वो आपका देखिए वो पुत्र 5 साल में कितना बड़ा हो जाता है
1: और वो आपको कितने फल देगा,
0: कितने फल देगा, कितने ऑक्सीजन देगा।
1: हाँ।
0: आपको छाया देगा, आपके आपके क्या कहते हैं जल स्तर को बनाकर रखेगा,
1: वातावरण को शुद्ध करेगा।
0: तो ये करना चाहिए, करिए तो फिर देखिए मजा देखिए उसका।
1: और इसकी जागरूकता की जो महत्व है इसका ये है कि लोगों को वनों के महत्व, वायु को शुद्ध करने वाले ऑक्सीजन के चक्र और मिट्टी के कटाव को रोकने के बारे में शिक्षित किया जाता है। इसके जागरूकता का मकसद ये है।
0: इसलिए हम कहते देखते हैं ना, हर स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में भी ये महोत्सव बढ़ चढ़कर मनाया जाता है कि हमारी नीचे की पीढ़ी, ऊपर की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी सब इससे अवेयर होकर अपना कम से कम समाज के लिए कुछ तो कर दे, ताकि ये धरती, ये पर्यावरण, ये प्रदूषण से हम कुछ तो बचें, ये ग्लोबल वार्मिंग से कुछ तो हम बचें। और बच सकते हैं तभी जब हम पौधारोपण करेंगे, तभी एकमात्र उपाय, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ये कि हम उसका दोहन कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं,
1: और इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता।
0: कुछ
1: एक
0: नहीं।
1: पौधे का रोपण अगर हर एक इंसान भी करे तो फिर ये काफी है।
0: हाँ।
1: लेकिन इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है।
0: कितनी बड़ी बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, उन्होंने शुरू किया ना एक पौधा माँ के नाम है ना, अपनी माँ के नाम से एक पौधा लगाओ। क्यों? माँ जैसी माँ सम्मानित, जैसी माँ वरदाई, वैसे ही वृक्ष सम्मानित, वृक्ष वरदाई। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं सलूट करता हूँ कि वो देशवासियों से ऐसी अपील करते हैं, जनमानस से ऐसी बातें करते हैं कि आइए एक पौधा कम से कम माँ के ही नाम से लगा कर देखिए, है ना। 5 साल बाद आपको दिखेगा, जब आप उस वृक्ष के नीचे खड़े रहेंगे तो फिर आप याद करें कि हमने क्या किया है ना, हमने अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने लिए क्या किया।
1: ये हमारे लिए हित में है, हमारे पर्यावरण के हित में है।
0: हाँ,
1: इसलिए
0: हाँ,
1: हमें इस बात को समझना होगा।
0: हाँ, सिर्फ महोत्सव मनाकर एक खाना पूर्ति कर हम गोष्ठी कर नहीं बचे, और जरूर एक पौधा लगाए और एक सफल जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाए,
1: अपनी पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाए।
0: हाँ, हरा भरा बनाकर ऐसा बनाए कि हमारा जो राष्ट्र पक्षी
1: मोर है
0: वो भी उसमें चारों तरफ, मैं कई जगह जाता हूँ वहाँ मुझे मोर दिखते हैं, तो ऐसा हो जाए कि हर जगह मोर नाचे, है ना।
1: और ये तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारे वन बचेंगे तभी हमारे जीव जंतु भी बचेंगे।
0: उनका
1: और संरक्षण भी वही होता है।
0: और मोर का नृत्य हमें दिखाई देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो एक गीत भी सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: शिमारू के नए

0: लुक छुप बाता कर लीजिए, है ना। चलो अगला सेगमेंट क्या कह रहा है आगे का?
1: अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं इतिहास की।
0: इतिहास के बारे में, हाँ। आज जो है जन्म हुआ था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का।
1: हाँ, इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के स्थित गुलेर गांव के मूल निवासी थे, इसी कारण इनका नाम गुलेरी से जुड़ा।
0: क्या बात है।
1: और इनकी योग्यता के बारे में भी बताएं अपने श्रोताओं को कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ लैटिन और फ्रेंच जैसी भाषाओं का भी गहरा ज्ञान था। और इनकी रचित जो कहानियां हैं उनके बारे में भी हम जरूर बताएंगे अपने श्रोताओं को।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो उनकी कहानियां जो हैं वो हैं उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। और उन्होंने जो निबंध लिखा वो कछुआ धर्म, मोरिस मोही कुठाऊं और पुरानी हिंदी, ये सब उनकी रचनाएं हैं। तो एक हम इस अवसर
0: ऐसे
1: पर
0: महान शख्सियत को हम नमन करते हैं, उन्हें सत सत प्रणाम करते हैं।
1: तो इस अवसर पर एक
0: गाना बिल्कुल सुनाओ।

0: हम जन्मदिन की बात कर रहे हैं आज के, तो आज है 7 जुलाई, तो
1: और आज बड़ा ही खास दिन है हमारे झारखंड के एक सितारे का, है ना? क्या सितारा है वो?
0: खास शख्सियत की बात कर रहे हैं हम,
1: एक ऐसा छोटा बच्चा, एक ऐसा सितारा जिसने हमारे राज्य ही नहीं हमारे देश का नाम पूरे विश्व के परचम पर लहराया, ऐसे हमारे महान खिलाड़ी,
0: बिल्कुल,
1: जिन्हें हम प्यार से कहते हैं
0: माही
1: महेंद्र, अपना महेंद्र सिंह
0: धोनी। इनका जन्म 7 जुलाई को रांची के बिहार में हुआ था, जो पहले बिहार था,
1: हाँ, अब ये
0: वर्तमान में झारखंड है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: और पूर्व भारतीय कप्तान जिन्हें प्यार से हम अभी
1: माही कहते हैं ना,
0: कहते हैं, हाँ।
1: बचपन से वो प्रतिभा,
0: और कैप्टन कूल भी इन्हें कहा जाता
1: है। उसने एक से एक पता नहीं एक से एक रिकॉर्ड कायम किया, और वो बचपन से ही बड़ा शर्मीला, बड़ा चुपचाप रहने वाला बालक था, जो इतना प्रतिभावान बना कि हमारे देश के लिए दो दो वर्ल्ड कप उसने जीते और कई कीर्तिमान स्थापित किए, हमारे राज्य का नाम राष्ट्र के फलक पर लाया और राष्ट्र का नाम विश्व में बताया। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में और चैंपियंस ट्रॉफी भी उसने अपने कप्तानी में हमारे टीम को विजयी दिलाई, है ना?
0: हाँ, तो उन्हें शुभकामनाएं,
1: और हम उन्हें कहते हैं माही हैप्पी बर्थडे।

एक बार फिर से हमारे कैप्टन कूल माही को हैप्पी बर्थडे। और साथियों, आज का दिन 7 जुलाई, इतिहास में कई महान हस्तियों शख्सियतों का आज के दिन निधन हुआ था। ऐसे में एक हमारे जाबाज सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा, सन 1999 यादगार दिन, जब कारगिल युद्ध हमारे पड़ोसी देश ने हमारे देश के अंदर आतंकवादियों को भेजा था। ऐसे में कारगिल युद्ध के दौरान 0.4875 यानी वो हमारा एक हमारे देश की सीमा का एक पॉइंट था। बड़ी जाबाजी, बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए भारतीय सेना के वीर अधिकारी कैप्टन बत्रा ने उस पॉइंट को बचाया था और कई दुश्मनों को मार मार कर उसको छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसे वीर को परमवीर विजेता का सर्वोच्च बलिदान दिया गया। ऐसे परमवीर को हम सलाम करते हैं और कहते हमें ऐसे जाबाज पर गर्व है, जिसके कारण आज हम सुरक्षित हैं, आज हम चैन की नींद सो लेते हैं। ऐसे वीर को सत सत प्रणाम है।

0: समाप्त हुआ जा रहा है।
1: हम अपने श्रोताओं से कहते हैं आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। रितेश और मीनाक्षी को दें विदा। नमस्कार, जोहार।
0: नमस्कार, जोहार।

श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से 11:30 कार्यक्रम फिल्म संगीत में हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं श्रोताओं? रितेश करता है आपको नमस्कार।

एक तरह साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार तो तेरा प्यार भी हमारा है।

ऐसा नजारा दिखे जहां टूटकर भी कोई शिकायतें नहीं, खुद को जोड़ने की हिम्मत है, जहां रिश्ते के बीच जीत हार नहीं बस निभाने की दरकार है, निभाने की नीयत है। और ऐसा हम कहते हैं कि ऐसा जरूर है हमारे और आपके बीच ये जो रिश्ता है ये बस बना रहे, चलता रहे।

0: ऐसे जज्बात, ऐसे एहसास हमारे आपके बीच तो हमेशा से रहता ही है। लेते हैं छोटा सा विराम, फिर हाजिर होते हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम ही संपन्न होता है साथियों। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दिन के 12 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी सखी लता और हम सबके साथ है हम सबकी प्यारी सखी निधि।
1: तो बहनों, स्वीकार करें निधि का भी प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और बारिश का मौसम है तो आप सभी घर में बैठी होंगी और
0: गर्मा गर्म पकौड़े और चाय के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रही
1: होंगी। तुमने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया, मैं तो यही बोलने जा रही थी। खैर चलो, बहनों को पता तो चला। हाँ। और मैं जानती हूँ कि हम भी यही करके आ रहे हैं और हाँ। बहनें भी यही प्लान कर रही होंगी, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो अब बता दो कि आज कार्यक्रम में क्या क्या है।
0: आज हम बहुत ही खास वार्ता और बहुत ही खास जानकारी बहनों को लेकर के आए हैं। और बहनों, वाकई ये जो मौसम है ना, हम सबको आनंदित कर देती है, क्योंकि जैसे कि हमने गर्मा गर्म चाय और पकौड़े की बात की और इसके साथ ये प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ हरियाली और प्रकृति की ये छटा वाकई देखते ही बनता है। तो बहनों, प्रकृति ने हमें कितनी अनमोल उपहार दिए हैं, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, और हम इसका लाभ उठाते हैं, लेकिन हम एहसास ये बहुत कम ही कर पाते हैं कि हमें प्रकृति के लिए क्या करना है ना। क्योंकि जो भी है, बल्कि हम कह सकते हैं लता कि हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो प्रकृति की वजह से ही है।
0: बिल्कुल।
1: तो अब वक्त आ गया है कि हम भी ये सोचें कि हमें प्रकृति के लिए क्या करना है।
0: बिल्कुल, प्रकृति संतुलन की जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहनों, आज हम इसी विषय पर, जैसा कि निधि ने कहा था कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, तो आज इसी विषय पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये चर्चा। और हम सभी के जीवन से ये चर्चा जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रकृति संतुलन हमारी जिम्मेदारी है।
1: हाँ सही कह रही हो लता, प्रकृति हमें जीवन देती है। जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, स्वच्छ हवा, जल, उपजाऊ भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जितनी भी चीज़ों पर हम निर्भर करते हैं ना, सब प्रकृति ही तो है। तो प्रकृति माँ के समान है, बल्कि हमारी माता ही है जो हमारा पालन पोषण इतने प्यार से करती है। और प्रकृति का जो संतुलन है ये बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसके लिए बहुत सारे कदम हमें उठाने भी चाहिए, क्योंकि आजकल देखो लता, प्रदूषण कितना बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल। और बहनों, ये प्रकृति जिसे हम माँ कहते हैं, वो प्रकृति जो है वो अनमोल देन है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने इस संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है, बीमार कर दिया है। और इसका परिणाम हम जलवायु परिवर्तन, भीषण गर्मी, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और घटते जो भूतल है, स्वर है, वो सभी हम इसको देख रहे हैं और हम पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने ये क्या किया है।
1: बिल्कुल सही कहा लता, क्योंकि मानवीय गतिविधियां जो हैं, मनुष्य द्वारा की गई गतिविधियां जो हैं, वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये सभी जानते हैं, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में ना लता, हम इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिस परिणाम की तुमने बात की, तो ये परिणाम तो हम सभी देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात लता जो तुमने बताई, वो है जलवायु परिवर्तन। अब देखो कि हम जिस मौसम का उम्मीद करते हैं, मतलब सोचते हैं कि अभी ये मौसम होना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत हो जाता है। आजकल तुमने देखा होगा कि बदलाव कितनी जल्दी आ जाता है ना, अचानक से आंधी तूफान हम देखते हैं, या फिर कभी सूखा, जैसे बारिश की कमी या बारिश की अधिक।

0: का। तो ये सभी जलवायु परिवर्तन है, तो ये क्या है, ये प्रकृति का असंतुलन है।
1: बिल्कुल बहनों, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य है।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो लता, यदि हम छोटे छोटे कदम उठाएं, प्रयास करें, तो ये छोटे छोटे कदम ही आगे चलकर ना एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चों को इसकी आदत डालनी चाहिए, और ये जो छोटे छोटे कदम उठाने हैं ये सभी उम्र के लोगों को उठाने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा पीढ़ी इसमें शामिल होगी या जो वयस्क हैं उन्हें शामिल होना होगा, बल्कि बच्चों को भी इसके बारे में बताना ये बेहद जरूरी है।
1: और जब नई पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझेगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा, क्योंकि बहनों प्रकृति बिना हम अपने आप के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, यह असंभव है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी।
0: बिल्कुल, प्रकृति तो हमारी रक्षा करती ही है, पालन पोषण करती है, लेकिन अगर हम इसका संतुलन बनाए रखेंगे तो आगे चलकर जो भयंकर परिणाम हो सकते हैं उससे हम बच सकेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सकेंगे और उनको एक हम उज्ज्वल भविष्य दे पाएंगे।
1: हाँ, क्योंकि प्रकृति संतुलन केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। एक और भी जिम्मेदारी बनती है बहनों, और निधि हमको लगता है कि वो जिम्मेदारी के बारे में जानती
0: हूँ। मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ क्योंकि बातें तो हमने बहुत कर ली और बहनों को इंतजार होगा अब कुछ मनोरंजन का। तो ये खूबसूरत सा गीत है हमारी बहनों के लिए।
1: हाँ।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: बहनों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब लता, कार्यक्रम में और क्या है?
2: बिल्कुल बहनों, आज हम प्रदूषण का हाल देख ही रहे हैं और आज हमने प्राकृतिक संतुलन की भी बात की, तो आज हम अपने भेंट वार्ता में इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए आज की हमारी खास मेहमान हैं सौम्याला तहजीब, जो एक शोध कार्य से जुड़े हैं और इनसे बातें की हैं हम सब की रेडियो सखी निधि वर्मा ने। तो आइए सुनते हैं बढ़ता प्रदूषण विषय पर ये भेंट वार्ता।
3: नो, प्रदूषण की समस्या गत वर्षों में काफी बढ़ रही है। यूं तो हम काफी कदम उठा रहे हैं इस दिशा में, लेकिन फिर भी प्रदूषण एक दानव का रूप लेकर हमारे सामने खड़ा है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच हैं सौम्याला तहजीब, जो कि शोध कार्य से जुड़ी हुई हैं। सौम्याला जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: बहुत बहुत धन्यवाद नीति जी।
3: सबसे पहला सवाल सौम्याला जी, कि जो प्रदूषण है उसके बढ़ने का कारण क्या है?
4: देखिये निधि जी, पहले हम ये समझते थे कि बढ़ते प्रदूषण को लोग केवल शहरों की समस्या समझते थे, लेकिन अब यह गांव तक भी पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण के बारे में मेरा अब यही कहना है कि आज के समय की एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। हवा, पानी, मिट्टी और ध्वनि, सभी प्रकार का प्रदूषण हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण के कारण हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होती है। कई लोगों को खांसी, एलर्जी, आंखों में जलन और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां होने लगी हैं। जल प्रदूषण से पेट की बीमारियां और गंदे पानी की समस्या बढ़ती है। यह केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा है। अगर आज

0: हम सावधान नहीं हुए तो भविष्य में साफ हवा और साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए प्रदूषण को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही बताया आपने, और बहुत सारे इसके कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण जो है हमारी आधुनिक जीवन शैली जो है, जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं। तो बहुत सारे कदम हमने उठाए हैं, और हम सुनते भी रहते हैं कि बहुत सारा जो कार्य है वो इस दिशा में किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों में ये देखा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: देखिए, प्रदूषण के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मानवीय गतिविधियां हैं। मनुष्य विकास और आधुनिक जीवन शैली के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाता जा रहा है।
1: बिल्कुल
0: सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियां और उद्योग भी बढ़ रहे हैं। हमारे घरों से निकलने वाला कचरा, धुआं और गंदा पानी वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। आजकल लोग सुविधा के लिए प्लास्टिक का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो प्लास्टिक नदी जल्दी नष्ट नहीं होता और यह जमीन तथा पानी दोनों को नुकसान पहुंचाता है।
1: बिल्कुल
0: शहरों में पेड़ कम हो रहे हैं और इमारतें बढ़ती जा रही हैं, इसी कारण हवा साफ नहीं रह पाती। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रदूषण हमारी अपनी आदतों और लापरवाही के कारण बढ़ रहा है। तो अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार करें तो प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: हाँ, और हमारी ही गतिविधियों की वजह से ये हो रहा है, और आमतौर पर लोगों को इसका एहसास कम ही होता है, क्योंकि हम विकास और आधुनिक आधुनिक जो जीवन शैली है उसकी होड़ में इतने लगे हुए हैं ना, कि हमें इस बात का एहसास कम ही हो पाता है। तो ये तो हो गए इसके कारण, और अब थोड़ा विस्तार से मैं पूछना चाहूंगी कि अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण से कुछ खास बीमारियां जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं?
0: देखिए, वायु प्रदूषण से अस्थमा, सांस की बीमारी, खांसी, फेफड़ों की परेशानी और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारे नुकसान है। देखिए, आजकल छोटे बच्चों में भी एलर्जी और सांस की परेशानी देखी जा रही है। सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं, जल प्रदूषण आप देखिए, जल प्रदूषण से पीने का पानी खराब हो जाता है, इससे पेट की बीमारी, उल्टी, दस्त और कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं। पानी गंदा होने से मछलियां और दूसरे जल जीव भी प्रभावित होते हैं। आज हम देख रहे हैं मिट्टी प्रदूषित हो रही है हमारी, तो मिट्टी प्रदूषण से हमारी खेती पर बुरा असर पड़ता है। जब मिट्टी में प्लास्टिक, केमिकल और गंदगी मिलती है तो फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है, इससे भोजन भी प्रभावित होता है। उसी से जुड़ा हुआ देखिए अब ध्वनि प्रदूषण भी है।
1: हाँ,
0: तो प्रदूषण के कई एक दायरे हैं। आप देखिए, जब ध्वनि प्रदूषण की कितना नुकसानदायक है, तेज आवाज, गाड़ियों का हॉर्न और लाउडस्पीकर से मानसिक तनाव, सिर दर्द और नींद की समस्या हो सकती है। तो प्रदूषण से हर तरह की समस्या है। मौसम का संतुलन भी बिगड़ रहा है, गर्मी बढ़ती है, बारिश का समय बदलता है और प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल
0: इसलिए
1: सही बताया
0: प्रदूषण
1: आपने।
0: को केवल जी
1: तो जैसे ध्वनि प्रदूषण की आप बात कर रही हैं, तो इससे तो हम बहुत प्रभावित हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप देखें, कोई भी आयोजन होता है तो उसमें बहुत तेज संगीत का बजना या जो गाड़ियों से जो आवाजें आती रहती हैं, तो इससे किन खास लोगों को दिक्कत हो सकती है, ये आप बताएं।
0: देखिए, जो ध्वनि प्रदूषण है उससे हर व्यक्ति प्रभावित है। हम देखेंगे छोटे बच्चे और जो हमारे बुजुर्ग हैं घर के,
1: बिल्कुल
0: और उसके अलावा जो हमारे इर्द गिर्द पालतू जानवर हैं जो सड़कों पे घूमते रहते हैं। आप देखिए कि जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो किस तरीके से वो परेशान होने लगते हैं। हम देखते हैं कि हमारे घरों में बुजुर्ग लोग हैं जिनको दिल से बीमारी जुड़ी हुई है, उनकी मानसिक बीमारी से वो जूझ रहे हैं और ध्वनि प्रदूषण से उनके स्वास्थ्य पे काफी प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल, और इस समस्या को हम कैसे कम कर सकते हैं? यूं तो इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे कौन कौन से ऐसे कदम हैं जिसको उठाते हुए हम इससे थोड़ा बहुत निपट सकते हैं?
0: देखिए निधि जी, इस समस्या को कम करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। प्रदूषण को रोकने के लिए हम सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। हमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और जो पेड़ पहले से हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ वातावरण को साफ रखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। वाहनों का कम इस्तेमाल करना चाहिए, जहां संभव हो पैदल चलना चाहिए, साइकिल का इस्तेमाल करना

0: बिल्कुल, तो जैसा आपने बताया कि बच्चों को भी शिक्षित करना बहुत जरूरी है, तो घर पर ही हम बच्चों को छोटे छोटे कौन सी बातें जो है वो सिखा सकते हैं जिससे वो इस मामले में शिक्षित हो सकें, क्योंकि बचपन से ही जो आदतें जो बन जाती हैं वो उम्र भर रह जाती हैं। तो
1: बिल्कुल
0: परिवार में जो इसकी शिक्षा होनी चाहिए उसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: देखिए, हम अपने बच्चों को छोटी बड़ी चीजें घर में सिखा सकते हैं, जैसा आपने बताया, उन्हें सूखा कचरा, गीले कचरे का जो पूरा एक रहता है मामला, उसे बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाना चाहिए। प्रदूषण किस तरह से उनकी जीवन शैली में बदलाव ला सकता है
0: बिल्कुल
1: और एक गलत तरीके से उनके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, उसके बारे में उन्हें अवगत कराना बहुत जरूरी है। पेड़ लगाना कितना जरूरी है, उनके साथ मिलके आप शाम में अपने बागीचे में कुछ आप पेड़ लगा सकते हैं। जिस दिन पर्यावरण दिवस हो उस दिन उनको लेके आप जाके सामाजिक कार्यों में जोड़ सकते हैं। इससे बच्चों में एक जागरूकता भी आती है और वे एक स्वस्थ जो एक सोसाइटी होती है उसका वो निर्माण कर सकते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: तो
1: जी
0: शमायला जी, जो आपने बात बताई कि बच्चों को इसमें किस तरह से शामिल किया जाए, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। शमायला जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त देकर हमारी श्रोता बहनों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मिची जी।
2: तो बहनों, अभी आपने सुना बढ़ता प्रदूषण विषय पर ये भेंट वार्ता, और आज की हमारी भेंट वार्ताकार थी शुमाइला तहजीब, जो एक शोध कार्य से जुड़ी हुई है, और इनसे बातें कर रही थी हम सबकी रेडियो सखी निधि वर्मा। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो निधि, कहाँ चलने का इरादा है?
3: बस फिर से मनोरंजन की दुनिया में।
2: हाँ, तो चलो चलते हैं बहनों के साथ, इस मौसम का आनंद लेते हैं।

0: तो लता, सच हमें भी लगता है कि हम भी पंछी होते और नील गगन में उड़ते रहते हैं ना।
1: बिल्कुल, तुमने मेरी मन की बात कह दी कि अगर पंछी बनकर के आसमान में उड़ने का मौका मिल जाए ना
0: बिल्कुल।
1: निधि, तो फिर क्या बात है जीवन की
0: वैसे
1: रंगीन।
0: लता, बचपन में हम सब ने कभी ना कभी ये बात जरूर भगवान से
1: हाँ,
0: मांगी होगी कि
1: कि
0: भाई,
1: काश हम भी एक चिड़िया
0: हाँ,
1: होते।
0: उड़ने का जो मन करता है ना, वो सभी को किया होगा कभी ना कभी बचपन में।
1: बिल्कुल,
0: तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई लता
1: हाँ बिल्कुल
0: इस गीत
1: बिल्कुल।
0: को सुनकर। और अभी
1: और
0: बचपन की ही बातें करेंगे कि बचपन में कौन सी अच्छी आदतें हमें डालनी चाहिए बच्चों को, उनके जीवन में क्या शिक्षा देनी चाहिए।
1: क्योंकि जिस तरह से इस तरह के गीत सुनकर के हमारे अंदर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, तो वैसे हमारी जो जीवन जो अभी चल रही है, उस जीवन में भी ऊर्जा की बचत जो है वो भी जरूरी है। क्योंकि अगर ऊर्जा होगा तभी तो हम संरक्षित रह पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो बहनों,
0: और
1: आज हमने बहुत सारी बातें की प्रकृति संतुलन की और बढ़ते प्रदूषण की, तो अब हम बातें करेंगे कि ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं। जो निधि ने बताया कि हम बचपन से अगर ये आदतें डालें ना, तो शायद हम आने वाली जो पीढ़ी है उसे कुछ सिखा समझा पाए।
0: हाँ, क्योंकि ऊर्जा तो हम हर चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं,
1: हाँ
0: चाहे हम बिजली की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी उपकरण है, पंखा, टीवी वगैरह, जो भी
1: हाँ
0: हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो अनावश्यक रूप से इन उपकरणों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और ये
1: हाँ
0: आदत अपने बच्चों में भी डालें कि अगर कमरे में अगर कोई ना हो तो वहाँ पंखा ना चलाएं, बल्ब ना चलाएं, या और भी कुछ गैजेट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसे बंद कर दें। इससे ऊर्जा की बचत होगी।
1: आ बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, और फिर थोड़ी थोड़ी बचत से ही हम बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बहनों बहनों, अक्सर होता है क्या कि हम कमरे से जब निकलते हैं तो बिजली को यूं ही चलता छोड़ देते हैं, और बच्चे भी यही सीखते हैं हमें देखकर। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कमरे से बाहर निकले, उस समय लाइट, पंखा, टीवी और अन्य उपकरणों को बंद करना ना भूले, और बच्चों को भी ये आदत डाले।
0: और लता, जो हम वाहन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हम ऊर्जा की ही बात
1: बात
0: करें,
1: करें। हाँ
0: क्योंकि अगर थोड़ी दूरी पे हमें कहीं जाना हो तो आप पैदल जा सकते हैं या साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो
1: बिल्कुल
0: इसके लिए आपको कार, स्कूटर, इन सब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है।
1: हाँ
0: तो ज़रूरी ये है कि आप इन बातों पर पहले ध्यान दें और जागरूक बने, तभी हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और बहनों, आजकल बहुत तरह के बल्ब आ गए हैं, लेकिन हमें एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या है कि 70 से 80% तक की जो बिजली खर्च होती है वो हम बचा सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि दिन में हम जो हमारी खिड़कियां हैं, पर्दे हैं, उन सबको खोल कर रखें, ताकि सूर्य की रोशनी भी घर में प्रवेश हो सके, और इसी से हमारी जो बिजली की भी बचत हो जाए। बातें तो बहुत सारी हैं बहनों, लेकिन स्टूडियो की घड़ी ने इशारा किया है कि समय हो चला है आपसे विदा
0: बिल्कुल।
1: लेने का।
0: तो हम चलते चलते बता दें बहनों कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। तो अभी

0: के लिए दे विदा अपने सखियों निधि और
1: लता को।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

श्रोतो, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी निधि और लता के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत। मेहरबा हो के बुला लो मुझे जिस दम चाहो, कि मैं कोई गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। रितेश का प्यार भरा नमस्कार।

होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई।

आप सुन रहे थे फिल्म कुर्बानी में आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

फिल्म शागिर्द में आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म शोर से, संगीतकार है लक्ष्मीकांत पेरीलाल, गीतकार इंद्रजीत सिंह और स्वर दिया है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों ने।

0: वाकई जल ही जीवन है, पानी बिन सब सुन। लेते एक छोटा सा अल्प विराम, फिर हाजिर होते हैं।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

साथियों, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। रितेश आपसे विदा चाहता है। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर के 1 बजने वाले हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रवीन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्ण सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर 78,417 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: end this news bulletin.
1: श्रोता बंधु, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:10 हुए हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जनजातीय कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला आज से भुवनेश्वर में। झारखंड समेत देश भर के 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जनजातीय अनुसंधान को मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे ईडी कार्यालय। वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्तीय लेन देन को लेकर शुरू ही पूछताछ। राज्य में SIR अभियान के पहले 7 दिनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे प्रपत्र। CEO ने सभी दलों से त्रुटि रहित मतदाता सूची से मांगा सहयोग। JPSC बैकलॉग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। और कैप्टन कूल MS धोनी के 45वें जन्मदिन पर रांची में धोनी के घर के बाहर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ थाला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम इसका उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला में झारखंड समेत देश भर के प्रतिनिधि और शोधकर्ता भी हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: शराब घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। जांच एजेंसी उनसे वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्त विभाग की भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल ईडी ने उनके पुत्र रोहित उरांव से भी लंबी पूछताछ की थी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के शुरुआती 7 दिनों में 1,05,00,000 से अधिक मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से BLA2 की भागीदारी सुनिश्चित करने और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने में सहयोग की अपील की है। रांची के बेड़ों में आयोजित राजीव गांधी प्रतिभा सम्मान समारोह में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 254 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान 429 विद्यार्थियों के बीच साइकिल और आम के पौधे बांटे गए। मंत्री ने युवाओं से मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सहयोग की अपील की। रांची में स्वयंसेवी संस्था नीड्स और XISS के सहयोग से 5 दिवसीय बांस इकोसिस्टम कार्यशाला जारी है। ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के तहत यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार 7 जिलों की 5,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़कर क्राफ्ट सिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। नीड्स के कार्यकारी निदेशक मुरारी एम चौधरी ने बांस को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया।
4: ये ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के तहत यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के तहत ये प्रोजेक्ट 1 साल पहले लॉन्च किया गया। ये 5 दिन का हम लोग कॉन्क्लेव कर ले। हमारा पूरा प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम एक इकोसिस्टम स्टेट में क्रिएट करें बैम्बू का और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनकर आए। हमारा इस योजना में 5,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़ने प्रोग्राम है 7 जिलों में।
2: रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कराधान पर 4 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। इसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आयोजित इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को कराधान, व्यावसायिक कौशल और प्रबंधन सिद्धांतों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में राजस्थान के सीकर से गिरफ्तार भाजपा नेता नीरज सिंह को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर जमशेदपुर ला रही है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस के सहयोग से हुई इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम के आज देर शाम तक आरोपी को लेकर शहर पहुंचने की संभावना है। इस बीच भाजपा नेता नीरज सिंह की गिरफ्तारी पर विधायक सरयू राय ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जाँच करने का आग्रह किया है।
0: जो भी आरोपी है अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है तो इसके बारे में हम ये सवाल नहीं उठा सकते हैं कि इनको गिरफ्तार किया इनको नहीं गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया तो इनके ऊपर आरोप क्या है? आपका जो FIR है उसमें कोई आरोप स्पष्ट नहीं है। उनके ऊपर आरोप है जिसके कारण से उनको नामजद किया गया है, धाराएं लगाई गई।
2: झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आज सुबह के कारोबारी क्षेत्र में घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में लगभग 0.4% की तेजी देखी गई, जिससे सेंसेक्स 307 अंक चढ़कर 78,592 पर और निफ्टी 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी संताल परगना के अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी अगले दो दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
5: में जो पूरा संथाल का इलाका मतलब साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह यहाँ तक में आपको भारी बारिश कुछ जगहों पे देखने को मिल सकती है। तभी सिस्टम के प्रभाव में अगले दो दिन तक लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 8 तारीख से हल्की से बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। भारी बारिश की आशंका थोड़ी सी कम है।
2: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर सुबह से ही उनके रांची स्थित सिमलिया आवास के बाहर प्रशंसकों की भारी भीड़ है। देश विदेश से फैंस सोशल मीडिया के जरिए भी धोनी को बधाइयां दे रहे हैं। रांची जिला क्रिकेट संघ में वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद सचिव शैलेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष सौमित्र पटनायक के अधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में शंभू शरण सिन्हा को कार्यवाहक सचिव बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनजातीय कार्य मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला आज से भुवनेश्वर में। झारखंड समेत देश भर के 200 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जनजातीय अनुसंधान को मजबूत करने पर होगी चर्चा। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पहुंचे ईडी कार्यालय। वर्ष 2020 की शराब नीति और वित्तीय लेन देन को लेकर शुरू हुई पूछताछ। राज्य में SIR अभियान के पहले 7 दिनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे प्रपत्र। CEO ने सभी दलों से त्रुटि रहित मतदाता सूची में मांगा सहयोग। JPSC बैकलॉग मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश और

श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:20 हुए, आइए सुनते हैं कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार है गिरिजा देवी।

एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-09-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

श्रोतो, आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:45 हुए हैं। सुगम संगीत में आप सुनेंगे गुलाम अली, मेहंदी हसन और जगजीत सिंह के गाए गजल। पहली गजल गुलाम अली।

श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत में गुलाम अली, मेहंदी हसन और जगजीत सिंह के गाए चंद गजल। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी की रांची केंद्र से। दिन के 2 बजने वाले हैं हमारे दिल्ली केंद्र से। मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंटांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया

0: में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
4: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा।

0: जनता के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। समय अनुसार रात 9:30 से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: श्रोता बंधु, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 2:30 हुए हैं। पेश है जय भारती। हमारे देश के वीर जवानों, वीर सैनिकों को नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: श्रोतो आप सुन रहे थे जय भारतीय कार्यक्रम, यही संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 2:55 होने वाले हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग

0: नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मतदाता इनुमरेशन फॉर्म और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कर उन्हें स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म में वर्तमान की सही जानकारी दर्ज करें तथा पुराने रिकॉर्ड की मैपिंग पूर्व SIR सूची के अनुसार ही करें। साथ ही सभी जिलों को 14 जुलाई को BLO और BLA2 की बैठक के साथ चुनाव पाठशाला आयोजित कर पुनरीक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी उनके पुत्र से भी पूछताछ कर चुकी है और दोनों के बयानों का दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों से मिलान किया जा रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में इस मामले की जांच के दौरान ईडी ने रामेश्वर उरांव के आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब मामले के विभिन्न पहलुओं से जांच जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया का होमवर्क चालू कर दिया गया है।
2: मेडिकल कॉलेज दे दीजिए, आप क्या दिक्कत है यहाँ पर? हम आपको 3 से 4 महीने में हम चालू ही कर देंगे। फैकल्टी अभी से हमारा चालू हो गया। होमवर्क बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, फैकल्टी लाना पड़ता है, चलाने वाले के प्रोसेस होता है। अभी से हम प्रिंसिपल खोज रहे हैं, डायरेक्टर खोज रहे हैं, डॉक्टर्स खोज रहे हैं, मैन पावर हम बहाली करने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि 3 से 4 महीने में या जनवरी तक हम बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम करा देंगे।
1: देवघर जिले का प्रसिद्ध आम्रपाली आम अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना रहा है। देवघर से विशेष पैकेजिंग के साथ भेजे गए 1000 किलो आम्रपाली आम की पहली खेप दुबई पहुंच गई है। यह आम अब दुबई के प्रसिद्ध लुलू रिटेल स्टोर के काउंटरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। उपायुक्त देवघर सौरभ कुमार घुमानिया ने बताया कि इस पहल से देवघर के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और जिले की अलग पहचान बनेगी। देवघर नगर निगम की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन तीनों परियोजनाओं की प्रगति की 15 दिनों के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी। मॉनसून, राज्य में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी संथाल परगना के अलावा रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: श्रोतो, आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
0: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
2: जी ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
2: जी
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
2: श्रोताओं इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
2: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते,

0: लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी।
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं और

0: तो और आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: attention, please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention, please. Air India announces
1: the... Papa, Kaira ka ye hawaii adda kitna shandar hai.
2: Haan, beta.
1: Dada ji to kahin dikhai nahi de rahe.
2: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है।
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिली। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादली।
4: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ, आओ चलो।

0: और सुनाओ कादिर,
1: तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
2: अब तो पूरा होने वाला है।
3: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
2: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
1: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
3: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं। कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
2: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
2: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो, नील नदी है ना।
1: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हूँ, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
2: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर।

0: वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
1: अरे कादर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
0: नहीं अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा मैं चलता हूँ।
1: अच्छा अच्छा।

0: बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाए।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा, अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: देखा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड है। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन

0: ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
0: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
0: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
2: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
2: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
0: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
2: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
0: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
2: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
0: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
2: तो फिर चलिए।
0: हाँ तो आओ, चलो आओ, खाते रहो आओ।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते।
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही, तो बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल वो औरतें सर पर क्या रखकर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है,

0: पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछ कर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?

0: कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
2: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
0: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
0: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
2: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
0: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
2: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
2: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजित थे NCERT। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 3:30 हुए हैं, रांची मेलोडीज में बहुत बहुत स्वागत। रितेश का नमस्कार।

0: शो तो आप सुन रहे थे रांची मेलोडीज। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम के 4 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। देवघर नगर निगम की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कर उन्हें स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म में वर्तमान की सही जानकारी दर्ज करें और पुराने रिकॉर्ड्स की मैपिंग

0: पूर्व एसआईआर सूची के अनुसार ही करें। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। रांची के सिमलिया स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक जुटे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: धन्यवाद पूनम जी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से 4:02 हुए हैं। क्रीड़ा जगत कार्यक्रम रिपोर्ट और प्रस्तुति स्वर है विश्वजीत पात्र, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की है।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत पात्र और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष खेल कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। कार्यक्रम की शुरुआत में आपका स्वागत। आज के अंक में खेल जगत की कई बड़ी और चर्चित खबरें लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों की और जानेंगे किन टीमों ने क्वार्टर फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। इसके बाद नजर डालेंगे भारत और आयरलैंड के बीच हाल ही में संपन्न T20 श्रृंखला पर। फिर चर्चा होगी ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। साथ ही बात करेंगे सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक की, जिन्होंने अपने शानदार खेल और अद्भुत उपलब्धियों से विश्व टेनिस में अमित पहचान बनाई है। और अंत में खेल खबरों में रुख करेंगे झारखंड की राजधानी रांची का, जहां प्रतिष्ठित डूरंड कप के रोमांचक मुकाबलों की मेजबानी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। फीफा विश्व कप 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का उत्सव है। इस बार का विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े दिग्गजों के साथ साथ छोटी और उभरती हुई टीमों ने भी ऐसा प्रदर्शन किया है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। विश्व कप के शुरुआती मुकाबलों से लेकर नॉकआउट चरण तक हर दिन नए रोमांच, नए रिकॉर्ड और नए नायकों की कहानियां सामने आती रही है। जहां एक और अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, स्पेन और इंग्लैंड जैसी पारंपरिक शक्तियां अपनी दावेदारी मजबूत करती नजर आई, वहीं दूसरी ओर कुछ अपेक्षाकृत छोटी टीमों ने भी अपने जुझारूपन और साहस से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस विश्व कप की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि अब फुटबॉल का स्तर केवल कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित नहीं रह गया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई टीमों ने दिखा दिया कि मेहनत, रणनीति और आत्मविश्वास के दम पर कोई भी टीम किसी भी बड़ी शक्ति को चुनौती दे सकती है। फीफा विश्व कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक चरण यानी राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर चुका है। ग्रुप चरण और शुरुआती नॉकआउट मुकाबलों के बाद अब केवल वही टीमें बची हैं जिन्होंने दबाव, चुनौती और कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित किया। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों में दुनिया की पारंपरिक फुटबॉल शक्तियों के साथ साथ कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। सबसे पहले बात अर्जेंटीना की। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने अपने अनुभव और आक्रामक खेल के दम पर एक बार फिर खिताब की दावेदारी मजबूत की है। टीम के खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण मौकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब उनकी नजर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने पर है। फ्रांस की टीम भी शानदार लय में दिखाई दे रही है। तेज गति, बेहतरीन आक्रमण और मजबूत मिडफील्ड के साथ फ्रांस ने अपने विरोधियों पर लगातार दबाव बनाया है। किलियन एम्बापे जैसे खिलाड़ी टीम के लिए सबसे बड़े हथियार साबित हो रहे हैं। ब्राजील की टीम हमेशा की तरह आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तकनीकी कौशल, रचनात्मक फुटबॉल और आक्रमण सोच के साथ ब्राजील हर मुकाबले में खिताब के प्रमुख दावेदारों में नजर आ रहा है। स्पेन और पुर्तगाल जैसी यूरोपीय टीम भी शानदार फुटबॉल खेल रही है। स्पेन का पासिंग गेम और पुर्तगाल की आक्रमण रणनीति उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों को लेकर फुटबॉल जगत में खास उत्साह है। इंग्लैंड की टीम भी इस बार संतुलित और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रही है। युवा खिलाड़ियों और अनुभवी सितारों का मिश्रण उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। पैराग्वे ने भी अपने प्रदर्शन से सब कुछ चौंका दिया। कई विशेषज्ञों ने जिस टीम को ज्यादा महत्व नहीं दिया था, वही टीम राउंड ऑफ 16 तक पहुंच चुकी है। नॉर्वे ने अपने तेज और आक्रमण फुटबॉल से फुटबॉल प्रेमियों का दिल जीता है। युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और टीम की सामूहिक ऊर्जा उन्हें खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, कोलंबिया, बेल्जियम, मिस्र और इजिप्ट जैसी टीम भी राउंड ऑफ 16 में पहुंचकर यह साबित कर चुकी है कि विश्व फुटबॉल का स्तर पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धा हो चुका है। इस चरण का हर मुकाबला करो या मरो की स्थिति लेकर आता है। यहां एक छोटी सी गलती पूरे विश्व कप अभियान को समाप्त कर सकती है, जबकि एक शानदार प्रदर्शन किसी टीम को इतिहास के पन्नों में अमर बना सकता है। यही वजह है कि राउंड ऑफ 16 को विश्व कप का सबसे रोमांचक चरण माना जाता है।
अब हर पास, हर टैकल, हर बचाव और हर गोल करोड़ों प्रशंसकों की धड़कनों से जुड़ा हुआ है। आने वाले मुकाबलों में दुनिया की निगाहें अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड और स्पेन जैसे दिग्गज टीमों पर तो रहेगी ही, लेकिन फुटबॉल प्रेमी यह भी देखना चाहेंगे कि क्या उभरती हुई टीमें अपने सपनों की उड़ान को आगे बढ़ा पाती हैं या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि फीफा विश्व कप 2026 का ये नॉकआउट चरण फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार अध्यायों में से एक बनने जा रहा है। फीफा विश्व कप 2026 की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि इस बार केवल दिग्गज टीमों ने ही नहीं बल्कि अपेक्षाकृत छोटी आबादी और सीमित संसाधनों वाली देशों ने भी पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जिन टीमों को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था, वही टीमें बड़े बड़े फुटबॉल देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी। सबसे पहले बात मोरक्को की। अफ्रीकी फुटबॉल की इस ताकतवर टीम ने अनुशासित खेल, मजबूत रक्षापंक्ति और शानदार काउंटर अटैक के दम पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 32 में उन्होंने नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीम को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर और फिर राउंड ऑफ 16 में कनाडा को 3-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। यह साबित करता है कि मोरक्को अब किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने की क्षमता रखता है। इसके बाद बात केप वर्दे की। करीब 5 लाख की आबादी वाले इस छोटे से द्वीपीय देश ने अपने पहले ही विश्व कप में इतिहास रच दिया। ग्रुप चरण में उसने स्पेन और उरुग्वे जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और नॉकआउट तक पहुंच गया। राउंड ऑफ 32 में उसने अर्जेंटीना जैसे विश्व चैंपियन टीम को अतिरिक्त समय तक कड़ी टक्कर दी और 3-2 से बेहद करीबी मुकाबले में हार कर भी पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। पैराग्वे ने इस विश्व कप का सबसे बड़ा उलटफेर किया। 4 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर उसने पूरे फुटबॉल जगत को चौंका दिया। भले ही राउंड ऑफ 16 में फ्रांस के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने जुझारू प्रदर्शन से यह संदेश दे दिया है कि अब फुटबॉल में कोई भी मुकाबला एक तरफा नहीं माना जा सकता। नॉर्वे ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया। आइवरी कोस्टा जैसी मजबूत टीम को हराकर नॉर्वे ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। तेज गति, आक्रमण फुटबॉल और युवा खिलाड़ियों की आत्मविश्वास ने इस टीम को विश्व कप की सबसे रोमांचक टीमों में शामिल कर दिया। इन टीमों ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक फुटबॉल में केवल इतिहास, रैंकिंग या स्टार खिलाड़ी ही जीत की गारंटी नहीं होते। सही रणनीति, अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास पर कोई भी टीम दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ताकतों को चुनौती दे सकती है। यही कारण है कि फीफा विश्व कप 2026 को छोटे देशों के बड़े सपनों और शानदार प्रदर्शन के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। अब बात उन खिलाड़ियों की जिनके प्रदर्शन ने इस विश्व कप को और भी यादगार बना दिया है। सबसे पहले बात अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की। 39 वर्ष की उम्र में भी मेसी जिस तरह मैदान पर खेल रहे हैं, उसे देखकर दुनिया एक बार फिर उनकी प्रतिभा को सलाम कर रही है। अनुभव, सटीक पास, बेहतरीन विजन और गोल करने की अद्भुत क्षमता के दम पर मेसी लगातार अर्जेंटीना के लिए मैच जिताओ प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मेसी का जादू बरकरार है। मेसी ने अब तक 7 गोल किए हैं। अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक 3 गोल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 गोल और राउंड ऑफ 32 में कैपे वर्डे के खिलाफ उन्होंने गोल दागकर अपनी टीम को मुश्किल मुकाबले से बाहर निकाला और ये साबित कर दिया कि बड़े खिलाड़ी बड़े मंच पर ही अपनी असली पहचान बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रांस के सुपरस्टार केलियन एम्पापे भी शानदार लय में हैं।

अपनी रफ्तार, तकनीक और बेहतरीन फिनिशिंग के दम पर एम्बापे लगातार विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। फ्रांस के कप्तान एम्बापे इस विश्व कप में अब तक 7 गोल कर चुके हैं और मेसी के साथ गोल्डन बूट की दौड़ में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। एम्बापे ने नाइजीरिया, कोस्टारिका और स्वीडन के खिलाफ 2-2 गोल और राउंड ऑफ 16 में पैराग्वे के खिलाफ निर्णायक पेनाल्टी गोल दागकर अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया। और अब बात इस विश्व कप के सबसे बड़े अपसेट की। फीफा विश्व कप 2026 में यदि अब तक के सबसे बड़े उलटफेर की बात की जाए तो वो है 4 बार के विश्व चैंपियन जर्मनी का टूर्नामेंट से बाहर हो जाना। जिस टीम को खिताब के प्रमुख दावेदारों में गिना जा रहा था, वही टीम राउंड ऑफ 32 में पैराग्वे के हाथों पेनाल्टी शूटआउट में हार कर विश्व कप से बाहर हो गई। जर्मनी ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी। ग्रुप चरण के पहले मैच में उसने कुरासाओ को 7-1 से हराकर अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। आइवरी कोस्ट के खिलाफ टीम अपेक्षित स्तर का खेल नहीं दिखा सकी और फिर इक्वाडोर से हार ने उनकी कमजोरियों को उजागर कर दिया। हालांकि जर्मनी ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहा, लेकिन उसकी लय टूट चुकी थी। राउंड ऑफ 32 में जर्मनी का सामना पैराग्वे से हुआ। कागजों पर जर्मनी मजबूत था, लेकिन मैदान पे पैराग्वे ने अनुशासित डिफेंस, शानदार रणनीति और जबरदस्त जुझारूपन का प्रदर्शन किया। निर्धारित समय और अतिरिक्त समय के बाद मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। इसके बाद फैसला पेनाल्टी शूटआउट में हुआ, जहां पैराग्वे ने 4-3 से जीत दर्ज कर विश्व फुटबॉल को चौंका दिया। हार के बाद जर्मनी के कप्तान जोशुआ किमिख ने भी स्वीकारा कि टीम पूरे टूर्नामेंट में अपने स्तर का प्रदर्शन नहीं कर सकी और इस प्रदर्शन के आधार पर उनका बाहर होना निराशाजनक जरूर है, लेकिन हैरान करने वाला नहीं। ये लगातार 3रा विश्व कप है जिसमें जर्मनी अपेक्षा से बहुत पहले बाहर हो गया। 2018 और 2022 में ग्रुप चरण से बाहर होने के बाद इस बार 48 टीमों की प्रतियोगिता में भी वो पहले नॉकआउट मुकाबले से आगे नहीं बढ़ सका। इससे साफ है कि जर्मनी फुटबॉल को अब केवल खिलाड़ियों में नहीं बल्कि रणनीति, मानसिक मजबूती और टीम निर्णय में भी बड़े बदलाव की जरूरत है। अब बात करते हैं उस T20 सीरीज की जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। विश्व चैंपियन भारत को आयरलैंड ने लगातार 2 मुकाबलों में हराकर ना सिर्फ सीरीज अपने नाम की बल्कि यह भी साबित कर दिया कि आधुनिक क्रिकेट में कोई भी टीम छोटी नहीं होती। जिस भारतीय टीम ने हाल ही के वर्षों में विश्व क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाया, वही टीम आयरलैंड के खिलाफ संघर्ष करती नजर आई। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उतरी टीम इंडिया से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मैदान पर कहानी कुछ और ही लिखी गई। आइए शुरुआत करते हैं पहले T20 मुकाबलों से। पहले मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। आयरलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाया। निर्धारित 20 ओवर्स में आयरलैंड ने 9 विकेट गंवाकर 182 रन बनाए। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण पारियां खेली और अंतिम ओवर्स में तेज रन बटोरकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। शुरुआती विकेट जल्द गिरने से दबाव बढ़ता गया। मध्यक्रम भी बड़ी साझेदारी बनाने में असफल रहा। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पूरी भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। इस प्रकार आयरलैंड ने मुकाबला 34 रनों से जीत लिया। मैच के हीरो रहे आयरलैंड के गेंदबाज, जिन्होंने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अब बात करते हैं दूसरे और निर्णायक T20 मुकाबले की। पहला मैच जीतकर आयरलैंड आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दूसरी ओर भारतीय टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरी थी। आयरलैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 154 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने पहले मुकाबले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और विपक्षी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। 155 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के लिए मुश्किल नहीं माना जा रहा था, लेकिन आयरलैंड के गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत तो संभल कर की, लेकिन बीच के ओवर्स में रन गति धीमी पड़ गई। मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंचा। भारत को जीत के लिए कुछ ही रनों की जरूरत थी, लेकिन दबाव के क्षण में बल्लेबाज चूक गए। भारतीय टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 153 रन ही बना सकी और आयरलैंड ने मुकाबला मात्र 1 रन से जीत लिया।
दूसरे मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने जय मुंद्रा, जिन्होंने दबाव की परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीरीज में आयरलैंड के खिलाड़ियों ने सामूहिक प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में आयरलैंड भारत से बेहतर नजर आया। यही कारण रहा कि आयरलैंड ने सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। अब सवाल उठता है कि आखिर विश्व चैंपियन भारत को हार का सामना क्यों करना पड़ा। सबसे पहला कारण था बल्लेबाजी की अस्थिरता। भारतीय बल्लेबाजी बड़ी साझेदारियां बनाने में असफल रहे। शीर्ष क्रम से लेकर मध्य क्रम तक कोई भी बल्लेबाज लगातार जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। दूसरा कारण था दबाव की स्थिति में गलत निर्णय। दोनों मैचों में ऐसे मौके आए जब भारत मैच पर पकड़ बना सकता था, लेकिन खिलाड़ियों ने जल्दबाजी में विकेट गंवा दिए। तीसरा कारण था डेथ ओवर्स में प्रदर्शन। पहले मैच में भारतीय गेंदबाज अंतिम ओवर्स में रन रोकने में विफल रहे, वहीं दूसरे मैच में बल्लेबाज लक्ष्य का पीछा करते समय आखिरी ओवर्स संयम नहीं दिखा सके। अब बात कप्तानी की। श्रेयस अय्यर के लिए यह सीरीज एक बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने कई अच्छे निर्णय लिए, लेकिन मैदान पर उन निर्णयों को खिलाड़ी परिणाम में नहीं बदल सके। कप्तानी में आक्रामकता और रणनीति दोनों दिखाई दी, लेकिन टीम का निष्पादन कमजोर रहा। श्रेयस अय्यर को इस सीरीज से काफी सीख मिलेगी, खास करके दबाव वाले क्षण में गेंदबाजों के उपयोग और बल्लेबाजी क्रम के प्रबंधन को लेकर। सूर्य कुमार की अनुपस्थिति में भारतीय टीम को महसूस हुई। सूर्य कुमार केवल बल्लेबाजी नहीं बल्कि मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी है। मध्य क्रम में उनकी कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कठिन परिस्थितियों में तेजी से रन बनाने और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता टीम को नहीं मिल सकी। दूसरी ओर आयरलैंड ने यह साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सफलता केवल एक बड़े नाम से नहीं बल्कि बेहतरीन योजना, अनुशासन और टीम वर्क से मिलती है। इस सीरीज ने भारतीय टीम प्रबंधन को यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगामी बड़े टूर्नामेंट से पहले बल्लेबाजी, संयोजन, फिनिशिंग क्षमता और डेथ बोलिंग पर विशेष काम करने की आवश्यकता होगी। अगर इस सीरीज का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष देखें तो आयरलैंड क्रिकेट का उभरता हुआ आत्मविश्वास है। पिछले कुछ वर्षों में आयरलैंड ने लगातार अपनी क्षमता दिखाई है और भारत जैसी मजबूत टीम को 2-0 से हराकर क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जिस दिन आप विपक्षी टीम को हल्के में लेते हैं, उस दिन परिणाम आपके खिलाफ जा सकता है। आयरलैंड ने जज्बा दिखाया, अनुशासन दिखाया और मौके का पूरा फायदा उठाया। वहीं भारत अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सका। विश्व चैंपियन होने का तमगा सम्मान दिला सकता है, लेकिन मैदान पर जीत हमेशा वर्तमान प्रदर्शन से तय होती है और इस सीरीज में आयरलैंड का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा। महिला T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत एक बार फिर कायम हो गई। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए ICC महिला T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। कप्तान नेट साइवर व्रट ने नाबाद 58 रन और प्रिया कैंप ने नाबाद 44 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर्स में सटीक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 151 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से ही आक्रमण अंदाज अपनाया। अनुभवी बल्लेबाज वेथ मुनी ने 49 गेंदों पर शानदार 64 रन बनाए, जबकि फीबी लिचफील्ड ने 35 गेंदों पर 48 रन की तेज तरार पारी खेली। दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में कर दिया। अंत में एलिस पेरी ने विजयी रन बनाते हुए टीम को 17.1 ओवर्स में ही जीत दिला दी। वेथ मुनी को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 और 2026 में महिला T20 विश्व कप जीतकर अपने रिकॉर्ड को और मजबूत
मजबूत कर दिया। यह खिताब सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि महिला T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को निरंतर श्रेष्ठता, अनुशासन और टीम वर्क का प्रमाण है। भारत का प्रदर्शन इस विश्व कप में उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। टीम के पास अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का अच्छा संतुलन था, लेकिन निर्णायक मौकों पर निरंतरता की कमी साफ दिखाई दी। भारत लीग चरण में ही बाहर हो गया और सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका। आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 रन बनाने के बावजूद भारतीय

मैचों में अच्छी शुरुआत की लेकिन डेथ ओवर्स में रन रोकने में सफलता नहीं मिली। कैच छोड़ना और दबाव की क्षण में गलत गेंदबाजी योजनाएं भी टीम पर भारी पड़ी। भारत की सबसे बड़ी समस्या रही निरंतरता। कमजोर टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन हुआ लेकिन जब मुकाबला विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया से हुआ तब भारत अपने सर्वश्रेष्ठ खेल को दोहरा नहीं पाया। यही कारण रहा कि टीम लीग चरण से आगे नहीं बढ़ सकी। टूर्नामेंट के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी स्वीकारा कि टीम को अपनी रणनीति और प्रदर्शन पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि इस विश्व कप में भारतीय टीम के लिए कुछ सकारात्मक संकेत भी था। युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से भविष्य की उम्मीदें जगाई। यदि बल्लेबाजी में निरंतरता, डेथ बॉलिंग और फील्डिंग में सुधार किया जाए तो यही टीम आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट खिताब जीतने की प्रबल दावेदार बन सकती है। अब बात करते हैं टेनिस की। टेनिस की दुनिया में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। सर्बिया के महान खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के पुरुष एकल मुकाबलों में अपनी 106वीं जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही उन्होंने स्विट्जरलैंड के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर के 105 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए विंबलडन में सबसे अधिक पुरुष एकल मैच जीतने वाले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल कर लिया है। विंबलडन 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 से हराकर न केवल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई बल्कि अपनी करियर का ये स्वर्णिम कीर्तिमान भी स्थापित किया। 7 बार के विंबलडन चैंपियन जोकोविच ने दबाव के क्षण में अपने अनुभव और जुझारूपन का शानदार प्रदर्शन किया। 39 वर्ष की उम्र में भी जोकोविच का फिटनेस स्तर, मानसिक दृढ़ता और जीत की भूख दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। उनके नाम पहले ही रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब दर्ज है और अब विंबलडन में सबसे ज्यादा पुरुष एकल जीत का नया रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है। खेल खबरों में अब बात झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची अब भारतीय फुटबॉल के इतिहास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। पहली बार एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की मेजबानी रांची का बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम करेगा। यह केवल एक खेल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि झारखंड के खेल इतिहास के लिए गर्व और सम्मान का अवसर है। डूरंड कप का 135वां संस्करण 25 जुलाई से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। इस बार टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा लेगी और मुकाबले देश के 5 शहरों में खेले जाएंगे। इनमें पहली बार रांची को भी मेजबान शहर बनाया गया है। यह निर्णय झारखंड में फुटबॉल के बढ़ते प्रभाव और यहां उपलब्ध विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं का प्रमाण है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में लीग चरण के मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक खेले जाएंगे। इसके साथ ही एक क्वार्टर फाइनल मुकाबले की भी मेजबानी यही स्टेडियम करेगा। लगभग 40,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है। रांची में खेले जाने वाले ग्रुप सी के मुकाबलों में जमशेदपुर एफसी, श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली और इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम आमने सामने होगी। जमशेदपुर एफसी अपना पहला मुकाबला 26 जुलाई को डिफेंडर्स एफसी के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 4 अगस्त को स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली और 13 अगस्त को इंडियन एयरफोर्स के विरुद्ध मैदान में उतरेगी। डूरंड कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि भारतीय फुटबॉल की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। वर्ष 1888 में शुरू हुई इस प्रतियोगिता ने भारतीय फुटबॉल को अनेक महान खिलाड़ी और यादगार मुकाबले दिए हैं। आज भी देश के शीर्ष क्लब एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी को जीतने का सपना देखते हैं। रांची को मेजबानी मिलने से स्थानीय खिलाड़ियों को देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को का खेल देखने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलेगा। इससे झारखंड में फुटबॉल संस्कृति को नई गति मिलेगी और युवा खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही पर्यटन, स्थानीय व्यापार और खेल अवसंरचनाएं को भी इसका लाभ मिलेगा। दरअसल झारखंड में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि जन भावनाओं से जुड़ा जुनून है। सिमडेगा, खूंटी, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और
रांची जैसे जिलों में फुटबॉल की गहरी जड़ें हैं। गांव में आयोजित होने वाले स्थानीय टूर्नामेंट्स में हजारों दर्शक जुटते हैं और बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी इस खेल को करियर के रूप में अपना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डूरेंट कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी से झारखंड के खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिलेगी।

स्थानीय प्रतिभाओं को देश के शीर्ष क्लबों और खिलाड़ियों को करीब से देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होगा, साथ ही राज्य में फुटबॉल के विकास को भी नई गति मिलेगी। दोस्तों, इसी के साथ क्रीड़ा जगत में आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रभु शरण। अब मुझे यानी विश्वजीत पात्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

कार्यक्रम क्रीड़ा जगत अभी आप सुन रहे थे। रिपोर्ट संकलन और प्रस्तुति स्वर विश्वजीत पात्रा का, प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण का। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 होने वाले हैं। ये वक्त है आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम।

कार्यक्रम युववाणी सुनिए 5:02 से। श्रमिक लोक इस कार्यक्रम का वक्त होगा 5:30 का। प्रादेशिक मुख्य समाचार एक बार पुनः सुनेंगे शाम 6:00। किसान वाणी इस कार्यक्रम का वक्त होगा 6:02 का।

हमारी दुनिया इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 6:32 से। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 7:00 का। आदिवासी अखड़ा इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 7:15 से। आज आप ये कार्यक्रम सुनेंगे खड़िया भाषा में। पर आप सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता। आज आप सुनेंगे रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया। वार्ताकार हैं अर्पिता रॉय, कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे 8:00 से। जानिए क्या है सुर्खियों में 8:30 पर। का वक्त होगा समाचार संध्या का हमारे दिल्ली केंद्र से। न्यूज @9 9:00 और उर्दू में समाचार 9:15 से।

मनी टॉक, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 से मंथन। इस कार्यक्रम का वक्त होगा 9:45 का। गुंजे झारखंड, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपके साथ सीमा तिवारी। अब लग रहा ये मौसम बरसात का मौसम, ज्यादा कुछ नहीं तेरी याद का मौसम। इससे ज्यादा क्या समझे कुछ भी हम, हमसे तेरी ये कह रहा मुलाकात का मौसम।

माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया। कुछ याद आया आपको? आज है 7 जुलाई, और 7 जुलाई को हमारे माही का जन्मदिन भी है, और आज वर्ल्ड चॉकलेट डे भी है। तो खा लीजिए, बीच बीच में कुछ मीठा होते रहना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपने गौर किया है, वक्त गुजरने के साथ साथ बचपन काफी पीछे छूटा हुआ मकान सा लगता है। कहना मुश्किल है बचपन के दिन अच्छे थे या आज के। वैसे उम्र के किसी भी पड़ाव पर खड़े हो जाइए, गुजरा वक्त यूं ही आपके सामने आता रहेगा।

न जाने कौन सी मंजिल पे आ पहुंचा है प्यार अपना, न हमको एतबार अपना, न उनको एतबार अपना।

मिट मिट के मोहब्बत में तेरी तुझको पुकारे जाते हैं, कट कट के दरिया की तह में जिस तरह किनारे जाते हैं।

देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। शफक धनक महताब कटाएं, तारे नगमे बिजली फूल, उस दामन में क्या क्या कुछ है, वो दामन हाथ में आए तो।

0: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम अभी आप सुन रहे थे सीमा तिवारी के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। रांची से कुड़ू भेजी जा रही अवैध शराब और शराब बनाने वाली अन्य सामग्री के साथ 2 टेम्पो चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद लोहरदगा जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ श्रद्धा क्रिकेटा का नेतृत्व में गठित पुलिस की छापामारी टीम ने यह कार्रवाई की। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। और देवघर नगर निगम की नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की कड़ी में 5:02 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम युववाणी का। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं निश्चल और नीरल।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारे इस युववाणी कार्यक्रम का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त निश्चय,
1: और मैं हूं नीरल।
0: हम दोनों की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: निश्चय, दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी अगर हम सब सकारात्मक सोचना शुरू कर दें। सोचिए ना, ना किसी से जलन, ना बेवजह गुस्सा, ना मन में कोई दुश्मनी, बस अपने काम पर ध्यान और अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छी सोच। कितना सुकून भरा माहौल होगा ना।
0: बिल्कुल नीरल, तुम्हारी बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी भरी और कंपटीशन वाली जिंदगी में यह सब इतना आसान कहाँ है। हर किसी पर किसी ना किसी तरह का दबाव है। कोई नौकरी को लेकर परेशान है, कोई पढ़ाई को और कोई करियर को लेकर। ऊपर से ऑफिस पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया की तुलना और फ्यूचर को लेकर टेंशन। ऐसे में हमेशा पॉजिटिव रहना कैसे संभव है?
1: आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। अक्सर लोग सोचते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है कि जिंदगी में आने वाली समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सकारात्मक सोच का मतलब है परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम उनका सामना सही नजरिए से करें।
0: मतलब अगर कोई समस्या आ जाए तो उससे घबराने के बजाय उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करना।
1: बिल्कुल। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के परीक्षा में कम नंबर आ गए, अगर वो केवल निराश होकर बैठ जाए और खुद को दूसरों से कम समझने लगे तो इससे स्थिति और भी खराब होगी। लेकिन अगर वो सोचे कि इस बार कहाँ कमी रह गई और अगली बार उसे कैसे बेहतर करना है, तो यही पॉजिटिव सोच कहलाती है।
0: दरअसल कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी दोस्त को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी के ज़्यादा नंबर आ गए, किसी की ज़िंदगी हमें बेहतर दिखाई देने लगती है, फिर मन में ईर्ष्या और निराशा पैदा होने लगती है।
1: और यही सबसे बड़ी गलती है। हर व्यक्ति का सफ़र अलग होता है। किसी की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय अगर हम उससे प्रेरणा लें तो हमारा भी विकास होगा। याद रखिए, तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है।
0: वाह, ये बात तो नोट करने वाली है। सकारात्मक सोच तनाव को कम करने में भी मदद करती है। जब हम हर समय नकारात्मक बातें सोचते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। वहीं पॉजिटिव सोच हमें शांत और सेल्फ कॉन्फिडेंट और ऊर्जावान बनाए रखने में बहुत मदद करती है।
1: और इसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से की जा सकती है, जैसे हर सुबह किसी अच्छी बात के लिए आभार व्यक्त करना, अपनी उपलब्धियों को याद करना, नेगेटिव लोगों और बातों से दूरी बनाना और दूसरों की सक्सेस पर खुश होना।
0: दोस्तों, आज की बातचीत से यह समझ आता है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया हमारे हाथ में जरूर होता है।
1: बिल्कुल निश्चय, कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आती हैं।
0: बिल्कुल, आजकल लोग जल्दी सक्सेस चाहते हैं। हर कोई सोचता है कि कोई बड़ा मौका मिल जाए और लाइफ बदल जाए। ऐसे में छोटी छोटी आदतों की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम ही जाता है।
1: यही तो बात है, हम अक्सर बड़ी उपलब्धियों की बात करते हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के पीछे रोज की छोटी छोटी आदतें ही काम करती हैं। जैसे समय पर उठना, अपने काम को टालना नहीं, दूसरों का सम्मान करना, या फिर दिन में कुछ मिनट पढ़ने की आदत।
0: बिल्कुल, जैसे अगर कोई व्यक्ति डेली सिर्फ 10 मिनट किताबें पढ़ता है तो शायद एक दिन में कोई बड़ा अंतर ना नजर आए, लेकिन एक साल बाद उसके ज्ञान और सोच में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है।
1: और यही बात स्वास्थ्य पर भी लागू होती है।

0: रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, पर्याप्त पानी पीना और समय पर सोना। ये सुनने में बहुत सामान्य बातें लगती हैं, लेकिन इनका असर उतना ही बड़ा होता है।
1: एक और अच्छी आदत है धन्यवाद कहना। कई बार हम अपने मम्मी पापा, फ्रेंड्स, टीचर्स या कलीग्स के प्रयासों को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जब हम किसी को दिल से धन्यवाद देते हैं तो रिश्तों में भी अपनेपन और सम्मान बढ़ता है।
0: और एक आदत जो आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गई है, वो है मोबाइल का लिमिटेड यूज़। अगर उसी समय को कुछ नया सीखने या फैमिली के साथ बिताने में लगा सकते हैं तो कितना अच्छा होगा।
1: यह बात युवाओं के लिए खास तौर पर इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि सबसे कीमती संसाधन है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा समय सही दिशा में लगाएंगे तो भविष्य अपने आप ही बेहतर बन सकता है।
0: और दोस्तों, अच्छी आदतों की सबसे खास बात पता है क्या होती है? इन्हें हैबिट में लाने के लिए किसी विशेष अवसर का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप आज, अभी और इसी पल से शुरुआत कर सकते हैं।
1: याद रखिए दोस्तों, सक्सेस अचानक नहीं मिलती। यह रोज किसी किए गए काम या छोटे छोटे प्रयासों और अच्छी आदतों का रिजल्ट होता है। दोस्तों, अब आगे की चर्चा पर बढ़ने से पहले आइए हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि 7 जुलाई के दिन भारत और दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपनी अलग पहचान बनाई।
1: बिल्कुल, इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होती बल्कि उन कहानियों का संग्रह होता है जिन्होंने दुनिया को बदलने में अहम भूमिका निभाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया की कुछ खास घटनाओं से।
0: दोस्तों, पहली घटना साल 1985 की है। इसी दिन जर्मनी के युवा टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर ने सिर्फ 17 साल की उम्र में विंबलडन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। वे आज भी विंबलडन जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी माने जाते हैं।
1: वाह, ये बात है कि अगर मेहनत और आत्मविश्वास हो तो उम्र कभी भी सफलता का रास्ता में रुकावट नहीं बनती।
0: दूसरी घटना साल 1981 की है दोस्तों। इसी दिन सैंड्रा डे ओ'कॉनर को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में पहली न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह महिला की भागीदारी और सामान्य अवसर की दिशा में एक साहसिक कदम था।
1: सही कहा, ऐसे फैसले समाज में नई सोच और नई उम्मीद लेकर आते हैं।
0: दोस्तों, तीसरी रोचक घटना साल 1928 की है। इसी दिन दुनिया में पहली बार स्लाइस ब्रेड यानी कि पहले से कटी हुई ब्रेड बाजार में बेची गई। आज यह आम बात लगती है लेकिन उस समय यह एक बड़ा और सुविधाजनक आविष्कार माना गया।
1: सच है, कई बार छोटी सी खोज भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना देती है। अब बात करते हैं भारत की। 7 जुलाई 1896 को भारत में पहली बार चलचित्र का सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ मुंबई के वॉटसन होटल में। फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स द्वारा बनाई गई छोटी छोटी फिल्में दिखाई गई। इसी घटना को भारत के सिनेमा की शुरुआत माना जाता है।
0: दोस्तों, अब बारी है हमारे कार्यक्रम के सबसे मजेदार और हैरान कर देने वाले सेगमेंट की। आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे।
1: निश्चय, क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस के कुल 9 दिमाग होते हैं?
0: जी हाँ, एक मुख्य दिमाग उसके सिर में होता है जबकि बाकी 8 दिमाग जैसी तंत्रिका गांठें उसकी 8 भुजाओं में होती है। इसलिए उसकी हर भुजा अपने आप भी कई काम कर सकती है, जैसे किसी चीज को पकड़ना या महसूस करना। यही वजह है कि ऑक्टोपस को धरती के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक गिना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट पर कि इंसान की आवाज अंतरिक्ष में नहीं लेकिन धरती के अंदर बहुत दूर तक जा सकती है। आमतौर पर हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में आवाज नहीं जाती
1: लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि धरती के अंदर ठोस चट्टानों के माध्यम से कंपन हवा की तुलना में कहीं ज्यादा दूर तक पहुंच सकते हैं। यही सिद्धांत भूकंप मापने वाले उपकरणों और भूमिगत अध्ययन में काम आता है। अब बात करते हैं अगले फैक्ट की। जरा कल्पना कीजिए, अगर बारिश की बूंदों की जगह कांच बरसे तो?
0: सुनने में फिल्म जैसा जरूर लगता है लेकिन HD 189733b नाम के एक ग्रह पर तेज हवाओं के साथ सिलिकेट के कण यानी कांच जैसे कण बरसते हैं। वहां हवाओं की रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये कण बेहद खतरनाक बन जाते हैं। अब अगले फैक्ट की ओर नीरल, क्या कोई ऐसा जीव है जो उम्र बढ़ने से भी मरता नहीं है?
1: जी हाँ, टोरेटोप्सिस डॉर्नी नाम की एक छोटी सी जेलीफिश खतरा महसूस होने पर फिर से अपने बचपन की अवस्था में लौट सकती है। इस वजह से इसे इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है। हालांकि यह बीमारी या किसी शिकारी से मर सकती है लेकिन प्राकृतिक बुढ़ापे से नहीं।
0: अब एक ऐसा

0: तो चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं कुछ ताज़ा करंट अफेयर्स की तरफ। दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स है कि ADB ने भारत के चेन्नई में पानी की सप्लाई और साफ सफाई की व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए $230 मिलियन के लोन की मंजूरी दी है।
1: राष्ट्रीय महिला

0: आयोग NCW ने महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-9-0 शुरू किया है। यह एक खास प्लेटफॉर्म है जो मुश्किल में फंसी महिलाओं को तुरंत मदद, शिकायत दर्ज करने की सुविधा देती है।
1: दोस्तों, तीसरा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण की शुरुआत की और जोधपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन की उद्घाटन किया।
0: ब्राजील के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया।
1: दोस्तों, भारत कोची में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स वुमेन वर्किंग ग्रुप मीटिंग 6-7 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाएगा।
0: नीता अंबानी को AAPI अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन मानवतावादी पुरस्कार प्राप्त हुआ।
1: दोस्तों, कहते हैं ना, हर दिन एक नई शुरुआत है। इसका मतलब सिर्फ नया सूरज निकलना नहीं है, बल्कि हर सुबह हमें एक नया मौका देती है, कल जो नहीं कर पाए उसे आज बेहतर करने का, जो गलती हो गई उसे सीख कर आगे बढ़ने का, और जो सपना अभी अधूरा है उसकी ओर एक और कदम बढ़ाने का।
0: जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा एक ही दिन में नहीं आते, लेकिन रोज किए गए छोटे छोटे अच्छे प्रयास समय के साथ एक बड़ी सफलता की कहानी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी एक दिन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि शायद वही दिन आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन जाए।
1: तो दोस्तों, आज का दिन मुस्कुराइए और मुस्कुरा कर पूरा कीजिए, और कल का स्वागत पूरे उत्साह और नए हौसले के साथ कीजिए।
0: तो दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी थी, लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो अपने दोस्त नीरल
1: और अपने दोस्त निश्चय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी निश्चय और नीरल के साथ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम श्रमिक लोक का।

0: नमस्कार जुहार। रिमझिम बारिश की फुहारें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, ठंडी हवाओं का सुहावना एहसास और शाम के ठीक 5:30, प्रकृति जैसे अपने मधुर संगीत से पूरे वातावरण को नई ताजगी और नई उम्मीदों से भर रही है। और इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम श्रमिक लोक, जहां हम हर शाम हम सलाम करते हैं उन हाथों को जिनकी मेहनत से देश आगे बढ़ता है। मैं हूं आज के कार्यक्रम की हमसफर सुषमा,
1: और हमारे सभी मेहनतकश साथियों को रंजना का भी प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसे वर्षा की हर बूंद सूखी धरती में नई जान भर देती है, वैसे ही आपका श्रम भारत के विकास में नई ऊर्जा का संचार करता है। इसीलिए कहा भी गया है, प्रकृति की वर्षा धरती को समृद्ध बनाती है और श्रमिक का परिश्रम राष्ट्र को
0: समृद्ध बनाता है। यानी बारिश की हर बूंद धरती को जीवन देती है और श्रमिक के पसीने की हर बूंद देश को भविष्य देती है। इसलिए पेड़ लगाना केवल प्रकृति की सेवा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा है। आज हम बात करेंगे उस अनमोल धरोहर की जो हमारी सांसों, हमारी खेती, हमारे जल और हमारे

0: भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा है और वो अनमोल धरोहर है हमारी वन यानी जंगल।
1: साथियों, जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि जीवन का आधार है। यही वन हमें शुद्ध हवा, शुद्ध जल, औषधियाँ और रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करते हैं। जब जंगल सुरक्षित रहते हैं तब नदियाँ जीवित रहती हैं, है ना? वर्षा संतुलित होती है और धरती हरी भरी बनी रहती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जिसने एक पेड़ लगाया उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए नई उम्मीदें बोई।
0: बिल्कुल। और श्रमिक साथियों, देश के विकास में आपका योगदान अमूल्य है। जिस तरह आप अपने परिवार के भविष्य के लिए मेहनत करते हैं ना, उसी तरह प्रकृति की रक्षा भी हमारी साझा जिम्मेदारी है। काम के साथ साथ यदि हम हर वर्ष कम से कम एक पौधा, एक पेड़ लगाएं, उसकी देखभाल करें, पेड़ों की अनावश्यक कटाई रोकें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, तो यह छोटा सा प्रयास आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए साथियों कि वन बचेंगे तो जल बचेगा, जल बचेगा तो कल बचेगा, है ना रंजना?
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है तुमने अभी सुषमा। साथियों, प्रकृति हमें हर दिन यह सिखाती है कि धैर्य, परिश्रम और निरंतरता से ही जीवन में नई सुबह आती है। प्रकृति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह वृक्ष बिना किसी भेदभाव के छाया और फल देते हैं, शुद्ध हवा और पर्यावरण को संतुलित रखने में सहायक होते हैं, उसी तरह हम भी अपने कर्म, सहयोग और सकारात्मक सोच से अपने परिवार, समाज और देश को समृद्ध और खुशहाल बनाने में अपनी हम जिम्मेदारी निभा सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये सभी बातें तभी संभव है जब देश का हर नागरिक यह संकल्प ले कि हम प्रकृति के प्रहरी बनेंगे, पेड़ लगाएंगे, जंगलों की रक्षा करेंगे और अपने बच्चों को भी पर्यावरण संरक्षण का संस्कार देंगे, क्योंकि सुरक्षित वन ही सुरक्षित जीवन और समृद्ध भारत की सबसे मजबूत नींव है।
1: ठीक उसी तरह साक्षरता सुख खुशहाल परिवार का आधार है। श्रमिक साथियों, मेहनत हमारी पहचान है, लेकिन जब मेहनत के साथ शिक्षा जुड़ जाती है तो सफलता के नए रास्ते खुल जाते हैं। एक पढ़ा लिखा श्रमिक अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से समझता है,
0: बिल्कुल,
1: सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाता है, नई तकनीक सीखता है और अपने परिवार का भविष्य अधिक सुरक्षित बनाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और किसी ने सच ही कहा है, शिक्षा वह दीपक है जो व्यक्ति ही नहीं पूरे परिवार का जीवन रोशन कर देता है। यदि एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो एक परिवार जागरूक होता है और जब परिवार जागरूक होता है तभी समाज आगे बढ़ता है। साथियों, आज समय बदल रहा है। बैंकिंग हो, डिजिटल भुगतान हो, सरकारी योजनाओं की जानकारी हो या बच्चों की पढ़ाई, हर क्षेत्र में साक्षरता की आवश्यकता बढ़ गई है, है ना?
1: हाँ, इसीलिए साथियों, यदि किसी कारणवश पढ़ाई का अवसर छूट गया हो तो आज से शुरुआत कीजिए और अभी से। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अपने बच्चों, बेटा हो या बेटी, दोनों को समान अवसर देकर शिक्षा से जोड़िए। यही सबसे बड़ा निवेश है जो आने वाली पीढ़ियों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देगा।
0: बिल्कुल सही कहा रंजना आपने, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए साथियों स्वयं भी सीखिए, अपने परिवार को भी शिक्षित कीजिए। इतना ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को भी साक्षरता के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि साक्षर श्रमिक ही आत्मविश्वासी श्रमिक होता है और आत्मविश्वासी श्रमिक ही खुशहाल परिवार तथा सशक्त राष्ट्र की नींव बनाता है।
1: और सुषमा, फिलहाल हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। अच्छा। और अपने श्रमिक साथियों को सुनवाते हैं मेहनत, उम्मीद और सपनों की उड़ान का सुंदर संदेश से भरा प्यारा सा यह गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रमिक लोग। और श्रमिक साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर और सुनते हैं भेंट वार्ता। साथियों, कहते हैं कौशल वह पूंजी है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और उद्यमशीलता वह साहस है जो सपनों को साकार कर देता है। बदलते समय में नए रोजगार सीखना और स्वरोजगार के अवसरों को अपनाना न केवल आत्मनिर्भरता की राह खोलता है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1: हाँ साथियों, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे विशिष्ट अतिथि कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक सह विभाग प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार दुबे जी से प्रेरक और उपयोगी जानकारी सुनते हैं, और उनसे बातचीत कर रहे हमारे रेडियो सहयोगी योगेश्वर राम।
2: आज हम मिलते हैं कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक सह विभाग प्रमुख डॉक्टर विनोद कुमार दुबे जी से। आज हम जानेंगे कौशल विकास एवं उद्यमशीलता के बारे में। आपको मेरा नमस्कार।
3: हाँ, नमस्कार।
2: कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, ये दो शब्द सामने आते हैं, इसका क्या तात्पर्य है?
3: कौशल विकास के द्वारा और उद्यमशीलता आपको समाज में एक सक्षम व्यक्ति के रूप में जो अपने रोजगार का सृजन कर पाए और अपने समाज और परिवार को एक अवलंबन दे पाए, और इस दिशा में हमारा निदेशालय झारखंड में कौशल विकास के जितने भी एवं उद्यमशीलता से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनका संचालन करता है, और जो संस्थाएं चल रही हैं झारखंड के अंतर्गत उन संस्थाओं का निरीक्षण करता है ताकि वो संस्थाएँ इफेक्टिव रूप से समाज को जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको सही दिशा दे पाए और उनको कौशल विकास के द्वारा उनके रोजगार के अवसर को प्रदान करें।
2: जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि समाज के किस वर्ग के लोग इस क्षेत्र से जुड़े।

0: पा रहे हैं और क्या लाभ उठा पा रहे हैं।
1: हमारे जो कौशल विकास के कार्यक्रम हैं, ये समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करता है और खास करके जो समाज के निचले तबके के जो छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से वो उनकी परिवार संघर्षरत हैं, उनके लिए विशेषकर हमारी जितनी भी कौशल विकास के कार्यक्रम हैं वो करीब करीब निःशुल्क हैं और ये इनको एक अच्छा अवसर प्रदान करता है अपने कौशल के विकास के द्वारा समाज में एक अपनी पहचान बनाने का, एक अपने रोजगार के अवसर को तलाशने का।
0: तो इससे जुड़ने के लिए लोगों को क्या प्रयास की जरूरत होती है और कहाँ लोग मिल सकते हैं?
1: हमारे जो कौशल विकास के कार्यक्रम हैं, इसकी जानकारी हम लोग समय समय पे विभिन्न माध्यमों से पब्लिश करते हैं और वेबसाइट पे सारी जानकारी, कौशल विकास से संबंधित जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश भर में, उनकी जानकारी भारत सरकार के द्वारा समय समय पे दी जाती है और हमारे वेबसाइट पे आप ज़्यादातर कार्यक्रम जो हैं इनमें दाखिला ऑनलाइन होता है।
0: तो ऑनलाइन करने की जो प्रक्रिया है, लोग कहाँ से कैसे करते हैं और फिर उसके बाद ऑनलाइन करने के बाद उन्हें क्या करना पड़ता है?
1: ऑनलाइन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, ये कौशल विकास मंत्रालय का वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे जाके पूरे भारतवर्ष में क्या क्या अवसर है, केवल झारखंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष की जानकारी उनको मिल जाएगी कि कौन कौन से संस्था चल रहे हैं, किस विषय में उसमें प्रशिक्षण हो रहा है और उस प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए क्या योग्यताएं हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर है, और सारी जानकारी उनको बहुत सुलभ है, वेबसाइट के माध्यम से बहुत ही सुलभ है।
0: जी, यदि इस वर्ष की बात करें 2025 की बातें, तो कब लोग जुड़ सकते हैं, कब ऑनलाइन कर सकते हैं?
1: ये अवसर प्रारंभ हो चुका है, हम लोगों का एक काफ़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है जिसमें हम लोग क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम इनको कहा जाता है, जो प्रशिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब प्रशिक्षक तैयार किए जाते हैं, जिस तरह से स्कूलों में बीएड करने के बाद उनकी एलिजिबिलिटी बनती है शिक्षक बनने की, इसी तरह से आईटीआई या किसी भी कौशल विकास के कार्यक्रम को जो भारतवर्ष में चल रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका सीआईटीएस कोर्स किया होना। तो वैसे बच्चे जो प्रशिक्षक बनना चाहते हैं या अपने जिन्होंने आईटीआई कर भी रखा है, आईटीआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है, अपने प्रशिक्षण को और भी गति देना चाहते हैं, एक धार देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अवसर है। इसमें उनके जो वर्तमान जो उनका प्रशिक्षण है उसमें वैल्यू एडिशन होगा
0: जी।
1: और इसकी एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, 8 मई से ही प्रारंभ है। इसमें इस बार से एक और भी विशेष सुविधा दी गई है, पहले जिनके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हुआ करता था, मतलब जो बच्चे पास हो चुके थे उन्हीं को अवसर मिलता था, इस बार जो बच्चे अपीयरिंग हैं अर्थात वो जून या जुलाई में अपना आईटीआई का एग्ज़ाम, डिप्लोमा का एग्ज़ाम या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके पास फाइनल मार्कशीट नहीं है, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये झारखंड में हम लोगों ने एक नए संस्था की स्थापना भी की है जो इस जुलाई माह से प्रारंभ होगा, इसमें कंप्यूटर से संबंधित जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं वो प्रारंभ होंगे। इसके लिए महिलाएं एलिजिबल हैं, जो महिलाएं जो बच्चियां प्रशिक्षक बनना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कंप्यूटर के फील्ड में। तो ये हमारे निमी के पोर्टल से, निमी हमारा एक संस्था है जो चेन्नई में अवस्थित है, तो एडमिशन का प्रक्रिया जो उनके द्वारा संपन्न होती है, तो ये www.nimmionlineadmission.in के द्वारा ये पूरी जानकारी उसमें ले सकते हैं या हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जो हमारा कार्यालय आईटीआई के अपोजिट साइड में कंबाइंड बिल्डिंग में है। हमारे कार्यालय का नाम है क्षेत्रीय कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय भारत सरकार, तो आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं और वेबसाइट से आप एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं जो मैंने बताया www.nimmionlineadmission.in। आप इस पे जाएंगे, सारे एडमिशन के संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें जो भी बच्चे कंप्यूटर से आईटीआई कर चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं या इंजीनियरिंग कर चुके हैं और वो प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। और

0: समय काफ़ी कम है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं।
1: मैं जानना चाहूँगा आपसे कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद कौशल विकास के लिए जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, तो उन्हें कौशल में पारंगत करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है और प्रशिक्षक की क्या भूमिका होती है इसमें?
0: हमारा जो कौशल विकास का जो कार्यक्रम है, ये आप इसको केवल थियोरेटिकल या सैद्धांतिक प्रशिक्षण नहीं कर सकते हैं। हमारा जो फोकस होता है ये व्यवहारिक ज्ञान पे होता है, जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, हमारा फोकस उस पर होता है। तो जब तक आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, खुद करके नहीं देखेंगे, तो केवल सैद्धांतिक बातें करने से आप समाज में, किसी भी संस्था में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल प्रशिक्षण, जो व्यवहारिक प्रशिक्षण है, वो दिया जाए और आप खुद करके देखें उसको। हमारा जो कैरिकुलम है ये 80% प्रैक्टिकल बेस्ड है, इसमें सैद्धांतिक 20% ही प्रशिक्षण दिया जाता है, 80% जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि बच्चे खुद करके वो देखें, ताकि तब दूसरे को प्रशिक्षण दे पाएंगे या फिर कहीं अच्छे जगह पे उनको रोजगार मिल पाएगा या स्वरोजगार कर पाएंगे, कुछ भी अपने स्वरोजगार के भी फील्ड में जाने पे या कहीं नौकरी भी करने पे। आपको जब तक अपने हाथ में हुनर नहीं होगा, जैसा हमारा स्लोगन भी है हमारे मंत्रालय का, कौशलम बलम, तो कौशल ही बल है। जब तक आपके हाथ में हुनर नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमारा मंत्रालय ये अवसर प्रदान करता है, और जो भी प्रतिभागी हैं, जो एस्पायरेंट हैं झारखंड प्रदेश के, पूरे देश भर के, वो इस प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इसका जो फी है बहुत ही कम है, जो SC ST बच्चे हैं, EWS वाले हैं, उनके लिए मात्र 25 रुपया है, जस्ट टोकन मनी है। जो जनरल और गवर्नमेंट एस्पायरेंट कैंडिडेट है, उनके लिए 100 रुपीज़ है एडमिशन फ़ी, और रजिस्ट्रेशन फी तो नील है।
1: जी सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस कार्यक्रम से जुड़ करके सीखने के बाद इसकी डिमांड या प्लेसमेंट की जो बातें हैं, क्या आप देख रहे हैं?
0: जी अभिजय, मैं आपको अपने संस्था के बच्चों के बारे में बताऊंगा। हमारा एक संस्था जमशेदपुर में, राष्ट्रीय NSTI जमशेदपुर के नाम से चल रहा है, और ये संस्था काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो इसके जो बच्चे हैं, अभी हम लोग केवल एक ही व्यवसाय में इसमें प्रशिक्षण दे रहे हैं, फिटर में
1: जी।
0: तो इसके जो बच्चे हैं, ये पूरे देश के जितने भी प्रतिष्ठित संस्था आप सोच सकते हैं, उन सबों में लिस्ट हैं। जैसे अभी पिछले वर्ष के जो बच्चे थे, वो DRDO में हैं, कोई इसरो में है, पब्लिक सेक्टर में तो बोकारो स्टील प्लांट जैसे पब्लिक सेक्टर में तो बच्चे काफ़ी मात्रा में हैं। अभी झारखंड सरकार द्वारा प्रशिक्षकों की बहाली की गई, जिसमें हमारे संस्था के करीब 32 से ज़्यादा ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 32 तो हमारी जानकारी में है, इसके अलावा और भी होंगे, तो भविष्य तो काफ़ी अच्छा है और ये बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं जो हमारे यहाँ से जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है। बशर्ते कि हमारे इंस्टीट्यूट अभी बहुत छोटा है, उसका हम लोग अभी और एक्सपेंशन की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ महिला NSTI की स्थापना की है रांची में, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वोमेन, जो NSTI जमशेदपुर का ही एक्सटेंशन है, और इसमें अभी हम लोग कंप्यूटर कर रहे हैं, और जो जमशेदपुर का है इसमें हम लोग फिटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आगे आने वाले वर्षों में हम लोगों का प्लान है कि इसमें और भी बहुत सारे जो रिलेवेंट कोर्सेज हैं, रोबोटिक्स वगैरह, ऑटोमेशन वगैरह, जो भी अभी नए परिवेश के अनुसार से जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, उसको फोकस करते हुए जो भी कोर्सेज अभी हैं उसको हम लोग नए सत्र से चालू करेंगे। इस सत्र से भी जो कोर्सेज हैं, इसका आप लोग लाभ उठाएं। ये हमारा जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम है, जो प्रशिक्षकों की जो ट्रेनिंग हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं जुलाई से, बहुत ही उपयोगी है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। जो झारखंड के बच्चे हैं, अभी ये सब कोर्सेज के लिए इनको कलकत्ता जाना पड़ता था, इलाहाबाद जाना पड़ता था, नियरेस्ट ये सारे संस्था थे पूरे झारखंड में महिला

0: महिलाओं के लिए कोई ऐसी अलग से व्यवस्था नहीं थी जिसमें ये प्रशिक्षक की ट्रेनिंग ले पाए, और इसके चलते बच्चों में काफ़ी समय से ये मांग थी कि झारखंड की बच्चियों को एक अवसर दिया जाए ताकि वो भी प्रशिक्षक बनने की दिशा में अपना कदम रख पाए। और ख़ास करके जो बच्चे यहाँ के रहने वाले हैं, झारखंड के बच्चे, इनके लिए थोड़ा सा दूर कठिन होता था कलकत्ता जाना, इलाहाबाद जाना, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है।
1: सर, भारत सरकार की सोच और प्रयास जो कौशल विकास के प्रति है, इसका लाभ आने वाले समय में क्या आप देख रहे हैं, क्या कुछ मिल पाएगा?
0: समाज में जो बेरोजगारी का आलम है और हमारे पास जो कहा जाता है कि हम सबसे बड़ी युवा शक्ति हैं विश्व के, तो इन युवाओं को जब तक आप एक सही दिशा नहीं देंगे तो ये युवा शक्ति आपके लिए रचनात्मक के बदले विध्वंसात्मक हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी।
2: उम्मीद है साथियों कि इस भेंट वार्ता के जरिए आपको नए कौशल सीखने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और उद्यम के नए अवसरों को अपनाने की प्रेरणा जरूर मिली होगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए डॉक्टर विनोद कुमार दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए साथियों, सीखा हुआ कौशल जीवन भर साथ देता है और उद्यमशील सोच सफलता के नए द्वार खोलती है।
3: और अब हम साथियों को एक और भी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दे देते हैं। सुषमा, साथियों, हम सभी अपने परिवार से तो बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे न रहने पर उनका क्या होगा?
2: लेकिन साथियों, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी चिंता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो महंगा बीमा नहीं ले सकते हैं।
3: हाँ साथियों, इस योजना के तहत किसी भी कारण से अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार जिनका नाम नॉमिनी होता है उनको 2,00,000 रुपए तक आर्थिक सहायता मिलती है। इसका सालाना प्रीमियम जो होता है ना, वो सिर्फ 436 रुपये होता है। यह प्रीमियम हर साल आपके बैंक खाते से सीधे कट जाता है, इसीलिए आपको बार बार किस्त जमा करने के लिए बैंक भी नहीं जाना पड़ता है। बस आपको अपने खाते में 436 रुपया का बैलेंस बनाए रखना होता है।
2: बिल्कुल सही बात, यह तो बहुत ही आसान और किफायती है। अगर आपने अभी तक यह बीमा नहीं करवाया है तो आज ही अपने बैंक शाखा या पास के बैंक मित्र से संपर्क करें। और साथियों, एक छोटा सा कदम आपके परिवार के को सुरक्षित भविष्य का आधार बन सकता है।
3: और चलते चलते एक प्यारा सा गीत सुना देते हैं अपने साथियों को, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना है, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: तो साथियों, इसी प्यारे गीत के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। तो अपनी दोस्त रंजना
1: और सुषमा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
2: दोस्तों, कार्यक्रम श्रमिक लोक अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की खड़ी मीठी बजने वाले हैं। ये वक्त है अब तक के मुख्य समाचार का।
0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज बोकारो में कहा कि बोकारो मेडिकल कॉलेज का संचालन जनवरी 2027 तक शुरू हो जाएगा। इसके लिए फैकल्टी भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार रिम्स 2 को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। रांची से कुड़ू भेजी जा रही अवैध शराब और शराब बनाने वाली अन्य सामग्री के साथ दो टेम्पो चालकों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद लोहरदगा जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ श्रद्धा करकेटा के नेतृत्व में गठित पुलिस की छापेमारी टीम ने यह कार्रवाई की। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दिशा निर्देश और सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव से कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी रांची कार्यालय में पूछताछ चल रही है। इससे पहले इसी मामले में कल ईडी ने उनके पुत्र से भी पूछताछ की। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने आज शहर के 3 महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट में चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और संवेदकों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:02 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम किसान वाणी का।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब किसान भाई बहन मन के कृषि जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णुकर
0: जोहार। ये कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो भाई ये आज के कार्यक्रम में हमरे का जानकारी करब सके बताए दो थे
1: एकदम।
0: सबसे पहले हमरे मौसम का जानकारी करब। आज की बात में झारखंड में मशरूम कर खेती कर बारे में जानकारी करब डॉक्टर अजीत कुमार झा से। कृषि विकास गीत सुनब बशीर अंसारी और संगीमन कर गावल। और नई उम्र की नई फसल में आज मधु पालन कर बारे में एगो किसान से बातचीत करब। किसान है संतर सिंह।
1: तो सबसे पहले और करीले मौसम कर हाल खबर से। तो आज कर मौसम विभाग वट से भेटाल सूचना कर मुताबिक आज कर तापमान ई तरी रह कर अनुमान लगाल गलक है। जेकर में झारखंड राज्य कर राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और रामगढ़ कर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और लोहरदगा कर अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और सिमडेगा कर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और गुमला कर अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहकर अनुमान लगाल गलक है।
0: तो वही तो रहे मौसम कर हाल। और मौसम कर तो एखन उतार चढ़ाव हुआ थे। कभी पानी आवा थे तो कभी मने कड़कड़ाए के रौद हो जाते
1: एकदम।
0: और कखन पानी आवी और कखन रौद हो जाए सकर मने ठेकान न थे। तो लेकिन एखन खेती कर जे है से बहुत अच्छा समय है यही बेरा।
1: और देखो एक ठो मतलब पहले जे हमरे खूब खेती करत रही और अंधवारी पटवन करत रही तो उसन अगर करब तो पानी कर जे एखन आज के अगर रौद कर दिलक एक सप्ताह भी तो खेत जे एखन डीपर करके लगाल गलक है वो नुकसान हो जाए।
0: और तो पानी कर के बचाए के रखे है न। और पानी के बचाए में तो एगो बहुत बढ़िया एगो सिंचाई का साधन है टपक सिंचाई
1: एकदम। हाँ काले की डिपरा है तो उकर में पटवन करे के लिए मुश्किल है तो उकर में अगर पाइप बिछल है तो उकर से रौरे कर मतलब कि कोड़न खुबन और पटा के लिए पानी भी कम और घास मने तो जन्म भी नहीं करी।
0: तो इकर से भी किसान भाई बहन मने टपक सिंचाई कर भी मने
1: फायदा उठाए
0: फायदा उठाए है। और अब हमारे आगे जानकारी करत ही झारखंड में मशरूम कर खेती कर बारे में। और इके बतावत हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार झा और इनकर से बतियात हैं मनोज कुमार।
1: तो चलो सुनीला।
2: किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाई आप लोग खेती बाड़ी करते हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि मशरूम की खेती करते हैं। तो आज हम जानेंगे झारखंड में मशरूम की खेती की संभावनाएं के बारे में और इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीत कुमार झा प्रधान वैज्ञानिक ICR प्लांडू। झा सर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
3: किसान भाइयों को जोहार नमस्कार।
2: सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि मशरूम क्या है एवं झारखंड में मशरूम की खेती की क्या संभावनाएं हैं।
3: जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि मशरूम एक खाने जो स्वादिष्ट प्रोटीन से भरा हुआ फफूंद है जो कि हम लोग जिसको कि हम लोग सालों भर किसान भाई जो है सो कल्टीवेट करते हैं रूम के अंदर इसकी खेती करते हैं। और जहां तक मशरूम की खेती की झारखंड में संभावनाएं की बात है तो मशरूम की खेती झारखंड में सालों भर बहुत आसानी से किया जा सकता है और इसकी खेती करना बहुत आसान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मशरूम जो है सो प्रोटीन से भरा हुआ है। मशरूम में बहुत अधिक मात्रा में कॉपर और जिंक होता है। तो जो हमारे ग्रामीण महिलाएं या जो बच्चे कुपोषण के शिकार है गांव में तो उनको इससे बहुत अधिक लाभ हो सकता है। इसके अलावा जहां तक बात है कि मशरूम की खेती जो है सो जो जिसके उसके लिए जो हम सबस्ट्रेट माने

0: जो यूज करते हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं जिस पर उसका ग्रोथ होता है, वो धान का कुट्टी है। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड में धान की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो है धान की कुट्टी उपलब्ध है। किसान भाइयों को आसानी से धान की कुट्टी सस्ते में घर में जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूज करके, धान की कुट्टी जो लोग फेंक देते हैं ज़्यादातर, उसको यूज करके मशरूम की खेती कर सकते हैं। दूसरी बड़ी है कि जैसे झारखंड में छोटे छोटे किसान हैं और इनके पास ज़्यादातर किसानों के पास खेत नहीं है, तो इस स्थिति में जो है सो मशरूम की खेती के लिए कोई खेत की आवश्यकता नहीं है। वो छोटे से कमरे में, अगर वो कमरा जो है या तो खपड़ेल का हो, मिट्टी का हो, या कोई फूस का भी घर हो, तो छोटा सा स्पेस में या छोटा सा जगह में 15 से 20 फीट का जगह, 15 फीट लंबा 20 फीट चौड़ा, इस तरह का छोटे जगह में जो है सो बांस का, बैम्बू का भी पॉलीथीन से चारों तरफ घेर करके और ऊपर थोड़ा सा जो है सो पुआल वाल दे करके छोटे स्तर पर किसान भाई इसकी खेती जो है सो सालों भर कर सकते हैं। और महिलाएं जो खास करके बाहर नहीं जाते हैं, उनको बच्चे के लिए खाना बनाना, अपने पति का देखरेख करना या अपने हस्बैंड का घर में देखरेख करना है की समस्या रहता है, तो घर में ही जो एक्स्ट्रा समय है, सभी काम करते हुए जो समय बचता है किसान भाइयों को, तो उस समय किसान भाई जो है सो खास करके महिला किसान जो है घर में फुर्सत में इसकी खेती कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि कम खर्च में बहुत अधिक आमदनी मशरूम की खेती से मिल सकता है।
1: मशरूम कितने प्रकार के हैं और अलग अलग मौसम में कौन कौन से मशरूम की खेती सालों भर की जा सकती है?
0: जैसे मशरूम के प्रकार के विषय में पूछ रहे हैं, तो झारखंड में हम जैसा बताया यहाँ पर पूरे सालों भर जो है मौसम के हिसाब से अलग अलग मशरूम की खेती की जा सकती है। जैसे सबसे ज़्यादा जो है सो झारखंड में ओइस्टर मशरूम, जिसको कि ढिंगरी मशरूम कहते हैं, इसकी खेती की जाती है। और इसकी खेती के लिए जो तापमान है, जो बीच का तापमान 20 से 25 डिग्री का तापमान की आवश्यकता रहती है। और झारखंड में आप जानते हैं कि 7 से 8 महीना अगर हम बात करें तो करीब जून जुलाई से लेकर के और इधर अक्टूबर नवंबर तक जो है सो इस तरह का तापमान 6 से 7 महीना किसान भाइयों को मिलता है, और कमरे के अंदर इसकी खेती आसानी से ओइस्टर मशरूम कर सकते हैं। जहाँ तक है कि गर्मी, जब गर्मी रहता है जैसे मार्च से लेकर के मई जून तक, तो इस समय काफ़ी तापमान बहुत अधिक रहता है, तो इस समय हम लोग किसान भाइयों को मिल्की मशरूम की खेती करने के लिए सलाह देते हैं। और मिल्की मशरूम की खेती करना भी बहुत आसान है। आप देखेंगे कि जैसे तमिलनाडु जैसा स्टेट है जहाँ की ज़्यादातर समय जो है सो तापमान, गर्मी बहुत अधिक रहता है, तापमान अधिक रहता है, तो वहाँ पर मिल्की मशरूम की खेती लोग करते हैं। किसान भाइयों को भी हम सलाह देंगे, झारखंड में भी गर्मी के मौसम में मिल्की मशरूम की खेती करीब 25 से लेकर के 35-37 डिग्री तक के तापमान में कर सकते हैं। और ठंडा में आप देखेंगे कि जाड़े के मौसम में सभी किसान भाई जो हैं सो बटन मशरूम की खेती करते हैं, खास करके नवंबर से लेकर के फरवरी तक, क्योंकि इस बीच में जो है सो तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच कमरे का तापमान रहता है, और बटन मशरूम की खेती जो है सो इस तापमान में बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। और एक और मशरूम जो पैडी स्ट्रॉ मशरूम, जिसको पुआल मशरूम कहते हैं, जो आपका हमारे झारखंड के बगल का स्टेट है उड़ीसा, जहाँ की सबसे ज़्यादा किसान जो है पुआल मशरूम की खेती करते हैं, तो इस मशरूम की खेती भी जो है सो 25 से 35 डिग्री के तापमान पर कर सकते हैं। और ख़ास करके इसके लिए थोड़ा नमी, मॉइस्चर, जो ह्यूमिडिटी है रूम का, वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 90-95% से ऊपर होना चाहिए। तो ख़ास कर बरसात के मौसम में जो है सो किसान भाई पैडी स्ट्रॉ और पुआल मशरूम की भी खेती कर सकते हैं।
1: जितने सारे मशरूम के बारे में बताएं, इसमें सबसे अच्छा मशरूम कौन सा होता है जिससे ज़्यादा किसानों को फायदा मिलता हो?
0: सभी मशरूम अच्छा है। बटन मशरूम जैसे कि सभी लोग मतलब जानते हैं कि बटन मशरूम मार्केट में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उपलब्ध है, उसी तरह से मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम भी बहुत अच्छा है, और पुआल मशरूम भी खाने में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन किसान भाई किस मशरूम को आसानी से कर सकते हैं इसके विषय में सोचना है। तो बटन मशरूम की खेती, जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि बटन मशरूम का खेती हम सालों भर नहीं कर सकते हैं, केवल 2 या 3 महीना, चूँकि इसमें 15 से 20 डिग्री तापमान रहता है, इस 15 से 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए बटन मशरूम की खेती हम 2 महीना 3 महीना ही कर सकते हैं। उसी तरह मिल्की मशरूम गर्मी में कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है किसान भाई आसानी से ओइस्टर मशरूम का खेती कर सकते हैं, जो कि 6 से 7 महीना 20 से 25 डिग्री तक के तापमान की आवश्यकता होती है, और इसका खेती करना बहुत आसान है। इसके लिए जैसे हम लोग धान का कुट्टी, जैसा बात किए कि धान का कुट्टी 4 से 5 इंच छोटा कटवा के ले लेंगे, उसके बाद उसको हम लोग स्टेलाइज करते हैं। स्टेलाइजेशन में कहने का मतलब उसमें जो कीट हो या फफूंद हो उसको हटाने के लिए जो है सो हम लोग स्टेलाइजेशन प्रक्रिया करते हैं। तो उसमें 2 तरह से करते हैं, एक तो हम गर्म पानी में बॉयल करके भी मशरूम की को उसको पुआल को कुट्टी को स्टेलाइज कर सकते हैं, और दूसरा दवा देकर

0: भी कर सकते हैं, लेकिन दवा देके करना थोड़ा हानिकारक होता है। इसलिए हम किसान भाई को सलाह देंगे कि एक घंटा जो है सो गर्म पानी में, खोलते हुए पानी में मशरूम के वो कुट्टी जो है जिस पर आप मशरूम का बीज लगाएंगे, वो कुट्टी को एक घंटा अच्छा से बॉयल करके फिर उसको धूप में सुखा लेते हैं, और धूप में सुखा करके उसको बैगिंग, उसका बैगिंग करना की आवश्यकता होती है। बैगिंग जो है 4-5 लेयर में करते हैं, और बैग जो है करीब 3.5 से 4 केजी का हम लोग बैग बनाते हैं जिसमें कि 1 केजी ड्राई सबस्ट्रेट रहता है। तो इस तरह से वेस्टर्न मशरूम जो है आप उसकी खेती करेंगे, उसमें जब देखेंगे कि 15 से 20 दिन में उसमें माइसिलियल ग्रोथ हो जाएगा अच्छा से, 15 से 20 दिन में जब माइसिलियल ग्रोथ हो जाएगा उसके बाद उससे पिनहेड निकलना शुरू होता है, और पिनहेड निकलने के बाद आप जब पानी का स्प्रे करेंगे तो 4 से 5 दिन में मशरूम का फल निकलेगा। इस तरह से हम आप देखेंगे कि 2 महीना में करीब 3 से 4 बार हम लोग वेस्टर्न मशरूम जो है सो उसका खेती कर मतलब उससे पैदावार ले सकते हैं, और एक बैग से करीब 1 केजी जो है, 1 केजी अगर ड्राई सबस्ट्रेट है तो 1 केजी वेस्टर्न मशरूम का उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। इसलिए अगर आसान तरीका में कहे, आसानी से अगर खेती करना हो तो वेस्टर्न मशरूम की खेती हम लोग झारखंड में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर व्यवस्था हो, कुछ आप कंट्रोल कंडीशन में करना चाहेंगे, कुछ ज़्यादा खर्चा करेंगे, जो बड़े किसान हैं वो बटन मशरूम की खेती भी सालों भर खर्चा करके कंट्रोल कंडीशन में कर सकते हैं।
1: शुरुआत दौर में नए किसान अगर मशरूम का उत्पादन करना चाहिए या करना चाहते हैं तो पूंजी कितना लग जाएगा शुरुआत दौर में?
0: देखिए, जहाँ तक ओइस्टर मशरूम की खेती करेंगे तो ओइस्टर मशरूम की खेती करने में जैसे हम बताएं कि एक बैग अगर आप बनाते हैं तो एक बैग में 1 से 1.25 केजी ड्राई सबस्ट्रेट पैडी स्ट्रॉ जो धान की कुट्टी बताए वो लगता है, अगर वो तो किसान भाई के घर में ही उपलब्ध है। मान लीजिए कि अगर वो खरीद के भी लेते हैं तो करीब 6 से 7 रुपये केजी में झारखंड में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मशरूम का बीज, जिसको कि हम मशरूम स्पॉन कहते हैं, वो इसमें 10% के हिसाब से, कहने का मतलब कि 1 केजी कुट्टी है तो 100 ग्राम 125 ग्राम वो बीज की मात्रा इसमें लगता है। तो उसके लिए किसान भाई को 20 रुपया करीब एक बैग के लिए खर्च करना होगा। दूसरा है कि पॉलीथीन पीपी बैग आता है, पीपी बैग 2 से 3 रुपया में खर्च आएगा। उसी तरह से स्टेलाइजेशन के लिए अगर आप गर्म पानी विधि से करेंगे तो बहुत सस्ते में हो सकता है, या केमिकल विधि से करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 1 केजी मशरूम निकालने में, जो कि एक बैग से निकलता है, करीब 30 रुपया उस किसान का अगर लेबर कॉस्ट और सारा चीज जोड़ लेंगे तो 28 से 30 रुपया किसान का खर्चा आएगा, और 2 महीना में उससे 1 केजी मशरूम निकलेगा जो कि बाजार में 150 रुपये केजी के हिसाब से बिकता है। तो अगर होलसेल में भी किसान बेचेंगे उसको मार्केट में तो 100 रुपये के हिसाब से वो बिकेगा। इस तरह से 1 केजी मशरूम में 60 से 70 रुपया किसान को शुद्ध आमदनी प्राप्त
1: हो जाएगा। और प्रशिक्षण जरूरी है क्या इसके लिए?
0: शुरुआती दौर में जो है सो किसानों को थोड़ा सा ओइस्टर मशरूम के लिए या किसी भी मशरूम के लिए प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। अगर मशरूम का ट्रेनिंग नहीं करेंगे और बैग लगाएंगे तो उनको पता नहीं लगेगा कि कितना उसमें मॉइस्चर, नमी कितना कुट्टी में रहना चाहिए, बैगिंग कैसे करना चाहिए, फल को फल में पानी का स्प्रे कैसे देना है, उसके बाद जो है सो उसको कैसे तोड़ेंगे, फिर दूसरा हार्वेस्ट, दूसरा जो है सो फसल कैसे लेंगे, तीसरा फसल कैसे लेंगे। तो ये सब आइडिया के लिए 2 से 3 दिन का हमारे प्लांडू में जो है सो ट्रेनिंग हमेशा होते रहता है, अन्य संस्था में भी ट्रेनिंग होता है। तो किसी भी मशरूम के लिए किसान को ट्रेनिंग लेना की बहुत आवश्यकता है।
1: इसमें से कौन कौन सी बीमारी ऐसे होती हैं जिसे हम पहचान करके उसको अगर बचाया जा सकता बचा लें?
0: जैसा कि देखिए, मशरूम की जब आप खेती करते हैं तो मशरूम की खेती करते समय देखने में लगता है या सुनने में लगता है कि बहुत आसान है, और हम बताएं भी बहुत आसान है, लेकिन इसके साथ साथ मशरूम की खेती के समय किसान भाइयों को सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता है। जैसे कि जो रूम में आप उसको मशरूम को का बैग रख रहे हैं या जब आप मशरूम का बैग भर रहे हैं तो उस समय जो है उस जगह में किसी तरह का गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर इवन आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि मशरूम की खेती करते समय हाथ को या तो थोड़ा डिटोल से या किसी तरह हाथ को साफ करके, और जिस बर्तन में बीज को, खासकर मशरूम के बीज को आप निकालते हैं तो उसको पोंछ के उसके बाद निकाल के तब बैगिंग करना चाहिए और उसको अच्छी तरह रूम में रखना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप कुट्टी, जो धान का कुट्टी हम बताएं, उसमें नमी जो है 50% से ज़्यादा नहीं हो। इसके लिए किसान भाई को हम हमेशा सलाह देते हैं कि हाथ से उसको दाब करके आप पूरा निचोड़ के देखें सूखने के बाद कुट्टी को, कि उसमें एक भी बूंद पानी नहीं निकलना चाहिए, ये चीज़ देखना है। दूसरा, आप बाहर से कहीं आते हैं तो पैर को पोंछ करके उस रूम में जाना चाहिए। रूम में अगर पहले से कोई गंदगी हो तो उसको फॉर्मेलिन से साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए, नहीं तो उसमें जो बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी बीमारी आता है वो ग्रीन मोल्ड जो है, जो कि ओयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम और बटन

0: मशरूम सभी तरह के मशरूम आता है जो कि बाहर से, जो कि मिट्टी से, जो बाहर की मिट्टी है उससे किसान भाई उसी हाथ से उसको छूते हैं, तो जो कि ट्राइकोडर्मा से ही होता है ग्रीन मोल्ड, और ये काफ़ी मैंने नुकसानदायक है और इसका ज़्यादा प्रकोप होता है। उसी तरह अगर नमी रहेगा और वातावरण में गर्मी रहेगा तो आप देखेंगे कि उसमें इंकी कैप मशरूम जैसा है, एक छोटा सा मशरूम सफ़ेद जैसा निकलेगा, अब बाद में वो पूरा बैग को जो है सो काला कर देगा और वो पूरा उसको ख़राब कर देगा, जिसको कि कंट्रोल करना भी बहुत दिक्कत होता है।
1: अंत में हमारे किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए किसान भाई को, जैसा हम शुरू में भी बता रहे थे कि मशरूम का खेती जो है सो बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसमें खर्च भी बहुत कम आता है। अगर आप एक बैग बनाएंगे तो 30-35 रुपया खर्च आएगा, अगर मन हो तो आप 5 बैग भी बना सकते हैं, खास करके वेस्टर्न मशरूम की खेती में। और दूसरी, महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है कि घर के अंदर सभी काम काज करके अपने बच्चों का देखभाल करने के बाद, अपने पति का, अपने माता पिता का देखभाल करने के बाद जो है एक्स्ट्रा समय में इसकी खेती कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से करके। और करीब अगर 15 से लेकर के 20 फीट का अगर रूम है जिसमें कि 150 बैग करीब लगता है, तो 2 महीना में किसान भाई जो है सो 12-15 हज़ार रुपया, कोई भी महिला किसान हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जो है सो इससे बहुत अच्छा आमदनी ले सकते हैं। इसके अलावे जो है सो जो यहाँ पर देखेंगे कि धान का कुट्टी ऐसा चीज़ में, इसका सबस्ट्रेट जो है मशरूम की खेती के लिए धान का कुट्टी है, जो कि झारखंड में आसानी से मिलती है, तो इसीलिए जो है सो इसमें किसान भाइयों को या महिलाओं को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी खेती सालों भर करें और हर एक समय में मौसम के हिसाब से अलग अलग मशरूम की खेती करें। और इसका बीज जो है, मशरूम का बीज जो स्पॉन है, वो हमारे प्लांडू में ICR प्लांडू, इसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और बहुत सारे KVK में किसान भाइयों को उपलब्ध है, और उसको खरीद के आसानी से मशरूम का खेती में करें।
1: सही बात है किसान भाइयों, अगर आप अपनी खेती बाड़ी के अलावा कुछ आमदनी और कमाना चाहते हैं तो मशरूम का खेती कर सकते हैं। तो आज आपने जाना कि झारखंड में मशरूम की खेती के क्या संभावना है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अजीत कुमार झा जी। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: किसान भाइयों को भी हमारा जोहार, नमस्कार।
2: तो एखन हमारे मन सुनत रही झारखंड में मशरूम कर खेती कर संभावना, और इनके बताते रहे विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार झा और इनकर से गोठियाए रहे मनोज कुमार। तो अब हमारे मन एगो नवा किसान से करल बात के सुनीला, मधुमक्खी पालक किसान हैं और किसान हकें संतर सिंह, और इनकर से गोठियाए हैं हमारे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
3: किसान भाई बहन मने खेती बाड़ी कर काम तो रवन करवे करीला, संगे संगे गाय भैंस मुर्गी बतख मछरी ये सब कर भी पालन रवन करीला और अपन आमदनी के बढ़ावी ला। लेकिन इकरे संगे एगो आमदनी बढ़ावे कर बहुत बढ़िया जरिया है मधु पालन। मधु खाएक में जितना बढ़िया लागेला उतने उकर में बहुत गुण भी पावल जाएला, जे सेहत कर खातिर बहुते लाभकारी होवेला। मधुपालन करके रावण खेती बाड़ी कर संगे संगे ऊपरी आमदनी कर सकील। एहे मधुमक्खी पालन कर बारे में बतावे खातिर आज हमारे स्टूडियो में एगो प्रगतिशील किसान है संतर सिंह। संतर भाई रवर के जोहार कर थी।
4: जोहार भाई।
3: रवरे रहेक वाला कहाँ कर
4: भाई? मैं रहेक वाला ग्राम लोखमहन कर रहे, बिलिंगबिरा पंचायत थाना पालकोट गुमला झारखंड कर, और काफी दिन से मैं मधुमक्खी पालन करो ना।
3: मधुमक्खी पालन कितना दिन से करो थे?
4: लगभग 15 साल से करते आओ थो।
3: 15 साल से रवरे मधुमक्खी के पालन करो थे, है नहीं?
4: हाँ।
3: तो ये बताओ कि रवरे कहीं से प्रशिक्षण ले रही कि कैसे कैसे सीख ली?
4: शुरुआत मैं प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूँ, अपन निजी अनुभवी ज्ञान से पालन करत रहो, लेकिन जे कृषि विज्ञान केंद्र है गुमला उस संस्था के माध्यम से जानकारी होलग, और 2018-19 में प्रशिक्षण लेकर हमरे मन के मौका मिललक, तो उस प्रशिक्षण में हमें भाग ले करके फिर मधुमक्खी पालन के डेवलपमेंट करक, लेकिन और जानकारी अधिक होलक हमरे के।
3: मधुमक्खी पालन के जैसे शुरुआत रवरे कैसे कर ली?
4: मधुमक्खी पालन कर शुरुआत चलते फिरते हमरे मन के मधुमक्खी मिल जात रहे जंगल में, हमरे मन विचार कर ली कि इस मधु के हमरे अपन पालतू बनाती तो कैसे होतक। इस विचार के हमरे मन मंथन कर ली और मधु कर झुंड के लाने कर प्रयास कर ली, और लगभग पहले हमरे मन के मौन पेटी कर ज्ञान नहीं रहे, तो गगरी में पाले शुरू कर ली, लेकिन उकर में हम

0: और कभी बरसात कर मौसम में कभी जे के मक्खी मर जाए ना या तो भाग जाए ना, तो इस वजह से अभी वर्तमान में करीब 20 से 25 पेटी हमर मनक समूह में आ है।
1: मधुमक्खी कर जैसे बक्सा कर बात कर ली, कैसे कैसे बक्सा लान ली और कैसे कैसे उकर प्रबंधन कर ली से कर बात।
0: पहले मौन पेटी कर ज्यादा ज्ञान नहीं रहे, लेकिन प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र गुमला ट्रेनिंग दिलक, तो उस ट्रेनिंग कर दौरान में हमरे मन के 15 से 20 भाई मन ट्रेनिंग कर ली। उकर में से फर्स्ट पीरियड में हमरे मन के 4-4 मौन पेटी दिलाए, तो उसी आधार पर हमरे मन मौन पेटी कर निर्माण कर ली। और पावल कर बाद में फिर उसे क्वालिटी कर बनवाई के और उकरे में पालन करे चालू कर ली। मौन पेटी के बनाए के वास्ते पटरा फाड़ के लकड़ी के चिरवाई के पटरा बनाई के फिर उकर जे एक साइज बाई साइज मौन पेटी कर तैयार करल गेलक। ओकर बाद उके पाले चालू कर ली।
1: बक्सा में जैसे रे मधुमक्खी पाला थी तो ये बताओ कि मधुमक्खी कर कै गो किस्म हो गए।
0: मधुमक्खी कर जो प्रजाति है मुख्य रूप से 4 प्रकार कर मधुमक्खी पावल जा है, लेकिन हमर मनकर इस भारतीय जो मधुमक्खी है जे 3 प्रकार कर मधुमक्खी है उके पालतू नहीं बनाए बनेला, जेके भौरा कहिला उके पालतू नहीं बनाई सकिला। उकर बाद में और एक दो मधुमक्खी है उके भी पालतू नहीं बनाई जा सकेल, लेकिन खैरा मधुमक्खी है जे गुफा कर अंदर में माड़ा कर अंदर में या तो ढोढ़री में रहेला, वो मधुमक्खी के पालतू बनाए के लिए आसानी से बनेल।
1: मधुमक्खी कर परिवार कर रचना कर बारे में कुछ बता सकील।
0: मधुमक्खी का रचना है जे रानी मधुमक्खी है ला बड़ा संख्या जे एक परिवार में एक ही मधुमक्खी का रानी रहेला, और उकर साथ में सैनिक मधुमक्खी रहेला जे अपन समूह के देख रेख के लिए दरवाजा पास रहेना, कोई क्षति करे के योग्य कोई जंतु है उकर अटैक करेल। और तीसरा है श्रमिक मधुमक्खी जे फूल से पराग रस लाने में वो काम करेला।
1: अब ये बताओ कि खास समय में इकर पालन करे खवेला कि 12 मास।
0: वैसे 12 मास मधुमक्खी के पालन कर सकेला, लेकिन मुख्यतः इकर समय जो है ये समय है फरवरी मार्च अप्रैल, इस समय में बंटवारा कर सीजन रहेला। और बंटवारा कर सीजन में अपने रानी मधुमक्खी फिर रानी कर निर्माण करेल, और वो अपने परिवार के खुद के विभाजन करे के लिए सक्षम होला। और ऐसे तो हर समय मधुमक्खी पालन कर सकेला, पर बंटवारा कर सीजन केवल 2 महीना ही होला, मई और जून कर
1: बंटवारा
0: समय में।
1: मतलब कि वो मैंने अपन दल बनाए
0: हाँ,
1: के
0: दल
1: निकल
0: बनाई के।
1: जाए ना।
0: हाँ, निकल जाए ना।
1: तो जैसे एक बक्सा में 2 रानी नहीं रहक चाहिए है ना।
0: नहीं
1: अगर 2 गो हो गेलक तो
0: तो
1: मैंने
0: अलग
1: तो
0: हो
1: हाँ
0: जावे,
1: दल बनाए के
0: दल
1: निकल
0: बनाई
1: जाए।
0: के निकल जावे।
1: बरसात कर समय में मधु कर पालन कैसे करक चाहिए।
0: बरसात कर समय में मधु कर पालन विशेष खास करके 3 महीना बहुत गहन उकर लगिन साधन जुटाए पड़ेला। बरसात कर सीजन है, पानी जब पड़ेला तो मधुमक्खी कभी नहीं निकलेन। निकलने कर कारण यह है कि उकर लेकिन खाइक कर जोगाड़ करेक पड़ेला। तो उकर खाइक कर जोगाड़ यह है कि चीनी कर इस्तेमाल करल जाला, चीनी कर चाशनी बनाई के ठंडा करके और कुछ गुनगुना अवस्था में मौन पेटी में ही छत्ता के ऊपर डाल देवे होयल, तो उकरे से उमन कर भोरण पोषण हैला, उकर से उमन के आहार प्राप्त होयला।
1: मधुमक्खी जो है जो मधु लाने है ना इमन
0: हाँ,
1: तो कोई खास फूल ही सबसे लाने है ना। रस खातिर कौन कौन सा फूल बढ़िया होवेला।
0: एकर में हर महीना अलग अलग फूल कर इस्तेमाल होयला, फूल फूलेला, लेकिन विशेष करके जो समय है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, इस मई कर महीना में लगभग लगभग जो है करंज कर फूल एक साथ फूलेला। उकर साथ साथ में लाह रस भी आई जाएल, उकर साथ साथ में कुसुम कर फूल भी आई जाएला, तो ये आसान से अधिक मात्रा में मधुमक्खी शहद के लाइन के इकट्ठा करें।
1: मधुमक्खी में कुछ रोगमन भी लागेल का।
0: हाँ, रोग मन लागेल।
1: का का रोग लागेल और इकर उपचार कैसे करे चाहिए से के किसान भाई बहन उनके बताए।
0: इकर में कुछ ऐसा समय आवेल जे बरसाती समय पार होयला, उकर बाद में ठंडक समय आवेल, उस समय में

0: जलिया वाला कीड़ा हो जाएला, छत्ता के बर्बाद करेल। तो उस समय कर अवस्था में हमरे मन जो उपयोग करिल छत्ता के निष्कासित करके, या तो फ्रेम बदले के पड़ेल और नहीं तो एक कीटाणु मार दवाई आवेला जो सहज रूप में मिलेल। कीटाणु मार दवाई के देल जाएला है, ब्लीचिंग पाउडर कर भी इस्तेमाल कर सकीला। उके ब्लीचिंग पाउडर के चीनी कर चाशनी कर रूप में निर्माण करके, और ब्लीचिंग पाउडर के कुछ घोल के और उकर साथ में मिलाई के और मधुमक्खी के देल कर बाद में फिर जे कीड़ा कर संख्या है धीरे धीरे कम हो जाएला।
1: आखिरी में रहे किसान भाई बहन उनके कुछ आपंदन से कहे चाह मधुपालन कर बारे में।
0: मधुमक्खी पालन कर बारे में मैं किसान भाई के यह कहबू कि जे खैरा मधुमक्खी पालन करे के लेकिन जे जंगल झाड़ से जहाँ कहीं भी मिली उके सहज रूप से लानबे, और अपन मोन पेटी कर व्यवस्था अगर नहीं है तो घड़ा में भी पाल के अपन इस्तेमाल करबे, लेकिन मोन पेटी इस्तेमाल करे के लेकिन हमर मन से संपर्क करबे तो दिलवाए कर प्रयास करब।
1: किसान भाई बहन मने एखन रहन सुन ली मधुमक्खी पालन कर बारे में संतर सिंह जी से। मधुमक्खी कर पालन करू, खेती बाड़ी कर संगे संगे अपन अतिरिक्त आमदनी के बढ़ाऊ। संतर भाई किसान भाई बहन मन के मधुमक्खी पालन कर बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दिली, इकर खातिर और के बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
0: जोहार भाई, जोहार।
2: तो एखन हमारे मन सुनत रही नई उम्र कर नई फसल में मधुमक्खी पालक किसान से भेंट, और किसान रहे संतर सिंह और इनकर से गोठिया रहे हमारे कर संगी। तो रीज रंग कर लो आपका।
1: तो आओ एगो बसीर अंसारी और संगी मनकर गावल गीत के सुना थे।
2: तो चलो सुनीला।

0: तो यह गीत कर संगे किसान वाणी कार्यक्रम के बेरा सिरालक ई कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरणकर।

कार्यक्रम किसान वाणी अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:32 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम हमारी दुनिया का।

0: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के एक बेर फिर से कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु कर जोहार।
0: जोहार।
1: और कहो का हाल समाचार है भाई?
0: हाल समाचार तो बढ़िया है। और देखो एखन तो पानी भी आवत है और रौद भी करत है ने।
1: एकदम।
0: और एखन बरसात कर मौसम तो अब आइए गलक। और ये बरसात कर मौसम में जे है से तनिकुना अपन जीव जान के भी ध्यान में रखे के चाहिए है ने। काल के देखो एखन जे कभी रौद कभी छाहर कभी ठंडा कभी गर्म में जे है से तनी माने का कहे न ओके कि बुखार जर बुखार आवे कर भी संभावना बहुत बढ़ जाए।
1: और ये बरसात में होएला कि मतलब कि कपड़ा मन मने नहीं सूखेला और बिस्तर मन में जे छवन के सुताइल चाहे कुछ भी तो उकर में तकिया मने हो गलक गदा मने हो गलक उमने नहीं बेस सूखेला तो इकर से बीमारी भी होएला।
0: हाँ सब ओके कहे ना सब बीज और सब जल में अगर सुतब बैठब तो उकर से भी बीमारी होवे ले चर्म रोग होवे कर डर रहे ला। और देखो भाई सबसे बड़का तो सफाई है ना।
1: एकदम।
0: अगर कैसनो मौसम है साफ सुथरा अगर रहा थी तो जैसे बीमारी कर संभावना बहुत कम हो जाएगा।
1: तो देखो एगो बड़ा बढ़िया अभियान है स्वच्छ भारत अभियान। और ये अभियान कर मेन मकसद ही है कि हमारे के साफ सफाई रहे के और शौचालय जो पहले खुला में करत रहे उके पूरा पूरी बंद करे कर ये अभियान है। और इके जे ये अभियान कर शुरुआत होए रहे 2 अक्टूबर 2014 के और महात्मा गांधी कर जन्म जयंती कर अवसर में ये अभियान के मतलब कि शुरू करल गया।
0: अरे बड़ा बढ़िया अभियान है। देखो पहले जैसे खुला में शौच जात रहे तो शौच मतलब कि गंदगी से भी बहुत बीमारी होवत रहे
1: हाँ
0: पहले
1: हाँ
0: है ने। आ खुला में शौच करल से तो बीमारी होबे करेला और साथ में जो है से बहुत सारा जो है से अब का कहल जाए जैसे पहले देखत रहे कि आदमी बाहर जात रहे तो उकर से का होवत रहे कि जैसे मक्खी उखी बैठलक माछी मने
1: एकदम
0: गंदगी में और आ के खाना में बैठ गलक। ओकर बाद में जो है से वह केको हैजा हुआ थे केको जो है से पेचिस हुआ थे यह सब से जो है से लेकिन अब जो है बहुत जे अभियान जो चल लग से कर से घर घर शौचालय का निर्माण हो गलक है। और एखन हमरे कर सब बेटी बहन मने सब इज्जत से जात हैं अपन शौचालय में।
1: एकदम। और देखो महिला उनके खास करके अब पुरुष मने तो गांव घर में कहीं भी मतलब कि जगह
0: हाँ
1: दे के कैल होत लेकिन महिला मन ले ई बड़ा एकदम मतलब बेस होलक कि अभियान चललक और महिला मने जे घर में रहत रहे उनके ई सब शौचालय ले बहुत दिक्कत होत रहे।
0: तो भाई आज मंगल कर दिन है के और आज हमरे कर सुनोया भाई बहन मने आसरा दिखा तो मैं गीत कर
1: हाँ हाँ
0: आज पसंद कर लोग गीत है। तो आओ सबसे पहले हमरे नागपुरी में ये लोकगीत के सुना थी देवदास विश्वकर्मा और संगीमन कर गावल है।
1: तो चलो सुनीला।

0: तो एखन हमर मन सुनत रही नागपुरी लोकगीत देवदास, विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल के।
1: अब आओ सुनत ही कुरमाली लोकगीत विजय महतो और संगी मनकर गावल।
0: तो चलो सुनी ला।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: तो अब आओ सुनीला नागपुरी लोकगीत सरिता देवी और संगीमनकर गावल है,
2: तो चलो सुनीला।

0: तो एखन हमारे मन सुनत रही नागपुरी लोकगीत सरिता देवी और संगी मनकर गावल।
1: अब आओ सुनत ही पंच परगनिया लोकगीत सुभाष कोइरी और संगी मनकर गावल है।
0: तो चलो सुनी ला।

0: हम सुनते रहे पंच परगनिया लोकगीत में सुभाष कोइरी और संगी मनकर गीत के।
1: तो इकरे संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिर अलग।
0: और ई कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर।
1: तो सुनुया भाई बहन मने अब रावरिन कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: विष्णु के देव विदा
1: जोहार।
0: जोहार।

कार्यक्रम हमारी दुनिया अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं प्रादेशिक समाचार अब से थोड़ी ही देर में।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो यह रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली बनाकर देश से
3: लेकर आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इस साल रांची भी करेगा डूरंड कप की मेजबानी। रांची जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने मेले में शामिल होने के लिए दिया मुख्यमंत्री को आमंत्रण। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रामगढ़ में आयोजित जनसंवाद में लिया भाग। कहा, विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का दुबई में किया निर्यात। और बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम किया रोशन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष डूरंड कप, राष्ट्रपति कप और शिमला ट्रॉफी के चैंपियन बनने के लिए नई टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल और शिलांग के अलावा इस साल डूरंड कप की मेजबानी रांची भी करेगा। उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
4: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
3: रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने संयुक्त रूप से रथ यात्रा मार्ग तथा मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने रथ यात्रा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखने, पर्याप्त चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत और अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने कहा कि रथ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए रथ यात्रा महोत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित रसदा गांव में विस्थापन समस्या को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विस्थापित ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कहा कि विकास भी जरूरी है लेकिन विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है।
5: विस्थापन की समस्या जब झारखंड राज्य अलग बना था तो विरासत पे ये समस्या झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ और विकास के नाम पर अगर उनकी जमीन कोई ऐसे कंपनी लेता हो तो उससे विस्थापित जो हुए हैं उनकी रक्षा भी करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती।
3: झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा परिणाम को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जेपीएससी 14वीं परीक्षा में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया। इधर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से रांची स्थित लोक भवन में नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त अनुप कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलको और शिव पूजन पाठक ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने सभी आयुक्तों को शुभकामनाएं देते हुए निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ दायित्व निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम सुशासन और जवाबदेही को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है तथा राज्य सूचना आयोग की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये आम गुमला और देवघर जिलों की महिलाओं की ओर से संचालित 3 किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन कंपनियों का विकास बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया गया है। मंत्रालय के अनुसार इस पहल से किसानों को स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 180% अधिक मूल्य मिला है। मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और घटना के समय मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए। राज्यपाल से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तथा दोषियों और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हस्तक्षेप का आग्रह किया गया।
0: तो जमशेदपुर में विगत 27 जून को जिस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में 2 युवाओं पर चापड़ से हमला किया गया और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक का भी इलाजरत है। अपने जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के बहन में जाकर घुसने का काम और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस बहन ने भी घुस करके उन बच्चों पर चापड़ से हमला करने का काम किया।
3: कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की है। जो किसान मड़ुआ की खेती करेंगे उन्हें प्रति एकड़ 3,000 रूपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्रीमती तिर्की आज हजारीबाग में पिछले 29 जून से आयोजित सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने राज्य के कम वर्षा क्षेत्र के लिए रिलीफ फंड जारी करने की मांग केंद्र सरकार से की।
6: वर्ष एल नीनो का असर पड़ने वाला है। सभी किसानों से निवेदन है कि सही समय में बिचरा कर मेरे कोई बंदी करे ताकि पानी को लोग सुरक्षित रख पाए। आज मिशन का भी रजिस्ट्रेशन किसानों का कराना शुरू किया। आज पूरे राज्य भर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें लगभग सभी किसानों को जो मड़ुआ की खेती करेंगे उन्हें 3,000 रूपया प्रत्येक एकड़ प्रोत्साहन राशि सरकार देगी।
3: बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। मौसम पिछले 3 दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से किसानों में जहां हर्ष है वहीं आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने रांची मौसम केंद्र ने 10 जुलाई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2026 डोरंट कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का किया अनावरण। इस साल रांची भी करेगा डोरंट कप की मेजबानी। रांची जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने मेले में शामिल होने के लिए दिया मुख्यमंत्री को आमंत्रण। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रामगढ़ में आयोजित जनसंवाद में लिया भाग। कहा, विस्थापितों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मैट्रिक टन आम्रपाली आम का दुबई में किया निर्यात। और बंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में गिरिडीह के राजवीर डी और उनके जोड़ीदार संबित रमेश ने अंडर 15 डबल्स वर्ग में कांस्य पदक जीतकर झारखंड का नाम किया रोशन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
1: जमशेदपुर में 3 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। यह बंद शहर में बढ़ते अपराध, ब्राउन सुगर के बढ़ते कारोबार और करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या के विरोध में बुलाया गया था। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अभय सिंह ने कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, अपराधी बेखौफ होकर हत्या, रंगदारी और नशे के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, जबकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है।
2: इस शहर में सट्टा चल रहा, मटका चल रहा, जुआ चल रहा है, चापर चल रहा है और हत्या चल रही है। एक हिमांशु की हत्या होती है, कई हिमांशु की हत्या हो जाएगी। चैन छिनता ही तो आम हो गया और दोनों हाथ भी काट दे रहे हो। बिरसा नगर की घटना हुई है, हम सभी लोग जानते हैं कि बिना पुलिस के साठ गांठ में इतना बड़ा क्राइम को कोई मर्द नहीं है इस शहर में कि उसे अमली जामा पहना दे। एक खाकी वर्दी से पिछले दिनों के पीढ़ियां डरा करती थी, आज वही खाकी वर्दी के पीसीआर वैन निकाल कर उसे चाकू मारा जाता है और पीसीआर वैन में बैठे हुए हमारे अधिकारी पदाधिकारी हाथ में राइफल लेकर के शोभा बढ़ा रहे थे। आप सोची लानत है, एक माँ की कोख सुना हो गया। हम आने वाले पीढ़ियों में और हिमांशु की मौत ना हो जाए, ब्राउन शुगर का कारोबार बढ़ ना जाए, जब तक आप रावण के नाभि का इलाज नहीं करोगे, सर काटते रह जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला इस शहर में नहीं है।
1: जमशेदपुर प्रधान डाकघर में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत स्पीड पोस्ट सेल बुकिंग कियोस्क की शुरुआत की गई। इस नई सुविधा से अब लोगों को स्पीड पोस्ट बुक कराने के लिए लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राहक स्वयं पार्सल का वजन कर, पता दर्ज कर और UPI QR कोड या कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर कुछ ही मिनटों में स्पीड पोस्ट बुक कर सकेंगे। वरीय डाकपाल सुधीर कुमार ने कहा कि यह सुविधा डाक सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगी।
3: सेल बुकिंग कियोस्क मशीन हम लोग नया जमशेदपुर प्रधान डाकघर में इंस्टॉल किए हैं। इस मशीन का खास बात यह है कि कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक कस्टमर इसमें आ करके और स्वयं के द्वारा जो है स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर सकता है। 500 ग्राम तक का आर्टिकल इसमें आराम से बुक हो जाएगा और जो ऑनलाइन पेमेंट है QR कोड के माध्यम से, इसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है और बुकिंग करने में जो है काफी कम समय लगता है। 30 सेकंड से 1 मिनट में एक आर्टिकल आराम से बुक हो जाएगा। जमशेदपुर प्रधान डाकघर में बुकिंग का जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा है। एक अलग तरह का सेवा जो हम लोग शुरू किए हैं।
1: जमशेदपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। शहर के विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों में रथ यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, सजावट और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर समितियां रथ को अंतिम रूप देने के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं की तैयारियों में जुटी है। प्रशासन की ओर से भी रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और आवश्यक नागरिक सुविधाओं की तैयारी की जा रही है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
0: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हो चुके हैं। दोस्तों, ये वक्त है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा का। आज आप ये कार्यक्रम सुनेंगे खड़िया भाषा में।

आम्पे सो आदिवासी अखड़ा ते खड़ियाला मंडर झाड़ी ते इंजर अनुग्रह कुल्लू या आप जोहार मुसा मांगतो एखे आम्पो आदिवासी अखड़ा ते खड़ियाला अंगोंग अंडर ना नेडा आए पे तमा अंडर एपे तमा इंजर अंडर ते जार समय यानी कि नेडा प्रबंध या आवश्यक नेडा या आ प्रबंध ई ते गामते में तमगा नेडा ते मनवाया अव्यक्तित्व रो व्यवसायिक जीवन ते सफलता या मन महाकुंजी है खे नेडा प्रबंधन मनवाया आ उत्पादकता ते बढ़ाए ते मनवाया आ तनाव ते कम कराए ते रो मनवाया अडिया लक्ष्य ते कोई नया आ मन आसानी मुं कुईता थोंग संग या संग्रोते नेडा प्रबंधन कराए ना कोनों मनवा अडिया जीवन ते कामु कराए ते रो नेडा सही उपयोग कराए ना धावें मनवा या कामु जो आसान होता जहाँ कामों करे ना थों नेडा या प्रबंधन अनेक जुकुरे ला मनवा या कामों सफा सुथरा और नारो मनवा या विकास जो है ना नेडा प्रबंधन इना जुकुरे नेडा प्रबंधन आना धावें मनवा या तनाव कम होता इना न होकर अडिया कामों ते नेडा हिंते करे ना थों सपड़े सी तारो होकरते अडिया कामों या बोझ उमावता उत्पादकता रो गुणवत्ता बढ़ेता सही नेडा ते अपन कामों ते करेना दामे मनवाया कामों थोड़े नेडा तेगा हुईता रोहकड़ा उत्पादकता कामों बढ़ेता रो गुणवत्ता जो कुईता हिना थंग मनवाते नेडा या मोलते धोनाई रो नेडा सिरेगा कामों करेनाई जीवन या होकड़ा यह संतुलित होता नेडा प्रबंधन आवनाया जीवन ते संतुलन बैते मनवा व्यक्तिगत जीवन या जीते संतुलन बैनाते मदद करायते होकरते अडिया परिवार या थंग नेडाते न पालते रहो परिवार या जीवन शैली अनेत बारू आता मनवा ते जहाँ कामों करेना थंग नेडाते बारू बो सेरियाए कौन ताइना रो हो अनुसार कामों ते करेना धावे मनवा ते कामों या बोझ उमावता कामों खेतियार या है के चाहे पढ़े ना लिखे ना वाला किया समय सब ते अपन नेडा या प्रबंधन करेना है के ला होकर ते सफलता जरूर लेगा कोई ना इना नो नेडा आना मन एक बहुमूल्य है के एक छोर मुगो ताला होकड़ा कहियो जो डेलता हिना थों नेडा या अनेत बारुबो व्यवहार करेना ए रो मुगम संगोना आई आई पे तामा ओटो मुन कायम तीन जार उत्तुन नलाम ते जार उ उसलो ते डा या मात्र 3% डागा उड़ना योग्य आई रो उ बढ़े कोनल रो जलवायु परिवर्तन या कारण बुंग लगातार घटेगा चलते हिना थंग डा या संरक्षण जुकुरई तुपगा सुधम उठना डा कुना रो कृषि रो पर्यावरण सुरक्षित आना रो भावी पीढ़ी या थंग उठना डा या सुनिश्चित होना पाले गांडम ता जल ही जीवन है मुदा घटे ते जल स्रोत मन चिंता या विषय है खे संसार या शुभ जीवित रो जीवन या आधार है डा है खे शायद गा जहाँ जीव है खे न एनम डा या होकर बोरो आता डा अनिंग ते समुद्र खिरम पोखरा झील मुर्दा रो उसलो या भीतर या माध्यम बुंकुईता अनिंग सब कोंगते निंग न गरम हवा बुंग समुद्र खिरम पोखरा या डा वास्पित होई कौन ठंडा ठाड़ोती चलता आते न्यून तापमान या कारण संघनित होता है कौन मुर्टा या रूप बुंग उसलो ते गुरता ओडो महाविरुद्ध जुगह तापमान हुई ना कारण डा बर्फ या रूप बुंग जामड़े गोता जे पोहर गरम दिन होता ला पगले तारो हो डा खिरम ते चलता अम्पे ते इंजर उतो नलाम ते जर नो डा ते जुगाय बर्बाद करेना ई रो डा या संरक्षण अने जुकुर ई ला अनिंग या जीवन रो जीव रो मानवा जो जो स्वस्थ आवना डा उमावना ला आ मानवा रो जीवते बारू वो बोरल आवना अनेत कसे रहता ला अम्पे तामा
तैगा आंग्रे ये पिनो डा ते बंचाई कोन उन्नाई रो डेना ने डाया थोंग मानवा रो जीव या आ थोंग मोन बारु स्वस्थ ते उन्हें कायम कोडो जाए मुदा अंपे ते अलंग जोंडर नमन लासी है लाए प्योंडर पे अलंग वो अलंग ते अलंग सी कारिग नासियस करकेटा रोह की आधीर सांगोडम की

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने ही वाले हैं। ये वक्त है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का, सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में।

हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो, उसकी यार को ढाढ़स बंधाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं।

वो कहाँ रहता है कोई तो निशानी आए, उसका पैगाम हवाओं की जबानी आए। अपनी आँखों को उदासी से बचाना उस दम जब कोई बात याद पुरानी आए। जब्त के बाद भी यूं आँख से आंसू निकले जैसे छत काट के बरसात का पानी आए।

कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। उसकी सुखन तराजियां मेरे लिए भी ढाल थी, उसकी हंसी में छुप गया अपने गमों का हाल भी। शाम की वो ना समझ हवा पूछ रही है एक पता, मौजे हवाए कुए यार कुछ तो मेरा ख्याल भी।

इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे। मैं चाहता हूं कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। अजीम लोग थे, टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा, बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे।

तुझसे तो कोई गिला नहीं है, किस्मत में मेरी सिला नहीं है। बिछड़े तो न जाने हाल क्या हो, जो शख्स अभी मिला नहीं है। जीने की तो आरजू ही कब थी, मरने का भी हौसला नहीं है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: जीने का सलीका नहीं आया, आज तक कोई तरीका नहीं आया। बिछड़ जाएंगे हम, हंसी हंसी में कहा उसने। हंसी हंसी में कहा, फिर सही में नहीं आया। बाहर की तमाम मौजूद है महफिल में, शख्स वहां वहीं का नहीं आया।

0: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीकंधा अभी आप सुन रहे थे सीमा तिवारी के साथ। हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 बस होने ही वाले हैं। ये वक्त है जानने का क्या है सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 देशों के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल इंडोनेशिया पहुंचे और जकार्ता में उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो

0: सुबियांतो के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए कई फैसले भी लिए। इस विषय में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। अम्बेसडर तायल, आपका आकाशवाणी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: अम्बेसडर तायल, हमने इंडियन ओशन रीजन की तरफ भारत सरकार का एक झुकाव देखा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये विजिट है, ये इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न मैरिटाइम जोन और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस विषय में, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, आप भारत इंडोनेशिया की साझेदारी को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं?
1: देखिए, अब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर किसी तरह से जुड़ चुके हैं और पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का कूटनीति का एक बहुत ही बड़ा पुश हमें देखने को मिल रहा है। पिछले अप्रैल में हम कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रपति भारत आए थे। अभी एक हफ्ता पहले हमने देखा कि जापान की प्रधानमंत्री भारत आई थी और बहुत ही एक सक्सेसफुल वो विजिट रही। और अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और हिंद प्रशांत क्षेत्र की ये 5ों देश मुख्य लोकतांत्रिक देश हैं और भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा पहला पड़ाव भारत की प्रधानमंत्री की यात्रा का इंडोनेशिया में आज रहा।
0: अम्बेसडर तायल, जैसे कि आपने बताया, जितने अग्रीमेंट साइन हुए, जितने नतीजे आए हैं, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए भी सहयोग समझौते शामिल हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं की बेहतर समझ के लिए समझा सकते हैं इसको और विस्तार में?
1: देखिए, करीब 12 से अधिक समझौते पर आज हस्ताक्षर हुए और जो सुरक्षा के क्षेत्र में है, विकास के क्षेत्र में है, तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में, संस्कृति, कल्चर और शिक्षा, और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य सुरक्षा के क्षेत्र में है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल्स ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा कार्य किया, दुनिया ने उसको देखा, और भारत डायनेमिक्स का जो अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, उसने भी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा काम किया। और इन दोनों का इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट हुए हैं उनको सप्लाई करने के। उसके अलावा जो सबांग पोर्ट है, एक जो हमारे अंडमान निकोबार से केवल 100 मील दूर है, उनके बीच में भी सहयोग की बात की जा रही है। क्योंकि ये श्रोताओं को समझना चाहिए कि जो मलक्का स्ट्रेट्स है, बहुत ही मुख्य पानी का रास्ता है जिससे पूरे ईस्ट एशिया व्यापार वहां से होता है, भारत का 40% व्यापार वहां से होता है। और अभी पीछे जो हमने देखा कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई वहां पे गतिरोध कभी भी आएगा व्यापार में और शिप्स को पार करने में, तो इस तरह मलक्का स्ट्रेट्स है, उसका ठीक वहां चले और उसमें कोई गतिरोध अवरोध ना आए, इसमें भारत और इंडोनेशिया का बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं समझता हूं कि इस पर भी कुछ एग्रीमेंट और कुछ बातचीत हमारे प्रधानमंत्री और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के बीच में हुई है।
0: एक और जो अहम फैसला आज लिया गया, जिस पर मेरे समझ से चर्चा होनी चाहिए, वो ये है कि महत्वपूर्ण खनिजों और स्टील के क्षेत्रों में सप्लाई चेन को मजबूत करने का भी समझौता हुआ है। साथ ही स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट में साझेदारी का एक नया दौर, वो भी सामने आएगा। अम्बेसडर तायल, खास तौर पर आपसे महत्वपूर्ण उपयोगी खनिजों और रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में बात करना चाहूंगे।
1: पिछले 1-2 वर्ष में विश्व के सामने एक ये नया मुद्दा उठा है कि क्रिटिकल मिनरल्स और इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स, इसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीन ने अपना एक वर्चस्व जमाया है, 80% से ज्यादा ये कंट्रोल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारे श्रोता ये देखेंगे कि भारत के जो भी एग्रीमेंट्स आजकल दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं, उसमें हमेशा क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र रहता है, क्योंकि ये जो खनिज है ये बहुत रेयर है। ये नाम क्रिटिकल मिनरल्स और ये रेयर अर्थ्स इनको कहा जाता है। ये खनिज इंडोनेशिया में काफी मिलते हैं और एक देश इसको नहीं पूरी तरह से संभाल पाता, तो कई जगह ये देखा गया है कि कई देश मिलकर, खनिज एक जगह होता है, उसको प्रोसेस दूसरा देश करता है और पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। तो इसमें जो भी समझौता भारत

0: इंडोनेशिया के बीच में आज हुआ है, उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भविष्य में सप्लाई चेन पर पड़ेगा क्रिटिकल मिनरल्स का। 21% दुनिया की निकल इंडोनेशिया में है और स्टेनलेस स्टील की प्रोसेसिंग में निकल की आवश्यकता पड़ती है, और भारत स्टील का बहुत बड़ा एक उपभोक्ता भी है और प्रोड्यूस भी करता है, तो इसमें भी बहुत ही अच्छा समझौता हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडोनेशिया की एजेंसीज के बीच में हुआ है।
1: अम्बेसडर साहिल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के यूपीआई की, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दुनिया भर में यूपीआई काफी विश्वसनीय और काफी उपयोगी साबित हो रहा है। आज ये घोषणा की गई है कि यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ भी जोड़ा जाएगा। जब यूपीआई सरहदें पार कर रहा है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव लाने और लीडर के तौर पर ये सब भारत की छवि को और कैसे बेहतर बना रहे हैं?
0: जिस तरह से भारत में डिजिटल सर्विसेज पूरे 140 करोड़ लोगों तक पहुंची हैं, गांव-गांव में पहुंची हैं, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, चाहे वो हमारा आधार कार्ड हो, हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, और जो पेमेंट्स कार्ड्स के थ्रू बैंक के द्वारा हो रहे हैं, फोन के द्वारा हो रहे हैं, तो इसमें जो यूपीआई 10 देशों से पहले ही भारत का समझौता हो चुका है, जहां भारत के आप यूपीआई से पेमेंट रुपीज में कर सकते हैं, अब इंडोनेशिया का जो इंडोनेशियन पेमेंट सिस्टम है उसके साथ भी यूपीआई का इंटीग्रेशन होगा, उसका मेल होगा। हमारे जो पर्यटक हैं और बिजनेस के लोग हैं, वो अगर इंडोनेशिया जाएंगे तो रुपीज में यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इससे देखिए, दोनों देशों के नागरिकों को ये लाभ भी होता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज कमीशन होता है वो भी बच जाता है, क्योंकि पहले अगर आप इंडोनेशिया जाएं कुछ खरीदें तो पहले वो रुपया डॉलर में कन्वर्ट होगा, फिर डॉलर भारत के रुपए में कन्वर्ट होगा, और दोनों तरफ वो कमीशन डॉलर वाला लेता है। तो अगर डायरेक्ट रुपी और रुपया डायरेक्टली लिंक होगा तो वो कमीशन बच जाता है, दोनों देशों के नागरिकों को उससे फायदा होगा।
1: अम्बेसडर तायल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आजकल दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डंका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेली कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग को मजबूत करने और दोनों देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए भी आज समझौते हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज कल पूरी दुनिया में एआई का डंका है, तो एआई के क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया आगे अपनी साझेदारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि एआई सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके?
0: आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये शताब्दी है, 21वीं शताब्दी, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है, और उसका एक रूप जो सामने आया है पिछले 1-2 साल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बिल्कुल नया टूल विश्व में समाज के साथ आपके पास आई है, जिस पर मास्टरी करना बहुत आवश्यक है हर देश को जो भी आगे बढ़ना चाहता है, और इसमें भारत पहले ही बहुत काम भारत में हो रहा है, मिशन्स हैं, और स्टार्टअप्स में तो भारत ने कई पिछले सालों से गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से बहुत मदद की जाती है स्टार्टअप्स में हमारे युवाओं को और हमारे इंजीनियर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को। इंडोनेशिया भी एक युवा देश है, वहां भी 28 करोड़ पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन बढ़ रही है और युवा लोग अधिक हैं, वहां आगे के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, इन सबका बहुत बड़ा योगदान होगा, और इसमें भारत इंडोनेशिया साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया, तो आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए मुख्य अंश।
2: पिछले 2 दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहाँ भी पिछले 1 दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है।
1: अम्बेसडर तायल, इंडोनेशिया द्वारा इन दोनों जेस्चर्स को भारत की तरफ कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं है बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए है, तो इन दोनों कदमों को आपके नजरिए में आप कैसे देखते हैं?
0: ये एक बहुत ही प्रमुख सम्मान है प्रधानमंत्री का भी और भारत का भी। प्रधानमंत्री अब 12 वर्ष से दुनिया के पटल पर हैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। उनको एक बहुत ही बैलेंस्ड नेता के रूप में दुनिया देखती है। जो वो कहते हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, आज भी जैसे उन्होंने कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे, और दुनिया देख रही है कि अब चाहे वो अमेरिका और ईरान हो, वो अब जाके डायलॉग और डिप्लोमेसी पे ही इतना मारामारी के बाद वहां आ गए हैं। तो उसका भी सम्मान है बिंटांग आदिपूर्ण के द्वारा, और भारत का भी सम्मान है कि वो भारत की जो नीतियां रही हैं, भारत और इंडोनेशिया का पुराना सिविलाइजेशनल एक जोड़ है, एक कनेक्शन है, और दोनों देशों का ध्येय भी एक ही है कि पूरा इंडो पैसिफिक, प्रशांत हिंद महासागर पीसफुल रहे और दोनों देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। और जैसे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियन पार्लियामेंट को भी एड्रेस किया, ये भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। हर जो भी नेता दूसरे देश के जाते हैं उनको हर एक को ये ऑनर प्राप्त नहीं होता कि वो वहां के पार्लियामेंट को भी एड्रेस करें, क्योंकि ये एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उस देश के नेताओं से जो भारत और इंडोनेशिया की मैत्री का संदेश जहां जहां से भी वो आए हैं, जो पूरा इंडोनेशिया वो संदेश वहां लेके जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। और प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में एक बहुत ही बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि भारत विकास का रास्ता फॉलो करता है, एक्सपेंशनिज्म का नहीं, और ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने भारत के बारे में कही।
1: आखिर में अम्बेसडर तायल, भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, क्या आप उन कदमों के बारे में बता सकते हैं जो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान इन संबंधों को और प्रगाढ़ और बेहतर करने के लिए उठाए गए हैं?
0: भारतीय महाद्वीप और इंडोनेशियन आर्किपेलागो के तो सांस्कृतिक संबंध हजारों साल से हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुबियांतो जाएंगे, एक परम्बरण मंदिर है 1000 साल से ज्यादा पुराना है योग यकार्ता में, उसके जीर्णोद्धार के लिए भारत ने इसका जिम्मा उठाया है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इंडोनेशिया के लोग और समाज और गवर्नमेंट हमेशा इस कनेक्शन को जो भारत के साथ है, संस्कृति का, सिविलाइजेशन का, उसको रेस्पेक्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। रामायण अभी भी बहुत ही एक पॉपुलर डांस ड्रामा के रूप में पूरे इंडोनेशिया में देखा जाता है। और अगर आप जकार्ता जाएं तो एक जगह वो श्री कृष्ण जी जो रथ और अर्जुन का रथ भी एक बहुत ही अच्छे जगह बहुत बड़ा बना हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति एक बहुत जगह बहुत बड़ी बनी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा पुराना नाता है और उसको प्रधानमंत्री की यात्रा में और सुदृढ़ किया जाएगा और उसको और ज्यादा लोगों के पास ले जाने का प्रयत्न है। और दूसरा, 1927 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इंडोनेशिया गए थे, उसकी शताब्दी 2027 में बहुत धूमधाम से इंडोनेशिया और भारत दोनों जगह बनाई जाएगी। उसमें गुरुदेव टैगोर और इंडोनेशिया के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनका भी बहुत अच्छा योगदान था, उन दोनों के नाम से ये शताब्दी दोनों देशों में मनाई जाएगी।
1: अम्बेसडर तायल, आपने प्रधानमंत्री की यात्रा पर एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण दिया है हमें और आपने हमारे साथ अपने विचार बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से साझा किए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
4: सुर्खियों में दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 बस होने ही वाले हैं। ये वक्त है समाचार संध्या का हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी

0: पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
3: आपात

0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया।
0: प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
3: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of Green Ridge area to be developed into forest land. Three persons killed and six go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
5: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है
4: Here is more from a correspondent covering the Prime Minister's visit.
6: Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Mr. Modi said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and common vision for the future. The Prime Minister said India believes in development, peace, stability and prosperity. Mr. Modi stressed the need for collective action against terrorism and unilateral actions that undermine regional security. He emphasized global South stability besides Indo-Pacific. The Prime Minister called for deeper cooperation in defense, maritime security, trade, digital technology, educational, artificial intelligence and critical minerals. He also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Chandipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
4: The Prime Minister reached Jakarta last evening on the first leg of his three-nation visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Earlier today, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Prime Minister Modi also addressed the Indian community at Jakarta this evening. He said India's economy is playing a major role in driving global growth. He said the government is working on the mantra of reform, perform and transform.
5: Aaj Bharat ki arthavyavastha दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 billion aspirations in motion.
4: The Prime Minister said India's journey towards self-reliance is becoming a multiplying force, not only for Indonesia, but for the entire ASEAN region. He stressed that India and Indonesia share a common vision of development and cannot afford to wait or slow down. Indonesian President Prabowo Subianto, in his address, said he has an Indian DNA. He said the achievements of India, both at the union level and across its states, are truly remarkable, and he closely follows this remarkable journey.
7: I want to admit that I am a great admirer of Narendra Modi ji, and I studied the policies of your Prime Minister, and Prime Minister Modi graciously allowed me to copy his policies. So the important thing is Indonesians must learn from the experience of India. Our civilization, our culture, many hundreds of years, strongly influenced by Indian civilization. Our language, what, 50% from Sanskrit?
4: Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management, IIM, Bangalore, to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system.
8: As IIM Bangalore ki campus.
9: Today, the Prime Minister approved the establishment of an IIM Bangalore campus in Indonesia. The expansion of such prestigious institutions abroad is a significant step towards internationalizing India's rich knowledge, tradition and education system.
4: Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat conclave in New Delhi, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking the critics to show even one vehicle with issues due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. The minister stressed the need to promote alternative biofuels to achieve energy security and reduce dependence on fossil fuel imports. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that India successfully ensured an uninterrupted supply of LPG by taking timely steps to strengthen domestic production and secure energy supplies. Addressing the Viksit Bharat conclave, Mr. Puri said that while effective diplomacy helped evacuate stranded ships during the global energy crisis, India's domestic LPG production capacity was increased from 35,000 metric tons per day to 54,000 metric tons per day in a short period, ensuring uninterrupted cooking gas supply for over 33 crore LPG consumers. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah today launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Makinam Abhiyan to increase the green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that this campaign is a significant initiative aimed at transforming Delhi's environment. Mr. Shah said that the central government and the Delhi government have resolved to fully develop 6,300 hectares of Green Ridge area into forest land over the next 4 years and ensure its protection.
10: Today, with the support of the Government of India, the Delhi government has prepared the working plan document and the management plan for the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary while also developing the Delhi Bird Atlas. These initiatives form part of a comprehensive effort to restore the entire ecosystem. More than 70 ponds will be developed within the ridge along with small restaurants and visitor amenities. In addition, all archaeological structures in the area will be conserved and protected.
11: Archaeology ki sanrachnaye surakshit karenge.
4: Delhi Chief Minister Rekha Gupta said over 12 lakh saplings will be distributed free of cost and appealed the citizens to actively participate in the campaign. In Keralam, three people were killed in a landslide at the tunnel construction site near Kallari in Mepparu, Wayanad, following heavy rainfall today. Nine workers who were trapped underground were rescued and shifted to the Government Medical College Hospital in Mepparu. Six others remain missing and are feared trapped beneath the debris. Rescue operations are continuing with teams from the Fire and Rescue Services and Disaster Response Agencies. The Keralam State Disaster Management Authority said the collapse occurred when debris accumulated during excavation for the tunnel construction site slid down due to heavy rain. Wayanad has been experiencing heavy rainfall since yesterday. A red alert has been issued for Wayanad and Kozhikode districts. Heavy monsoon rains continue to batter Maharashtra today, triggering flooding, landslides and traffic disruptions in Palghar, Raigad and Ghat areas of Nashik, Pune, Ahilyanagar and Kolhapur districts. Meanwhile, Mumbai and the adjoining areas witnessed a relative easing of rainfall. The IMD has forecast heavy rainfall conditions in several areas of North and South India for the next 3 to 4 days. Here is more from our correspondent.
11: IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till 13th of this month. The weather agency has forecast heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Madhya Pradesh, India. Forecast over Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana till next Monday. Thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds are likely to prevail over Andhra Pradesh, Jharkhand, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, Odisha and northeastern region during the next 3 to 4 days. Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
4: Two explosions rocked Syria's capital Damascus this afternoon, injuring 18 people, including 4 police officers. The explosions occurred just before the meeting between French President Emmanuel Macron and his Syrian counterpart Ahmed al-Sharaa at the presidential palace. President Macron, who arrived in the Syrian capital yesterday, is the first top European leader to visit the war-torn country since the fall of the regime headed by Bashar al-Assad. Benchmark domestic equity indices gave up their initial gains and ended on a negative note today. We have a report.
12: Sensex dropped 104 points to close at 78,181. Nifty dipped 32 points to settle at 24,399. Both the stock market indices dropped 0.13%. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.3%, while the small-cap 100 index lost more than 0.5%. In the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 44 paise to close at 94 rupees and 96 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
4: On to sports. In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. England defeated India by 4 wickets in the second T20 match on Saturday in Manchester. The first match was washed out due to rain. In the Wimbledon tennis, world number one and defending champion Jannik Sinner has stormed into men's singles semi-final, beating Jan Lennard Struff of Germany in London this evening. In women's singles, Coco Gauff advanced to the semi-finals, defeating fellow American Jessica Pegula in a thrilling quarter-final match. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on Egypt in the round of 16 match in Atlanta. 9:30 p.m. Indian time. Later in another round of 16 clash, Switzerland will face Colombia in Vancouver at 1:30 a.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of 3 persons killed and 6 go missing after a landslide hits Wayanad Tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India. And in men's cricket, India take on hosts England in the third T20 international of the five-match series in Nottingham tonight. That is all in the news at night. Good night.
13: खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शुमाली और जनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया के पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
14: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वजीर आजम ने दिफा बहरी सलामती तिजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर। आत को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
13: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीके कार के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
15: इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
13: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 1 अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
5: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
13: वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर As the bin
16: ہم کو وقف کیا

0: गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग के मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जोजिला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क रास्ते को भी उजागर किया जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इक्तसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीकेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मजबूत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
2: ये रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेन्द्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा जरई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत, खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं। छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की ताकि रियासत में विकसित भारत जीरा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की जेर क्यादत मंसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ्त का भी जायजा लेने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद

0: और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: आईएमडी ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुबह बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामानिगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासरा कुनबों को उस वक्त बड़ी हसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के पांचवें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1 लाख से तजावज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज दोपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसअत पा रहा है। डॉ जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना दो रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दोतरफा तआवुन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने शुरुआती इजाफे के बाद घरेलू इशारिये आज मनफी रुझान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 104 प्वाइंट्स की कमी आई और ये 78,181 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 32 प्वाइंट्स की गिरावट देखी गई और ये 24,399 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 इशारिये में 0.3 और स्मॉल कैप 100 इशारिये में 0.5% की गिरावट देखी गई। मर्दों के क्रिकेट में नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टी20 आलमी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला फीफा आलमी कप में चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। प्री क्वार्टर फाइनल के एक दीगर मुकाबले में वैंकूवर में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इससे कबल आज बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमरीका को 4-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरल की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में लाख हो गए हैं और 6 लापता हैं। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंघम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 많다는.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रही है।

0: श्रेया पाठक।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम मंथन। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एनके अरोरा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। डॉक्टर अरोरा, आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद श्रेया जी आमंत्रित करने के लिए।
1: धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे श्रोताओं को आप ये सरल शब्दों में बताइए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई।
2: तो ये डिजिटल मिशन के बारे में बात करने से पहले मैं अपने श्रोताओं से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। और वो सवाल ये है कि कोविड के दौरान जब कोविड का टीकाकरण हो रहा था तब हम सबको याद है कि किस तरीके से कोविन पर हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जा रहा था और साथ ही साथ जब पहला टीका लगता था तो उसका सर्टिफिकेट आ जाता था, दूसरा हो तो फिर सर्टिफिकेट दूसरे के लिए हमें याददाश्त हमें याद कराया जाता था और दोनों टीके लगने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था कि हम पूर्णतः अब सुरक्षित हैं कोविड से। तो इस प्रकार ये कमाल और ये जो हमारा अनुभव रहा है उसका कारण डिजिटलाइजेशन था और इसी डिजिटलाइजेशन को अब एवीडेम या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में सोचूं तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कदम है सरकार की तरफ से, जिससे हमें स्वास्थ्य सेवाएं सुविधापूर्वक मिल सकें, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। और इसमें दो चीजें और हैं, तो एक तो सुविधा बढ़ जाए लेकिन साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो कुछ हो रहा है वो साफ ढंग से पता चलता रहे, ये इस एवीडेम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जैसा कि श्रेया जी ने हमको बताया कि चाहे वो हम आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं सब जगह, और अभी आभा आईडी है, आभा आईडी के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, ये किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है और जीवन के हर पहलू में ही नहीं लेकिन मेरे पूरे परिवार की स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा बिना किसी परेशानी के।
1: तो डॉक्टर अरोरा, जैसे अभी आपने आभा हेल्थ आईडी की बात की तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि इस मिशन का सबसे प्रमुख आधार अगर हम देखें तो आभा हेल्थ आईडी ही है, तो आम नागरिक के लिए यह कितनी उपयोगी है और इससे इलाज की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह आसानी लाई जा सकती है।
2: आभा आईडी का मतलब ये है कि जब भी हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो हमें एक ओपी कार्ड मिलता है या हमें वहां का रजिस्ट्रेशन मिलता है और हर जगह जैसे नई जगह जाते हैं तो हमें नया कार्ड मिलता है। आभा आईडी का मतलब ये है कि मेरे पास जो आभा आईडी है, मैं किसी भी अस्पताल में जाऊंगा, किसी भी स्वास्थ्य फैसिलिटी में जाऊंगा तो मेरे को हर बार वही आभा आईडी मेरा रहेगा। इसके साथ साथ एक और भी फायदा ये है, जो सबसे बड़ा फायदा है, कि जो मेरे को अभी तक इलाज दिया गया है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट फैसिलिटीज में, वो भी उसके अंदर एंटर्ड रहेगा। तो मेरे का एक तरीके से एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य संबंधी पूरा इतिहास है वो इकट्ठा एक जगह मिल जाता, मेरे को अपने साथ कागज ले जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, उसके लिए परेशानी नहीं होगी। हम लोगों से कागज गुम हो जाते हैं, इसी तरीके से जो जांचें कराई होती हैं वो कभी समय पे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, पता नहीं चलता कि कब कराई गई थी। लेकिन आभा आईडी का मुख्य उद्देश्य ये है कि सारा मेरा जो स्वास्थ्य संबंधी इतिहास है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता रहता है। और दूसरा ये है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मैंने आज दिल्ली में दिखाया और उसके बाद भोपाल जाना पड़ा और वहां पर अपना जांच करा रहा हूं, तो वो मेरा आभा आईडी एक तरीके से मेरे साथ साथ चलता है और वहां पर आभा आईडी को देख करके वहां के डॉक्टर चिकित्सक जो स्वास्थ्यकर्मी है वो मेरा पूरा स्वास्थ्य का इतिहास देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के क्योंकि हर एक व्यक्ति का किसी भी बीमारी का होना और उसका उसका जो दवाई दी जाती है, इलाज कराए, उसका प्रभाव पुराने स्वास्थ्य इतिहास पे भी निर्भर करता है। तो इस तरीके से मेरे साथ मेरा स्वास्थ्य का इतिहास, साथ में जो इलाज किया गया, जो जांच की गई थी, वो मेरे साथ साथ चलती है आभा आईडी के रूप में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, तो अभी आपने जैसे बताया कि आभा हेल्थ आईडी से हम किस तरह से ये जो डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा है ये काफी आसान हुई है, आप इसे भारत

0: डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव समझते हैं?
1: ये तो आमूल परिवर्तन रहेगा। जिस तरीके से शुरू में जब आधार का नंबर दिया जा रहा था, आधार नंबर किया जा रहा था, लोगों के मन में संशय था, लोगों को पता नहीं चलता था। इसी तरीके से आभा आईडी जो है, हमारा हेल्थ आईडी जो है, ये एक आमूल परिवर्तन है कि जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हमारे साथ साथ रहेगा हमेशा के लिए, और मेरे को बहुत ज्यादा अपने ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। आप लोगों ने डिजी लॉकर के बारे में सुना है, जिसमें हम अपने जरूरी कागजात संभाल के रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ये उसी तरीके से जो हमारे स्वास्थ्य के जरूरी कागज हैं, वो सारे मेरा एक तरीके से मेरे लिए लॉकर बन जाता है डिजिटल स्पेस में। मेरे को याद रहे ना रहे, डॉक्टर दूसरे के पास जब जाएंगे तो वो उसको देख सकता है कि पहले क्या हुआ। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रहती है। प्राइवेसी का मतलब यह है कि आपके अलावा उसको कोई नहीं जानता। अगर डॉक्टर भी देखना चाहता है आपके पुराने रिकॉर्ड को, तो ओटीपी आपका, आपसे डॉक्टर कहेगा कि वो आपका रिकॉर्ड खोलना चाहेगा, आप आभा आईडी बताएंगे, आपका ओटीपी आएगा आपके टेलीफोन पे, मोबाइल पे, और तभी वो उनको देख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये प्राइवेसी वाला जो कंपोनेंट है, ये भी उतना ही इसके साथ बना रहता है। और ये, और कुल मिलाकर ये, मैं जो हम चाहते हैं कि जो मेरी बीमारी है, मेरी जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति है, उसमें गोपनीयता बनी रहे, तो वो गोपनीयता भी बनी रहती है, और वो किसी को जरूर कि दूसरे को पता चले ऐसा नहीं होता। इवन डॉक्टर भी अगर देखना चाहेगा तो वो आपके परमिशन के बिना उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकता।
0: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे कि अभी आपने गोपनीयता की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे हम डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एआई के बढ़ते उपयोग के साथ लोगों के मन में जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर काफी सवाल रहते हैं, जिसकी अभी आपने चर्चा भी की, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, ये इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार करता है?
1: तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आभा आईडी के थ्रू आपका रिकॉर्ड आपका डॉक्टर भी नहीं देख सकता, वो केवल आपका रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि ये रिकॉर्ड किसी भी तरीके से कोई और ना देख सके, तो गोपनीयता के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से आधार के बारे में है, तो आधार की भी गोपनीयता बनी हुई है, उसी तरीके से आभा आईडी की गोपनीयता भी पूर्ण तरह सुरक्षित की गई है। और उसमें कई लेयर्स हैं सुरक्षा के कारण, जिसको फायरबॉल्स कहते हैं, कि उसको कोई देख ना सके। और कुल मिलाकर के ये जो मन में एक चिंता है एक आम व्यक्ति के मन में, तो मैं उसका पूर्णतः उसको कहूंगा कि निराकरण करें उस चिंता से, कि ये पूर्णतः गोपनीय है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो किसी को भी नहीं पता चल सकती, अनलेस अगर आप खुद नहीं बताना चाहें तो।
0: जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न होगा कि ये जो नई आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है, जिसमें हम स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, बीमा जानकारी, या फिर जो एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कई सुविधाएं जो इसमें जोड़ी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बने जहां नागरिकों को लगभग सभी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह पे मिल सकती हैं? तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर आप सरल शब्दों में बता सकें।
1: आरोग्य सेतु, फिर मैं आपको कोविड के दौरान ले जाऊंगा। आरोग्य सेतु 1.0 जो था वो कोविड के साथ बना था
0: जी,
1: और उसमें ये था कि अगर आपको कोविड के इलाज से संबंधित कुछ सूचना चाहिए, आपको अपने आसपास कितने मरीज हैं उनके बारे में पता करना है, आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है जहां पर आपको इलाज मिल सकता है या जहां पर जांच की जा सकती है, वो उसमें था। तो आरोग्य सेतु 2.0 जो है, वो उसका आगे विकास किया गया है कि अब मेरे को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, सबसे नजदीकी कौन सी स्वास्थ्य सेवा है जहां पर मैं जा सकता हूं। एक उदाहरण के लिए, रात को मध्यरात्रि में कोई महिला प्रसव में जाती है, उसको मतलब पेन्स शुरू हो जाते हैं और उसको अब किस अस्पताल में ले जाऊं, तो ये आरोग्य सेतु से मेरे को पता चल सकेगा कि कहाँ कहाँ डिलीवरी की सर्विसेज उपलब्ध हैं। इसी तरीके से किसी को दिल संबंधी परेशानी है या जिगर संबंधी परेशानी है और वो चाहता है कि उसके सबसे नजदीक और विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस हैं बीमारी को देखने के लिए,

0: वो कहाँ कहाँ उपलब्ध है वो करा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ आएगा कि ये हम सब लोगों को जरूरत होती है, इन सारी जरूरतों का, और खास तौर पे इमरजेंसी के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने आरोग्य सेतु खोल करके और जो मेरी स्वास्थ्य समस्या है वो उसमें डाली और कहा कि भाई मेरे को कहाँ जाना चाहिए, तो वो आपको एक गाइडेंस दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो एक जीवन में उसको और बेहतर बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि समय के साथ जैसे कि हमारे शहर बड़े हो रहे हैं और हर एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता, अभी खाली वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से सुन करके हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु जो है 2.0, ये यानी कि वास्तविकता धरातल पे क्या सिचुएशन है उसके आधार पर हमें गाइडेंस दे सकता है।
1: जी, और जैसा कि अभी हम देखते हैं कि स्कैन एंड शेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का इंतजार कुछ मिनटों तक सीमित हो गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी डिजिटल व्यवस्था मरीजों और अस्पताल दोनों के अनुभव को बेहतर बनाएगी?
0: हाँ, ये अब जो एक बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकारी अस्पताल सरकारी दफ्तरों के हिसाब से चलते हैं और उसकी वजह से मरीज को, परिवार को काफी असुविधा झेलनी पड़ती है, जबकि बीमारी ना अपॉइंटमेंट लेकर के आती है और जब हमें जरूरत होती है तब हमें चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी की जरूरत होती है। तो डिजिटलाइजेशन से और एक टेलीमेडिसिन की बेसिस पर हमें जिस समय 24 घंटे में जिस समय जो सुविधाओं की जरूरत है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और खास तौर पे ये देखा गया है कि जो चिकित्सा संस्थान है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन की सर्विसेज अब काफी लंबे समय तक उपलब्ध होती हैं, जिससे कि हम उनसे बिना वहां पर व्यक्तिगत तौर पे जाए हुए हमें कंसल्टेशन मिल सकती है। इसके अलावा एक और भी फायदा है और वो ये है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में, मेरा कोई इलाज चल रहा है, मेरी सर्जरी हुई है, अब उसको डॉक्टर के पास 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा दिखाना है, और डॉक्टर के पास मैं जाता हूं और 5 मिनट मेरे से पूछता है और वो कहता है अब मैंने बता 2 दिन खर्च करके गया हूं अस्पताल में। तो इस तरह से फॉलो अप के लिए भी जो टेलीमेडिसिन है या ये डिजिटलाइजेशन का सारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्पफुल है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। एक
1: जी
0: और चीज भी करी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो जो मेरा स्थानीय डॉक्टर है उसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई आप चले जाइए इनके पास, ये आपकी देखभाल उतनी अच्छी करेंगे जितने एक बड़े संस्थान में किया गया था। तो कुल मिलाकर ये डिजिटल इकोसिस्टम मेरे जीवन में एक उसको बेहतरी ला रहा है, उसमें सुविधाजनक बना रहा है और मेरी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसको कम करने का प्रयास है।
1: जी तो जैसा डॉक्टर एनके अरोड़ा ने हमें बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलू हैं, और इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि डिजिटल तकनीक केवल सुविधाएं बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रभावी साधन भी है। इसी संदेश के साथ ये कार्यक्रम मंथन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एनके अरोड़ा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलुओं पर बेहद सरल और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रेया जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

कार्यक्रम मंथन अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की खड़ी में 10 बज रहे हैं दोस्तों। ये वक्त है गुंजे झारखंड का, झारखंड के पेड़ पौधे। संकलन और वाचन संध्या नीलिमा टोपनो का, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की।

झारखंड प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। झारखंड शब्द का अर्थ ही जंगलों की भूमि होता है। ये राज्य अपने घने वनों, विविध वनस्पतियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के जंगल न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख स्रोत हैं। झारखंड की संस्कृति, परंपराएं और जनजातीय जीवन जंगलों और पेड़ पौधों से गहराई से जुड़े हुए हैं। राज्य का लगभग 30% क्षेत्र वनाच्छादित है, जिससे यह प्रमुख वन समृद्ध राज्यों में गिना जाता है। श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज सुनिए झारखंड के पेड़ पौधों पर आधारित कुछ लोकगीत।

0: झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसके कारण यहाँ मुख्य रूप से पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ सखुआ, महुआ, सागवान, शीशम, जामुन, आम, केंद, सेमल, गम्हार और बांस जैसे अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में औषधीय पौधों की भी भरमार है। वनों में अनेक प्रकार की झाड़ियाँ, घास और लताएं भी पाई जाती हैं, जो वन्य जीवों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनस्पति की विविधता देखने को मिलती है। सखुआ झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। इसकी लकड़ी अत्यंत मजबूत और टिकाऊ होती है, इसलिए इसका उपयोग भवन निर्माण, फर्नीचर तथा अन्य कार्यों में किया जाता है। सखुआ के जंगल झारखंड की पहचान है। पश्चिम सिंहभूम स्थित सारंडा वन सबसे बड़ा साल वन माना जाता है। साल का वृक्ष पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी छाया, पत्तियां और जड़ें मिट्टी के संरक्षण तथा जल संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महुआ झारखंड के जनजातीय समाज का जीवन वृक्ष माना जाता है। इसके फूल, फल, बीज और लकड़ी सभी उपयोगी होते हैं। महुआ के फूलों का उपयोग खाद्य पदार्थों तथा विभिन्न पारंपरिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। महुआ केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जनजातीय समाज के अनेक पर्व और उत्सव महुआ से जुड़े हुए हैं। केंदू का वृक्ष झारखंड की अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान रखता है। इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जामुन, कटहल, आम, शीशम, सागवान, सेमल और गम्हार जैसे वृक्ष भी झारखंड के जंगलों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये वृक्ष फल, लकड़ी तथा औषधीय गुणों के कारण महत्वपूर्ण है। झारखंड के जंगल अनेक औषधीय पौधों से समृद्ध हैं। आंवला, हरड़, बहेड़ा, तुलसी और अन्य जड़ी बूटियां यहां पाई जाती हैं। इनका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। ग्रामीण और जनजातीय समुदाय पारंपरिक ज्ञान के आधार पर इन पौधों का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में करते हैं।
1: अरे

पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जंगल वर्षा को आकर्षित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने तथा भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त वे वन्य जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। झारखंड के जंगल हाथी, हिरण, भालू, तेंदुआ और अनेक पक्षियों के प्राकृतिक आवास हैं। इसलिए पेड़ पौधों का संरक्षण जैव विविधता की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, खनन और अवैध कटाई के कारण जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है। यदि समय रहते पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं किया गया तो पर्यावरण और जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए वृक्षारोपण, वन संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

0: झारखंड के पेड़ पौधे राज्य की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर हैं। ये न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं बल्कि लोगों की आजीविका, संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़े हुए हैं। साल, महुआ, केंदू, बांस और अन्य वृक्ष झारखंड की पहचान है। हमें इन पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस प्राकृतिक संपदा का लाभ उठा सकें।
1: दया चलू जा अब सांगे सांगे हम जा अब रारू सांगे।

श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज आपने सुना झारखंड के पेड़ पौधों पर आधारित कुछ लोक गीत। कलाकार थे मुंडारी में सुमरा लोहरा और साथी, खोरठा में सुकुमार और साथी, नागपुरी में जानकी देवी और साथी। वाचन स्वर था संध्या नीलिमा तोपनो का और प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की।

गुंजी झारखंड, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। संकलन और वाचन संध्या नीलिमा टोपनो का, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज के कलाकार हैं उस्ताद साबरी खान। आप सारंगी पर राग पुरिया कल्याण प्रस्तुत करेंगे। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। इसके अलावा आप राग मारू विहाग भी प्रस्तुत करेंगे। विलंबित रचना एक ताल और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं राशिद मुस्तफ़ा और तानपुरे पर साथ दे रहे हैं गुलफाम साबरी।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज के कलाकार थे उस्ताद साबरी खान। आपने सारंगी पर राग पुरिया कल्याण और राग मारू विहार प्रस्तुत किया। तबले पर संगत कर रहे थे राशिद मुस्तफ़ा और तानपुरे पर साथ दे रहे थे गुलफाम साबरी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार के लिए आइए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध

सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केन्द्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमरीका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।